0: पीस शांति से जी सकते हैं. दैट इज एक्चुअली आध्यात्मिक इन माय पार्लेंस. इट मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल एंड इट इज जस्ट सर्च पीस काम रादर देन हंटिंग फॉर इट आउटसाइड यू. वो मेरे हिसाब से आध्यात्मिक वो है समीर जी.
1: ठीक है मैम, मुझे बिल्कुल ठीक से समझ में आया और हमारे सुनने वालों को भी बिल्कुल समझ में आया होगा कि जो मेरे को मिला अभी तक आपने जो कहा उसमें कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ गलत कर रहा है या जैसा भी वो बिहेव कर रहा है, मे बी इरिटेटिंग, मे बी डिस्गस्टिंग, मे बी यू नो अपमानजनक कुछ हरकत है या कुछ बदतमीजी है, आपने कहा कि हमें सोचना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है. शांति से सोचिए व्हाई दिस पर्सन इज बिहेविंग इन दिस मैनर.
0: करेक्ट करेक्ट.
1: अब मैम होता क्या है कि हम, मैं अपनी बात करूं एक सेकंड के लिए, मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूं, मुझे कोई इस तरह से करे तो बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर गुस्सा ना कंट्रोल नहीं होता मैम, तो क्या होता है कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है ये समझने के लिए कि वो व्यक्ति ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है करके, उसके साथ क्या कंडीशन है, मे बी दूसरा व्यक्ति जो है वो डिस्टर्ब होगा, माइट बी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट समथिंग एंड ही इज जस्ट ट्राइंग टू हर्ट मी. लेकिन मैं नहीं समझ पाता तो मैं गुस्से में फिर रिएक्ट करता हूँ, रिस्पॉन्सिबल नहीं होता हूँ, रिएक्ट कर देता हूँ, मैं उसको भी दो गाली दे देता हूँ, लड़ जाता हूँ. सो वहां पर हम क्या करें मैम, मुझे ये प्रैक्टिकल बताइए ना, व्हाट शुड आई डू.
0: हाँ ठीक है, अगर आप इमीडिएट रिएक्ट करते हैं ना तो बाद में आपको गिल्ट आता है,
1: आएगा,
0: पछतावा
1: आएगा.
0: तो पछतावा अगर नहीं आना है तो यू हैव टू वेट, डोंट रिएक्ट इमीडिएटली, थोड़ा शांति से वो बकने दो, जो बकते हैं बकने दो. जस्ट लिसन टू दैट एंड आफ्टर सी इफ इट इज अ वेरी क्लोज पर्सन लाइक योर फैमिली मेंबर, फिर जाके उनको बोल सकते हैं सी आई डिडंट लाइक व्हाट यू आर टेलिंग बट देयर मे बी सम रीजन दैट यू हैव टोल्ड. सो बाय दैट टाइम वो जो घर वाले हैं वो शांत हुए रहेंगे तब तक एंड देन दे विल गिव अ प्रॉपर कन्विंसिंग आंसर फॉर इट. Then everything is solved. But if it is an external person whom you are not very close to और वो बोलता है, तो बोलने दो, वो बोलने दो, उसकी अपनी सोच करके छोड़ देना है. That is my way of responding. It keeps you cool. वो guilt जो होता है ना, पछतावा होता है, that is very very hurting. तो पछतावा से अलग रहना है तो you think. That is why you need that internal thinking. हम शांत रहे, वाई शुड आई स्पॉइल माई मूड बिकॉज समबडी इज टेलिंग दैट आई फील दैट. हर एक आदमी होने दैट कम्स विद सम स्पिरिचुअल नॉलेज बिकॉज यू लर्न टू बी कंपैशनेट, यू लर्न टू बी गुड इन योर वर्ड्स डीड्स एवरीथिंग एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑल दीज थिंग्स वी रिस्पॉन्ड नॉट बिकॉज दे आर हर्टिंग अस. We may be having some tension or stress and at that moment we can't decipher oh, क्यों बोल रहे हम immediate react करना है वो हमारा सोच है not the opposite party. तो ये guilt से avoid करना है and to proper thinking. It will give us an exact thinking the way how we should proceed with that. That comes with adhyatmic knowledge. नॉर्मल मैन वो नहीं आगा, इट कम्स विद स्पिरिचुअलिटी.
1: ओके, आई गेट इट, आई गेट इट मैम. प्लेन एंड सिंपल, I'm really sorry. I would like to apologize here with my most sincere efforts. मुझे आपने जो अभी बताया उसमें मुझे मेरे काम की एक बात सुनाई दी. देखिए मैं एक्चुअली बहुत ही नॉर्मल रूटीन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मेरे रेडियो पर. तो मुझे सुनाई दिया कि अगर किसी तरह से कोई आदमी आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, सो आई शुड नॉट रिएक्ट इमीडिएटली, आई शुड जस्ट वेट. वेट अपने एंगर को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने गुस्से को मेरे को दबा के पकड़ के बस थोड़ा सा वक्त गुजारना है. आई शुड जस्ट लेट दिस टाइम पास फॉर यू नो कपल ऑफ आवर्स मे बी और कपल ऑफ मिनट्स मे बी कपल ऑफ डेज मे बी
0: करेक्ट
1: एंड देन समबडी वुड

0: come to me and some situation would happen where the things would actually be explained to me. कि ऐसा एक्चुअली इस वजह से हो रहा था, अच्छा किया आपने रिएक्ट नहीं किया. दिस थिंग साउंड्स गुड टू मी मैम, दिस थिंग साउंड्स गुड टू मी. ये एक अच्छी टीचिंग मेरे को मिली. थैंक यू सो मच फॉर दैट.
1: थैंक यू.
0: ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकल बात करते हैं. थियोरेटिकली आपने हमें बता दिया.
1: हाँ जी.
0: आपने तो इतनी प्यारी सी खूब बड़ी सी जिंदगी जी और अभी बहुत बड़ी जिंदगी और आपके सामने है.

0: there, then we realize there are certain times when we hurt के बाद में सॉरी बोल देते हैं. बट इन स्पिरिचुअल नॉलेज यू कम टू रियली सीरियसली थिंक ऑफ व्हाई वी शुड नॉट डू दैट, व्हाई वी शुड नॉट हर्ट, व्हाई वी शुड नॉट टेल अ लाइ, वो स्पिरिचुअल नॉलेज से मिलता है. कभी कभी झूठ ना अच्छाई के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है,
1: बोलना पड़ता है.
0: लाइक वो महाभारत में अश्वत्थामा अतः बोला ना, अतः कुंजरः. So that was actually a lie which Lord Krishna told. But somehow he had to make the Pandavas win.
1: Correct.
0: So वो हुआ. तो ऐसे जगह में बोल देते हैं. But later on we realized that वो झूठ, it was not hurting anybody as such. ठीक है, बोल दिया. अभी बहुत बार बोल देते हैं हम, इस सोचो समीर जी बोलना नहीं चाहिए. अभी किसी ने हमको बुलाया 8 बजे आओ. और हम 7:30 बजे तक घर में बैठे हैं. फिर वो लोग बुलाते हैं, बेचारे कहाँ हो, ऐसे ही झूठ मूठ बोल देते हैं, ट्रैफिक में फंसे हैं. बोलते देते हैं, बट वो गिल्ट होते हैं, क्यों यार बोलना, बोलना था ना, देर से उठे, हुआ नहीं, सॉरी बोलना था. बट वो होता नहीं. इमीडिएटली वी टेल दैट व्हेन वी थिंक अबाउट ऑल दोस थिंग्स इन स्पिरिचुअलिटी वी लर्न कब झूठ बोलना है, विच झूठ इज नॉट हर्टिंग एनीबॉडी. And why do we have to say that? Such बोल दो ना, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वो ऑब्जेक्ट पर थोड़ा डांट लेंगे हमको. ये बंदा को टाइम पे आना नहीं होता है. उतना ही बोलेगा ना. But we will be free of that guilt. क्यों मैंने झूठ बोला? ये सब spiritual knowledge से आता है.
1: लेकिन मैं आपसे मतलब मैं ये एक्चुअली जानना चाह रहा था कि आपको कैसे मालूम पड़ा, वेयर डिड यू स्टार्ट, मेरे दिमाग में यहाँ पर आता है.
0: एवरीथिंग एट वन गो, स्टार्ट एट बेबी स्टेप.
1: ओके,
0: वंस यू गेट दैट हैप्पीनेस थॉट्स इनटू इट, बिकॉज़ फॉर मी स्ट्रेस फ्री शांत लाइफ इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी.
1: ठीक है मैम.
0: नेक्स्ट स्टेप, सपोज यू नीड मनी. अभी मुझे मनी करो, मनी भी मिल जाएगा. तो एनीथिंग दैट डन विद पैशन, ना किताब लिखते हैं, उनको भी एक टाइम होता है. रात के टाइम पेंटिंग करते हैं, नहीं तो दे विल, वो मूड आते हैं तभी वो लोग, दे विल डू देयर बेस्ट. तो टू डू योर बेस्ट यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन सर्टेन थिंग. तो व्हाट आई डू इज, अभी मुझे नहीं करना है, आई विल गिव माई सेल्फ टाइम. अपने आप को मैं टाइम देंगे. आई वर्शिप माई सेल्फ, वर्शिप योर सेल्फ, बी हैप्पी विथ योर सेल्फ, डोंट वरी अबाउट व्हाट द अदर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू. लोग तो सोचेंगे, व्हाई शुड यू वरी,
1: राइट?
0: समीर जी ये सब मेरे उम्र में मैं बोल लूंगी, बट फॉर अ यंगस्टर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस. टू स्लोली स्लोली विथ स्मॉल स्टेप्स कॉन्सेंट्रेट ऑन योर जॉब. Do what you love to do, at least half an hour a day. पूरा दिन नहीं, आधा घंटा निकालो, अपन जो बहुत अच्छा लगता है, which gives you happiness, do that. किसी किसी को ऐसे चुपचाप एक कुर्सी में बैठे रहेंगे, कुछ न करेंगे, उनको आराम मिलता है, they feel free, stress free, वो भी करो. There is nothing wrong in it. So that is how it builds.
1: Okay, all right. आई गेट इट. सिंपल मैथड है. उनको ललिता मैम ने थोड़ा सा डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन किया है दोस्तों, विच एक्चुअली मेक्स अवर थॉट प्रोसेस ईजी, सिंपल एंड क्लियर. जैसा उन्होंने कहा कि अपनी पसंद का कुछ भी काम, चाहे दिन में 5 मिनट भी मिले, करिए. इस बात को तो मैं भी बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मैम. कई कई मित्रों को बोलता रहा जो लोग गाते हैं, म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं, गुनगुनाते हैं, तो मैं उनसे बोलता हूँ, अरे यार ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आज की दुनिया में पूरे दिन काम करते रहते हैं बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस, फिर भी अपने लिए 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट्स यार, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट 5 आवर्स, 5 मिनट किधर पे भी कोने में ऑफिस में बैठ जाओ एंड देन डू व्हाट यू लाइक, मे बी सिंगिंग है ना, थोड़ा सा गुनगुनाइए, बस उतना ही बहुत है.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: और आई मस्ट थैंक यू ललिता मैम टू यू नो एनलाइटन मी फॉर दिस रीज़, फॉर दिस यू नो थिंग, बिकॉज आई एम हैप्पी अबाउट इट. मेरे को जो पसंद है ना मैम, मैं ऑलमोस्ट पूरे दिन करता हूँ.

0: I'm very happy, like talking to you, talking to the people like you.
1: Absolutely.
0: Mujhe bahut acha lagta hai. I'm making radio programs and talking to people, listening to them, learning something new.
1: Samir ji, main bolti hu, meri beti to bahut sari cheez karti hai. Usne bola, amma aap karogi ye? Main bole, haan bilkul karungi. And without any thought, bilkul karungi, bol diya. Fir baad mein I have to work towards it because क्या पूछने वाले हैं आप, तो मुझे समझना आना चाहिए. एंड अनदर थिंग, लैंग्वेज. देन शी सेड, नहीं अम्मा, हिंदी यू नीड नॉट टॉक फुल्ली इन हिंदी, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बात कर लो, चलेगा. सर ओके, व्हाट है, बट नाउ आई एम फीलिंग वेरी वेरी रिलीव्ड. सचमुच समीर जी, आपसे बात करके बहुत हल्का महसूस करती हूँ मैं.
0: वाओ, थैंक यू. अच्छा मैम, सीरियसली आई एम गेटिंग अ मैसेज इन योर मैसेज फ्रॉम यू कि अगर मेरे से बात करके कोई भी थोड़ा सा रिलैक्स हो पा रहा है, रिलीव हो पा रहा है, थोड़ा सा पीसफुल हो पा रहा है, देन आई कंसिडर माई लाइफ इज वर्थ इट. हो गया.
1: एब्सोल्युटली.
0: बाबा भोलेनाथ ने मेरे को सही जगह दे दिया. ओके, आई एम डन. थैंक यू. चलिए,
1: थैंक यू
0: मैम. थोड़ा सा रुकते हैं, विल टेक अ पॉज एंड विल लिसन टू दिस ब्यूटीफुल काम पीसफुल भजन. विल कम बैक.
1: श्योर.

0: बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच. आपने हमें आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी का डेफिनेशन बताया, धर्म का डेफिनेशन बताया, दोनों के डिफरेंसेस बताए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी बताए धर्म का और आध्यात्मिकता का. देन मैंने आपसे रिक्वेस्ट की बेबी स्टेप्स बताने के लिए कि हम स्पिरिचुअल कैसे हो जाएं, वो भी आपने हमें सजेस्ट किया कि ऐसे ऐसे करें. एंड देन यू एक्चुअली मेड अस फ्री. किसी भी आपने मेरे को प्रोटोकॉल में बांधा नहीं. आपने कहा जब भी दिन में फील करो कि ये करना है उधर करो.
1: बिल्कुल.
0: गरुआ वस्त्र पहन के पहाड़ पे जाके बैठने की जरूरत नहीं है स्पिरिचुअल होने के लिए, है ना. बी अ नॉर्मल रूटीन पर्सन, काम पीसफुल पर्सन. गुस्सा आए उसको थोड़ी सी देर के लिए पोस्टपोन करो. ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात मेरे को समझ में आ रही है. आई रियली लाइक इट. एंड दोस्तों, आप लोगों के लिए भी मैं सजेस्ट करूंगा कि ये 3-4 प्रैक्टिकल एडवाइसेस जो ललिता मैम ने दी हैं, दीज आर अमेजिंगली ब्यूटिफुल टिप्स टू लिव योर लाइफ ब्यूटिफुली. अब एक और वर्ड आ रहा है मैम मेरे दिमाग में, जो आपने अभी भी थोड़ी सी देर पहले बोल भी दिया, तो आई वांट टू नो अबाउट इट. मेडिटेशन, ध्यान. ठीक है, मेडिटेशन ध्यान हो गया, हम ओम ओम ओम करके बैठ जाएं, वो भी एक, आई मीन आई डोंट नो, अभी आप मुझे बताएंगी. एंड प्रेयर, प्रार्थना करना, है ना, आरती गाना या कीर्तन करना या जो भी है. सो मेडिटेशन और प्रेयर में अंतर बताइए मैम. एंड क्या ये दोनों चीजें हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है, व्हाई?
1: ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. प्रेयर जो है वो भगवान से बातें करना है. एक्चुअली इट इज प्रेयर. प्रेयर में हमारे स्कूल में सिखाया, इट इज अ कॉन्वर्सेशन विथ योर गॉड. अभी भगवान को कौन सा, अभी प्रेयर को एक भाषा नहीं होता है. You always talk to the Lord in your comfort language. अभी my mother tongue is Tamil, but भगवान से जब बात करते हैं तो English में ही बात करते हैं.
0: Wow, okay.
1: God give me this. God hope everything goes well. English में आता है, Tamil में नहीं आता है, because education English में हुआ है ना. तो वो भाषा आता है. And we hardly realize भगवान का भाषा क्या है. Does भगवान have a भाषा? No. We just put our thoughts, our feelings, सब भगवान के पास. Whenever we go to the Lord, most of the times before, see, stage comes when first you thank the Lord for everything.
0: Correct.
1: नहीं तो हमेशा बचपन से क्या है, you go only for asking something. बच्चे लोग परीक्षा में easy paper आना चाहिए, pass होना चाहिए, मुझे अच्छा नौकरी मिलना चाहिए, घर में सब सुख शांति होना चाहिए. We only keep asking. So prayer is just talking to the Lord, give your feelings to the Lord. वो है. And we have full confidence, वो भगवान बिचारा वो सुन लेगा. And he will work towards it, शांति देगा. And we get that peace, that confidence that भगवान हमको ठीक करेगा. That is prayer. You ask the Lord, he is just like a बिचारे. तो वैसा है भगवान के साथ बात करना, द कॉन्वर्सेशन विद द लॉर्ड इज प्रेयर फॉर मी.
0: ओके.
1: मन दुख हुआ, कुछ बुरा हुआ, तो जस्ट दिया जला और भगवान को बोलो, भगवान ये हुआ है, वो है प्रेयर.
0: ओके.
1: मेडिटेशन जो है वो भगवान से कुछ मांगते नहीं है, हम अपने अंदर के थॉट्स को खोज लेते हैं. We search why these things happen, why we have to do certain things, and then we only of mind when we meditate, because we are concentrating only on one thing. Abhi hamare man bahut chanchal hota hai, wo ek bar America mein hota hai, abhi idhar hota hai. So it is a very very chanchal bolte hai na, you can fickle. But if you meditate, that fickleness will go away. You will start thinking only on one point.
0: Okay.
1: So slowly, slowly it will go on increasing. Meditation aaj 5 minute karo, 10 minute karo, but it will lead you to the same happiness and peace and all these things as a prayer. But dono alag tarike hai jo shanti khoj karte hai na, jo shanti. Abhi prayer na, aaj subah mein pray karo, dopahar mein jaake jhagda bhi kar sakte hain. होता है.
0: ओके.
1: इन मेडिटेशन पीपल हु आर रियली मेडिटेटिव स्पिरिचुअल वो नहीं करेंगे. अपने आप में अंदर से एक कूल काम बिहेवियर आ जाता है हमें. तो उन लोग उतना रिएक्ट नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे. प्रेयर में ऐसा नहीं होता है. सुबह वो बगल में छुरी मुंह में राम राम की जगह है. प्रेयर करेंगे, पूजा करेंगे, फिर बाद में
0: झगड़ा करेंगे.
1: नॉर्मल लाइफ दे विल लीड. बट स्पिरिचुअलिटी इज नॉट दैट. इट इज अ मच मच डीपर थिंग. बहुत बहुत अंदर खोज करना पड़ता है. एंड इन स्पिरिचुअलिटी इट इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग ये है लाइफ चेंज.
0: ओके.
1: इट लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. प्रेयर इज मोमेंटरी. अभी प्रे करो, भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग करो. इट इज मोमेंटरी. अभी खुश होते हैं, दो दिन खुश रहते हैं. देन यू विल नीड दैट सेम भजन एंड कीर्तन एंड प्रेयर फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस एंड शांति. मेडिटेशन इज नॉट दैट. अंदर से आता है ना, तो अंदर से ठीक हो जाएंगे. यू डोंट नीड एन एक्सटर्नल फैक्टर टू और सम मटेरियल टू मेक यू हैप्पी. दैट इज द स्पिरिचुअलिटी एंड प्रेयर.
0: ओके, अमेजिंग. फाइन, गुड. अगेन दोस्तों, आपने अगर गौर किया हो, ध्यान से सुना हो, तो मैम ने अगेन बहुत प्रैक्टिकली बात कही है. कोई माथे पर बहुत सारा त्रिपुंड लगाकर और टीका लगाकर बैठकर और बड़ा बड़ा धूप बत्ती जलाकर बात करने की बात नहीं की है कि प्रेयर क्या है एंड मेडिटेशन क्या है. बहुत सिंपल सी बात है. बड़ी प्यार से ढंग से उन्होंने बताया कि प्रेयर में हम मांगते हैं भगवान हमें ठीक कर दो, भगवान हमें ठीक कर दो, एंड सो मैनी थिंग्स. और मेडिटेशन में हम क्या करते हैं. मेडिटेशन बहुत प्यारे, बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने शब्दों को कहा कि प्रार्थना इज अ डायलॉग टू द गॉड. मुझे उस बात से मैम याद आया कि वन ऑफ माई फ्रेंड लॉन्ग बैक, हिज नेम इज आनंद श्रीनिवासन अय्यर. तो वी यूज टू लिव इन, वेल, इन दैट टाउन, कानपुर में रहते थे. तो वहाँ पर एक टेम्पल था. सो वो कभी भी परेशान होता था, गुस्सा होता था, कुछ फ्रस्ट्रेशन होता था, वो जाके उस टेम्पल में बैठ के एंड भगवान के ऊपर, अब कौन सा भगवान उसको जाने दीजिए, इट्स नॉट वेरी यू नो रेलेवेंट हियर. वो भगवान के ऊपर खूब गुस्सा करता था, वो खूब चिल्लाता था कि बस कर लिया, आर यू हैप्पी नाउ, मेरे को परेशान कर दिया ना, अब बड़ा मजा आ रहा होगा ना आपको. सो अभी मेरे को ख्याल आ रहा है जब आप कह रही हैं दैट ही एक्चुअली हैड बीन कम्युनिकेटिंग विद द गॉड. वो बात कर रहा था, कह रहा था मैं आपका बच्चा हूं, आई एम सैड नाउ, आर यू हैप्पी, मेरे को दुखी देख के आपको मजा आ रहा है, क्या कर रहे हो आप, व्हाई डोंट यू, यू नो, आई मीन ही वाज टॉकिंग. तो मुझे अभी
1: करेक्ट. और समीर जी ये बोलो, जब ना वो शांत हो जाएगा,
0: राइट,
1: तो ही दैट इज द मीडियम ऑफ letting out.
0: Correct.
1: वो है.
0: That's the beauty. अभी मेरे को समझ में आ रहा है. Oh God, amazing. That's so beautiful. तो दोस्तों बस एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, एक छोटा सा भजन के मुखड़े सुनते हैं, एंड देन वी विल कम बैक टू ललिता मैम हियर.

0: अमेजिंग, ब्यूटिफुल। तो फाइन, यहाँ तक हम लोगों की बात हो गई स्पिरिचुअलिटी की, रिलीजन की, प्रेयर की, मेडिटेशन की, अमेजिंगली ब्यूटिफुल। मैम बस अब हम लोग अपने प्रोग्राम के आखिरी पादान पे हैं, लास्ट स्टेज में हैं। सो आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि चलते चलते हमें, हमारी बात शुरू हुई थी ना मैम अध्यात्म की, यानी कि आत्मा का अध्ययन, रीडिंग अवर सेल्फ्स, स्टडीइंग अवर सेल्फ्स, हाउ वी आर वगैरह वगैरह। तो लास्ट में बस मुझे ये बताते चलिए कि आत्मा क्या है, व्हाट डू आई अंडरस्टैंड बाई आत्मा। कोई ऐसा अंदर टॉर्च है या दिया है या इज देयर अ पावर व्हिच विल जस्ट गो अवे व्हेन आई डाई, क्या है आत्मा, इज व्हाट?
1: ओके, आत्मा

0: as learned people said, I have read somewhere, the atma knows how long it has to stay in one body.
1: Oh, okay.
0: So, wo jab, it will decide when I can leave this body. Agar wo decide kar liya, ye time mein main body chhod dunga. So, it will go and that person is no more.
1: Okay.
0: Sir, body reh jata hai, atma chale jata. But okay. It will never die. It will search for another body.
1: Oh, all right.
0: So, atma hai. That is atma. It is a life force with which every body moves, it runs, it works, it operates. That is atma.
1: I get it. Oh, सच में मैम, ऑन अ लाइटर पार्ट ऑफ इट, लेकिन एक साधारण इंसान को समझने के हिसाब से बोल रहा हूँ. आई एम रियली रिलीव्ड एंड आई एम रियली हैप्पी टू लिसन टू दिस, दैट आत्मा इज अजर अमर. इट इज नॉट गोइंग टू डाई. इट विल एक्चुअली सर्च फॉर अनदर बॉडी. राइट.
0: करेक्ट.
1: सो आई एम रियली हैप्पी दैट समीर गोयल विल ऑलवेज लिव.
0: यस, डेफिनेटली वी समीर गोयल विल लिव.
1: Wow.
0: But with another name. Samir Goyal's Atma will live with another name. Okay. And another body.
1: Good. तो दोस्तों, टेक दिस मैसेज. आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व हैं, आत्मा हैं. सो यू आर नॉट गोइंग टू डाई. यू विल ऑलवेज ऑलवेज बी हियर. अब इस पूरे प्रोग्राम को सुनकर, ललिता मैम की सारी बातें सुनकर, आप क्या बनना चाहते हैं? एक अच्छे व्यक्तित्व जो हमेशा जीने वाला है, या कुछ और? डिसीजन आपके हाथ में होगा. ललिता मैम से तो सारी टीचिंग्स हमने ले ली. हम उनके बारे में सोचें, गुने, मेडिटेट करें एंड देन डिसाइड. ललिता मैम, बहुत बहुत आभार है आपको. साधुवाद. थैंक यू सो मच. बहुत प्यारे ढंग से, बहुत प्यारी प्यारी सिंपल तरीके से आपने हमें चीजें बता दी. थैंक यू.
0: आपको सब सिंपल तरीके से मैं बता पाई. दैट इज व्हाई आई एम सो हैप्पी. आई कुड स्पीक आउट माय हार्ट आउट, माय माइंड आउट, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई केम टू दिस प्रोग्राम. एंड सो हैप्पी टू इंटरैक्ट विद यू समीर जी. थैंक यू सो मच. माय प्लेजर ऑलवेज.
1: थैंक यू मैम.

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। वबी सभी अधूरेपन की खूबसूरती। दोस्तों, आपने महसूस किया है कि हम सब जिंदगी में परफेक्ट होने के पीछे भागते हैं। परफेक्ट फोटो, परफेक्ट करियर, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट लाइफ, जैसे जिंदगी कोई कंपटीशन हो जहां ट्रॉफी मिलती हो सबसे परफेक्ट इंसान की।

लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शब्द से मिलवाना चाहती हूँ जो हमें सिखाता है कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं। ये शब्द है वबी सबी। ये जापान की एक सोच है और इसका सीधा सा मतलब है जो अधूरा है, जो थोड़ा सा टूटा है, जो पूरा नहीं है, उसमें भी खूबसूरती है। सोचिए एक पुराना मिट्टी का घड़ा, उस पर हल्की सी दरार है, रंग भी हल्का पड़ चुका है, पर जब उसमें पानी भरा होता है तो उसकी ठंडक कुछ अलग हो जाती है। अब उस घड़े को देखकर आप कहेंगे, अरे ये तो परफेक्ट नहीं है। लेकिन वबी सभी कहता है इसी दरार में उसकी कहानी है। जो चीज बिल्कुल नई होती है उसमें इतिहास नहीं होता, पर जो थोड़ी सी पुरानी होती है, थोड़ी सी घिसी हुई होती है, उसमें यादें बसती हैं, एक अपनी दुनिया बसती है। वबी सभी का दूसरा पहलू है सब कुछ बदलता रहता है। सुबह की धूप देखी है आपने, आज की ही देख लीजिए। जब पेड़ों के पत्तों के बीच से हल्की हल्की रोशनी जमीन पर पड़ती है, वो रोशनी कुछ मिनट की मेहमान होती है, फिर बदल जाती है। शाम का आसमान जो पहले नारंगी होता है, फिर धीरे धीरे नीला और फिर अंधेरा। कोई भी पल रुकता नहीं और शायद इसीलिए हर पल कीमती है। हम अक्सर सोचते हैं ये वक्त हमेशा ऐसा ही रहे, पर सच ये है अगर सब कुछ हमेशा सेम रहेगा तो उसमें खास क्या रह जाएगा। वबी सभी हमें सिखाता है जो बीत रहा है उसे रोकना नहीं, महसूस करना सीखो। तब जरा रिश्तों की बात करते हैं। हम सब चाहते हैं एक परफेक्ट साथी जो हमेशा सही बोले, कभी गलती ना करे, हमेशा समझे हमें। पर क्या ऐसा होता है? हर इंसान में कमियां होती हैं। किसी को बात कहने में वक्त लगता है, कोई अपने जज्बात दिखा नहीं पाता। लेकिन जब हम उन कमियों के साथ किसी को अपनाते हैं, तभी तो प्यार गहरा होता है और सच्चा होता है। वह भी सभी कहता है जो थोड़ा सा अधूरा है वही ज्यादा सच्चा है। बिल्कुल सीधा, बिल्कुल चमकदार रिश्ता कभी कभी सिर्फ दिखावा होता है, पर जो रिश्ता वक्त के साथ घिस कर और नरम हो गया हो, उसमें असली गर्मी होती है, असली गर्माहट होती है उस रिश्ते की। जापान में एक कला है, जब कोई बर्तन टूट जाता है तो उसे फेंका नहीं जाता, उसकी दरारों को सुनहरे रंग से जोड़ा जाता है। उसकी दरारों को सुनहरे रंग से जोड़ा जाता है। सोचिए जो जगह पहले टूटने की निशानी थी वहीं अब सबसे ज्यादा चमक है। क्या ये खूबसूरत नहीं? हम अपनी जिंदगी में टूटने से डरते हैं। दिल टूट जाए, सपना टूट जाए, भरोसा टूट जाए, लेकिन शायद वही टूटना हमें सबसे ज्यादा मजबूती देता है। जो इंसान कभी नहीं गिरा उसको उठने की ताकत का पता कैसे चलेगा? वह भी सभी कहता है दरारें छुपाओ मत, उसमें रोशनी भर दो। आजकल सब कुछ तेज हो गया है, तेज बात, तेज फैसले, तेज काम, सब कुछ। हम खाना भी जल्दी खाते हैं, बात भी जल्दी करते हैं और प्यार भी जल्दी जल्दी चाहते हैं। लेकिन वह भी सभी कहता है थोड़ा धीरे चलो, सुबह की चाय को जल्दी जल्दी खत्म मत करो, उसकी गर्माहट को, उसकी खुशबू को, उसकी तासीर को महसूस करो। बारिश की बूंदों को बस देखकर निकल मत जाओ, उसकी खुशबू को सांसों में भरो। जिंदगी भाग कर नहीं, रुक कर समझ में आती है। और सबसे जरूरी बात, हम दूसरों की कमियां कभी कभी माफ कर देते हैं, पर अपनी कमियों को लेकर खुद ही से हर समय लड़ते रहते हैं। मैं परफेक्ट क्यों नहीं, मैं और अच्छा क्यों नहीं, मैं वैसे क्यों नहीं जैसे दुनिया चाहती है। वह भी सभी हमें ये सिखाता है खुद को अपने अधूरेपन के साथ स्वीकार करो। आपका सफर सीधा नहीं होगा, कभी नहीं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी रोशनी कभी अंधेरा, लेकिन हर मोड़ पर एक कहानी जरूर मिलेगी, हर दाग में एक याद जरूर मिलेगी।
और शायद वही आपको खास बनाती है। तो दोस्तों, आज जब आप किसी पुरानी तस्वीर को देखें, किसी अधूरे रिश्ते को याद करें या अपनी किसी गलती को सोचकर उदास हो जाएं, तो एक पल के लिए रुक के जरूर सोचिए, शायद ये मेरा वबी सभी है, शायद यही मेरी असली खूबसूरती है। परफेक्ट फूल जल्दी मुरझा जाते हैं, पर उसकी खुशबू देर तक रहती है। जिंदगी भी ऐसी ही है दोस्तों, थोड़ी सी अधूरी, थोड़ी सी टूटी हुई, फिर भी पूरी, और शायद इसी में उसका असली जादू है।

चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय। मोबाइल बैटरी ट्रूथ। बैटरी 1% पर होती है, फिर भी हम ब्राइटनेस फुल करके रील देखते रहते हैं, जैसे फोन को बोल रहे हो, तू बस थोड़ा सा और जी ले मेरे लिए।

मिलने से पहले वो धागा जो दिखता नहीं। कभी ऐसा हुआ है आप किसी को पहली बार मिले और दिल कहे इसे तो मैं पहले से जानता हूँ। नाम नया, चेहरा नया, पर एहसास बहुत पुराना। पुराने युग के लोग कहते थे प्यार मिलने से शुरू नहीं होता, वो मिलने से पहले से चल रहा होता है सदियों से। एक अदृश्य धागा जो दो लोगों को धीरे धीरे पास लाता है। आज के जमाने में सब कुछ तेज है। प्रोफाइल देखी, मैसेज भेजा, रिप्लाई आया या नहीं उस पर फैसला। पर एक समय था जब प्यार आंखों की भाषा में लिखा जाता था। सोचिए, शाम का वक्त, छत पर ठंडी हवा, घर के अंदर मेहमान, बातें और शोर, और दो लोग बस एक दो पल के लिए एक ही आसमान को देखते हुए। कुछ बोला नहीं गया पर सब कुछ कह दिया गया। इंडिया में प्यार अक्सर शोर नहीं करता, वो ठहर कर सांस लेता है। एक कप चाय के साथ हाथ बदलना, उंगलियों का हल्का सा स्पर्श, और फिर दोनों का सीधा होकर बैठ जाना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही उसकी शुरुआत है। पहला प्यार यहाँ कभी बदतमीज नहीं होता, वो विनम्र होता है, दिल तेज धड़कता है, पर चेहरा शांत रहता है। आप बताइए, क्या आपने कभी किसी का नाम बिना वजह दोहराया है, जैसे कोई मंत्र हो? यही तो वो पहला धागा है। पुराने देशों में कहानियां मिलती हैं। जंगली हंस पहाड़ों के पार संदेश ले जाते थे, एक पत्र लिखने में घंटे लगते थे। हर शब्द सोच कर लिखा जाता था, क्योंकि वो शब्द सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए होता था। आज हम टाइपिंग देखकर बेचैन हो जाते हैं, तब लोग महीनों तक इंतजार करते थे और विश्वास कम नहीं होता था। इंतजार उस धागे को कमजोर नहीं करता था, उसे और मजबूत करता था। उपनिषद कहते हैं, तत्त्वम असि, तुम वही हो। जिससे तुम प्यार करते हो उसमें अपना प्रतिबिंब देखने लगते हो। इसलिए प्यार सिर्फ बाहर का सफर नहीं, अंदर का सफर है, भीतर का। कभी कभी रिश्ते मिलते नहीं, याद रह जाते हैं। फूल मुरझा जाता है पर खुशबू हवा में बहती रहती है। शायद इसीलिए कुछ लोग जिंदगी में एक ही बार मिलते हैं पर हमेशा के लिए रह जाते हैं। इंतजार जब रुकना ही प्यार था। आजकल हम सब जल्दी में हैं। मैसेज का रिप्लाई 2 मिनट में नहीं आया तो दिल परेशान, कॉल लेट हो गया तो 100 सवाल। पर क्या आपने कभी महसूस किया है, इंतजार का अपना स्वाद होता है। पुराने समय में प्यार तुरंत नहीं मिलता था, वो धीरे धीरे पकता था। राधा और कृष्णा का नाम लीजिए, उनका मिलन छोटा था और विरह बहुत लंबा, पर उस विरह ने उनके प्यार को कम नहीं किया, उसने उसे भक्ति बना दिया। यहाँ प्यार पकड़ना नहीं, समर्पण है। हीर ने रांझा के लिए समाज का विरोध सहा, सोनी ने महिवाल के लिए दरिया पार किया, ससी ने रेगिस्तान में कदम रखे सिर्फ एक नाम के सहारे। ये सभी कहानियां सुखंत नहीं है दोस्तों, पर अमर हो गईं। क्यों, कभी सोचा है? क्योंकि यहाँ प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, सच्चा रहना है, उस इंतजार में, उस प्यार में। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, लोग उसे प्रेम का प्रतीक कहते हैं, पर वो दर्द का संगमरमर है, याद को रूप देने की कोशिश है। सोचिए, अगर सब कुछ तुरंत मिल जाए तो क्या उसकी कीमत समझ आएगी? इंतजार दिल को गहरा करता है, दूरी याद को तेज करती है,
पुराने युग में लोग चांद देखकर सोचते थे, वो भी शायद इसी चांद को देख रहा हो। कितनी सुंदर बात है ना, दूर रहकर भी एक ही रोशनी के नीचे साथ साथ होना। आज हम ऑनलाइन दिखते हैं, पर कभी कभी दिल ऑफलाइन हो जाता है, तब इंतजार बोझ सा लगता है, पर शायद इंतजार ही प्यार का असली पत्र है। जब तक मिलन ना हो तब तक हर दिन एक प्रतिज्ञा जैसा है। तो मैं आप

से पूछती हूँ, क्या आप रुक सकते हैं? क्या आप किसी के लिए समय को धीरे चलने दे सकते हैं? क्योंकि जो प्यार रुक सकता है वो ही टिक सकता है। और मुझे इस बात से वो गाना याद आ गया, हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये दूर से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। जिंदगी में हर चीज हमेशा नहीं रहती दोस्तों, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, रास्ते अलग हो जाते हैं, पर क्या प्यार कम हो जाता है? अमृता प्रीतम ने लिखा था, फूल चला गया पर सुगंध नहीं गई, कितनी गहरी बात है ये। भारत में प्यार सिर्फ मिलन नहीं, याद भी है, स्मृति भी है और गीत भी है। कुछ लोग जिंदगी में आते हैं और फिर चले जाते हैं, पर उनका असर हवा में जैसे रह जाता है, जैसे घुल जाता है, जैसे बरसात के बाद मिट्टी की खुशबू, जैसे शाम को मंदिर की घंटी। यहाँ प्यार को पकड़ने की कोशिश नहीं की जाती, उसे जीने दिया जाता है जैसे कोई तितली। ससी और पुन्नू की कहानी याद कीजिए, रेगिस्तान ने उन्हें अलग किया पर कहानी ने उन्हें अमर कर दिया, मौत ने शरीर लिया पर प्रेम को नहीं ले जा सकी। ये देश सिखाता है प्यार व्यक्ति तक सीमित नहीं, वो एक अनुभव है। आज के युग में हम प्यार को जल्दी डिफाइन कर देते हैं, जल्दी से आई लव यू बोल देते हैं, लेबल दे देते हैं और स्टेटस बना देते हैं इन अ रिलेशनशिप। पर पुराने समय में प्यार का जो ग्रामर था ना, जो व्याकरण थी, वो बहुत अलग होती थी। बहुत कम शब्द बट बहुत सारा अर्थ, एक निगाह, एक संकल्प, एक दिया जो हवा से बचाकर रखा गया। प्यार कभी कभी मिलकर नहीं, याद करके भी जिया जाता है। और शायद सबसे बड़ा सच यही है, प्यार को हमेशा रहना जरूरी नहीं पर उसका असर जरूर रहना चाहिए।

0: शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत।
1: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय। इंडियन वेदर लॉजिक। गर्मी में बोलते हैं बस बारिश आ जाए, बारिश में बोलते हैं बस थोड़ी सी धूप निकल जाए, धूप में बोलते हैं ये क्या भट्टी बन रखा है। What?

कोमोरेबी। जब रोशनी पेड़ों के बीच से दिल तक आती है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे खूबसूरत शब्द के बारे में शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। एक ऐसा शब्द जो सिर्फ एक नजारा नहीं, एक एहसास है। जापानीज भाषा का शब्द कोमोरेबी। कोमोरेबी का मतलब होता है जब सूरज की रोशनी पेड़ों के पत्तों के बीच से छन कर जमीन पर गिरती है। बस इतना सा नहीं, सिर्फ इतना सा नहीं। सोचिए, सुबह का वक्त है, हवा हल्की सी चल रही है, पेड़ के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे हैं और सूरज की किरणें उन पत्तों के बीच से निकलकर जमीन पर जैसे सोना बिछा रही हो। कभी आपने ध्यान दिया है इस पल पर? हम अक्सर जल्दी में होते हैं, सुबह सुबह भाग दौड़, ऑफिस, घर, फोन, नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस, पर कभी कभी जिंदगी हमें रोक कर कहती है, बस रुक जाओ और देखो। कोमोरेबी वही पल है। ये शब्द हमें सिखाता है कि रोशनी हमेशा सीधी और तीखी नहीं होती। कभी कभी रोशनी को भी पत्तों से होकर गुजरना पड़ता है, थोड़ा सा रुकना पड़ता है, थोड़ा सा टूटना पड़ता है, थोड़ा सा छनना पड़ता है, तब जाकर वो और भी खूबसूरत लगती है। बिल्कुल जिंदगी की तरह हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ पत्ते होते हैं। मुश्किलें, दुख, कंफ्यूजन, रिश्ते जो समझ नहीं आते, सपने जो देर से पूरे होते हैं। कभी कभी लगता है अंधेरा ज्यादा है और रोशनी कम, पर शायद रोशनी कम नहीं होती, वो बस किसी और तरीके से आ रही होती है, छन रही होती है आपके जीवन में। कोमोरेबी हमें ये याद दिलाता है कि रोशनी को परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी छनी हुई रोशनी भी काफी है दिल को गर्म रखने के लिए। आपने कभी देखा है जब पेड़ के नीचे खड़े होते हैं और जमीन पर रोशनी और छाया मिलकर एक अजीब सा डिजाइन बना देती है, कहीं गोल, कहीं टेढ़ी, कहीं बिल्कुल टुकड़ों में। जिंदगी भी वैसी ही है दोस्तों, कहीं साफ, कहीं उलझी हुई, कहीं चमक और कहीं सिर्फ एक साया, पर दोनों साथ हों तभी तस्वीर पूरी लगती है। कोमोरेबी सिर्फ प्रकृति का एक दृश्य नहीं है, ये एक दर्शन है। ये कहता है अंधेरा और रोशनी एक दूसरे के दुश्मन नहीं, ये साथी हैं। सोचिए, अगर पेड़ के पत्ते ना होते तो क्या रोशनी इतनी खूबसूरत लगती? शायद नहीं। तो शायद हमारे जीवन के पत्ते भी बेकार नहीं, उन्हीं के बीच से तो रोशनी छन के आती है। कभी कभी हम सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों, पर शायद सवाल ये होना चाहिए इस पत्ते के बीच से कौन सी रोशनी निकलने वाली है, जरा देख के देखूं। कोमोरेबी हमें धैर्य सिखाता है। पत्ता हिलता है, रोशनी का पैटर्न बदलता है, हवा तेज हो तो तस्वीर अलग, हवा हल्की हो तो तस्वीर अलग, ये बताता है सब कुछ बदल रहा है और बदलना ही प्रकृति का एकमात्र नियम है। आप नोटिस करिए, कोमोरेबी को देखने के लिए स्पीड कम करनी पड़ती है। जल्दी में हम सिर्फ पेड़ को देखते हैं या सिर्फ धूप को, पर जब हम थोड़ा रुकते हैं तब हम दोनों के बीच का एक जादू सा देखते हैं। आजकल हम सब क्लियर आंसर्स चाहते हैं, सीधा रास्ता, सीधी रोशनी, सीधा रिजल्ट, पर जिंदगी अक्सर कोमोरेबी की तरह होती है, सीधी नहीं, छनी हुई, साफ नहीं, थोड़ी सी मिलती जुलती, और शायद इसी में उसकी असली सुंदरता है। सोचिए, जब आप दुखी होते हैं और कोई दोस्त बस चुपचाप आपके पास आकर बैठ जाता है, वो दोस्त पूरा सूरज नहीं होता,
बस एक छनी हुई किरण होता है, पर उस पल में वही काफी होता है। या जब आप थककर घर आते हैं और चाय की पहली सिप लेते हैं, खिड़की से आती हुई हल्की सी धूप, वही कोमुरे भी है। ये शब्द हमें माइंडफुलनेस सिखाता है, पर सिंपल तरीके से। ये कहता है, जिंदगी के बड़े बड़े पल का इंतजार मत करो, छोटे छोटे पल में रोशनी ढूंढो। इम्परफेक्ट रोशनी से भी रोशनी ही होती है। कभी कभी हम अपनी जिंदगी के पत्तों को तोड़ देना चाहते हैं, सोचते हैं ये मुश्किलें ना होती तो मैं ज्यादा चमकता, पर शायद बिना इन पत्तों के आपकी रोशनी में वो कहानी ही नहीं होती। कोमुरेबी हमें ये एक्सेप्ट करना सिखाता है कि हर पल परफेक्ट नहीं होगा, हर रास्ता सीधा भी नहीं होगा, पर हर जगह कहीं ना कहीं से रोशनी जरूर आएगी, बस देखना होगा। मैं आपसे एक छोटा सा काम कहना चाहती हूं। आज जब आप बाहर निकलें या बालकनी में खड़े हों या किसी पार्क से गुजरें, एक बार बस रुक के पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं, सिर्फ 30 सेकंड के लिए, और देखिए कैसे रोशनी पत्तों के बीच से निकलकर जमीन पर गिर रही है, कैसे हवा के साथ वो पैटर्न बदल रहा है, कैसे छाया और धूप साथ साथ चल रहे हैं। और फिर अपने दिल से पूछिए, मेरी जिंदगी का कोमोरेबी क्या है? कौन सी मुश्किल के बीच से रोशनी आ रही है? कौन सा साया है जो रोशनी को खास बना रहा है? कोमुरेबी हमें ये याद दिलाता है कि रोशनी को चमकने के लिए कभी कभी साए की भी जरूरत होती है, और शायद हम सब अपनी जिंदगी में किसी और के लिए कोमुरेबी बन सकते हैं। पूरा सूरज नहीं, बस एक हल्की सी किरण। कभी कभी किसी की जिंदगी में सिर्फ इतना ही काफी होता है। तो दोस्तों, आज से जब आप पेड़ों के बीच से छनी हुई धूप देखें, उसे सिर्फ एक नजारा मत समझिए, उसे एक याद समझिए, एक संदेश समझिए कि जिंदगी टूट कर भी खूबसूरत हो सकती है, कि अंधेरा और रोशनी एक साथ रह सकते हैं, कि हर पत्ते के बीच एक किरण छुपी है उम्मीद की, और जब रोशनी आ रही है, चाहे छनी हुई ही सही, उम्मीद जिंदा है। यही है कोमुरेबी।

0: तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।
1: Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no peasant craze.
2: दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। प्रेरणा, मोटिवेशन इतना जरूरी क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हमें जिंदगी बेहद खूबसूरत तरीके से हंसते खेलते गुजारनी है, रोते धोते नहीं। तो आइए दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं हंसते खेलते हुए प्रेरणादायक गीतों के साथ और करते हैं प्रेरणादायक बातें।
1: Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata.
2: दोस्तों, डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मजेदार वाली बात है, आपका डर महज एक भाव के अलावा कुछ भी नहीं होता, जो आपकी कल्पना से और बढ़ता जाता है। डर को आप खुद चुनते हैं, लेकिन सफल लोग अपने इस डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। वो अपने डर को अपनी सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो हर उस चीज से लड़ते हैं जिससे वो डरते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं। वो खुद को विश्वास दिलाते हैं कि वो अपने डर से लड़ सकते हैं। बस आपको भी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। बने रहिए आरजे समीर के साथ।

हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले समय जरूर बदल जाता है और तब

अगर आप अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें परियों की कहानियां सुनाएं। यदि आप उन्हें और भी बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें और ज्यादा परियों की कहानी

नाम से ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।

0: दोस्तों, मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी। तो लीजिए, सुनिए।
1: आत्मा से तृप्त लोग कैसे होते हैं। मेरे एक मित्र बस स्टैंड पर बैठे अपने शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। अभी बस स्टैंड पर लगी नहीं थी। महाशय बैठे बैठे एक किताब पढ़ रहे थे। तभी लगभग 10 साल की एक बच्ची पास आकर बोली, बाबूजी पेन ले लीजिए, 10 के 4 दे दूंगी, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, शायद भाई होगा उसका। मेरे मित्र ने कहा कि उसे पेन तो नहीं चाहिए। इसके जवाब में उसका सवाल बहुत ही प्यारा सा था, तो फिर हम कुछ खाएंगे कैसे। मित्र ने कहा, बेटा पेन तो नहीं चाहिए पर तुम कुछ खाओगे जरूर। और फिर उन्होंने बैग में से बिस्किट के 2 पैकेट निकाले और दोनों को पकड़ा दिए। लेकिन मेरे मित्र की हैरानी की सीमा न रही जब उस बच्ची ने 1 बिस्किट का पैकेट वापस कर दिया और कहा, बाबूजी हमारे लिए 1 काफी है। मेरे मित्र जवाब सुनकर चौंक गए। उन्होंने दोबारा कहा, अरे रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मित्र की आत्मा को झिंझोड़ दिया उस बच्ची के जवाब ने, जब उसने कहा, तो फिर आप क्या खाएंगे। दोस्तों, इस संसार में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग इंसानियत को ताक पर रखकर लोगों को बेतहाशा लूटने में लगे हुए हैं। वहां एक भूखी बच्ची ने मानवता की पराकाष्ठा का पाठ पढ़ा दिया। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं आत्मा के तृप्त लोग। लोभवश किसी से भी इतना ना लेना कि उसके हिस्से का भी हम खा जाएं। मानवता की पराकाष्ठा का पाठ है, बहुत सुंदर।
0: दोस्तों, मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

आइए दोस्तों, आपको बताते हैं अमर के बारे में, जो अपने आप में एक प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं। गरीबी और आर्थिक विषमता के दर्दनाक हालात ने दशकों पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को इस कदर व्याकुल कर दिया था कि उनकी कलम से विपथगा कविता निकली थी। श्वानों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, मां की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात्रि बिताते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण। दुर्योग से अमीरी गरीब की खाई चौड़ी ही हुई है, इसलिए तमाम कानूनी उपायों के बावजूद बाल श्रम बाल विवाह की समस्या खत्म नहीं हो पाई है। कई बार किसी ढाबे या रसूखदार के घर के बाल श्रमिक हमें यूं देखते मिल जाते हैं, मानो कह रहे हो हमें उबार लो, हमारा हाथ थाम लो, हम भी कुछ बनना चाहते हैं। अमरलाल ऐसी ही अभिलाषाओं के प्रतिनिधि हैं। राजस्थान के बंजारा समुदाय में पैदा हुए अमर का बचपन भी उन अनगिनत बच्चों जैसा था, जिन्हें सुबह सुबह ये सवाल सताता था कि आज घर में खाने को कुछ मिलेगा भी या नहीं। इस बुनियादी चिंता ने अमर से भी उनका लड़कपन छीन लिया। उसमें स्कूल और किताबों का कोई जिक्र क्या होता। होश संभालते ही पेट भरने की मजबूरी ने अमर को भी पत्थर तराशों के बीच पहुंचा दिया। उनके परिवार पर स्थानीय महाजन का कर्ज ऐसा चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं लेता था, इसलिए परिवार के सारे सदस्य बंधुआ मजदूरी करने को बाध्य थे। छोटे छोटे बच्चे से भी पत्थर ढुलवाने में साहूकार सामंतों को शर्म नहीं आती थी। साल 2001 की बात है, अमर की उम्र भी 6-7 साल की रही होगी। उनका खानाबदोश परिवार उन दिनों जिस गांव की पत्थर की खान पर काम कर रहा था, वहां बचपन बचाओ आंदोलन एक शिक्षा रैली लेकर पहुंचा। खदान के करीब से गुजरते हुए रैली के अगुआ कैलाश सत्यार्थी ने जब नन्हे अमर के हाथों में पत्थर का बड़ा टुकड़ा देखा तो वो ठिठक गए। वो फौरन अमर के माता पिता से बात करने के लिए पहुंचे ताकि उन्हें समझा सकें कि ये जुल्म है, ये तो इस बच्चे के खेलने कूदने पढ़ने लिखने के दिन है। अब जिनके पुरखों ने कभी स्कूल न देखा हो तो वो भला क्या समझेंगे शिक्षा की कीमत। उनके लिए तो बाल मजदूरी कोई अनहोनी बात थी नहीं, क्योंकि वो सब यही तो करते हुए बड़े हुए थे। मगर कैलाश सत्यार्थी उन्हें समझाने में जुटे रहे कि उनका बेटा किसी बड़े काम के लिए बना है। उन्होंने अमर के पिता से कहा कि यदि वो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन नहीं कर सकते तो जयपुर में एक बाल आश्रम है जो इसकी जिम्मेदारियां उठा सकता है। गरीब माता पिता भी बेटों का भला चाहते थे और उनके दिल में भी तरह तरह की तमन्नाएं थीं। कैसे अपनी संतान को नजरों से इतना दूर भेज दें। बिछो के ख्याल से ही उनका दिल कांप उठा। लरजती हुई आवाज में अमर के पिता ने सत्यार्थी जी से बस यही कहा कि वो पहले जयपुर आश्रम जाकर वहां रह रहे बच्चों को देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। माता पिता दोनों जयपुर बाल आश्रम आए। असंतोष की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि जैसी जिंदगी वे अपने बच्चों को दे रहे थे उससे आश्रम के जीवन की कोई तुलना ही नहीं थी। अमर अपने दो बड़े भाइयों के साथ जयपुर आश्रम आ गए। वो सब बेहद खुश थे क्योंकि वहां वे अपनी मर्जी से खेल सकते थे, पढ़ लिख सकते थे। 6 महीने तक आश्रम में पढ़ने के बाद अमर और उनके भाइयों का औपचारिक शिक्षा के लिए एक सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। अमर ने वहीं से 12वीं की अपनी शिक्षा पूरी की। बालाश्रम ने अमर और उनके भाइयों को एक नई जिंदगी दी, बल्कि अमर के नेतृत्वकारी गुण को भी बहुत अच्छी तरह से निखारा। वो कई बार बाल आश्रम बाल सभा के अध्यक्ष चुने गए। आश्रम में ही उन्होंने सत्यार्थी के बेटे भुवन से संवाद करने का मौका मिला, जो पेशे से वकील है। जैसे जैसे अमर बड़े और शिक्षित हुए, उनका यकीन पुख्ता होता गया कि कानून ही वो जरिया है जिसकी मदद से बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाई जा सकती है। साल 2013 में उन्होंने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और 2018 में कानून में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद 2019 में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। करीब 6 महीने तक दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकालत करने के बाद 1.5 साल तक अमर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ वकील के साथ काम भी किया और उसके बाद वो अपनी संस्था के लिए काम करते रहे। वो न सिर्फ बाल मजदूरों के मुक्ति अभियान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं,
बल्कि जिस किसी गांव के बारे में उन्हें पता चलता है कि वहां बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा। अमर वहां पहुंचकर अपनी कहानी सुनाते हैं और परिजनों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने बच्चों का भविष्य बचा लें। अमर को स्वीडन और नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को संबोधित करने का भी मौका मिला, जहां उन्होंने बच्चों के अधिकारों और बाल विवाह के खिलाफ दुनिया का ध्यान खींचा। अमर के माता पिता के पास जोधपुर में अब अपना घर है। जब भी कोई उनसे पूछता है, आपका बेटा दिल्ली में वकील है, अमर के अभिभावकों के लिए ये गौरव का क्षण होता है। उनके दूसरे बेटा बेटी भी अब नौकरी करते हैं, मगर इन वर्षों में अमर बार बार अपने समुदाय के बीच लौटते हैं। नतीजन उनके बंजारा समुदाय के अब लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। इलाके के खानाबदोश समुदायों के सामने मिसाल के तौर पर उनकी कहानी पेश की जाती है। मानना होगा कि अमर ने हाशिए पर जीने वाले हरेक बच्चे के हक की लड़ाई लड़ी है। अब अपने बचपन को उन्होंने हमेशा अपने भीतर जिंदा रखा है, ताकि वो उन्हें याद दिलाता रहे, हजारों बाल श्रमिकों को अमर की तलाश है।

दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए। बेशक हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ तो अच्छा जरूर होता है।

0: अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया।
1: मुश्किल का नाम मिट जाएगा।

0: सर, इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: That's the spirit, sir.

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता। हरी हरी दूब पर ओस की बूंदें अभी थीं, अभी नहीं है। ऐसा खुशियां जो हमेशा हमारा साथ दे, कभी नहीं थी, कहीं नहीं है। कंक्यार की कोख से फूटा बाल सूर्य जब पूरब की गोद में पांव फैलाने लगा, तो मेरी बगीची का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं या उसके ताप से भाप बनी ओस की बूंदों को ढूंढूं? सूर्य एक सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। ये बात अलग है कि ओस क्षणिक है। क्यों ना मैं क्षण क्षण को जीऊं, कण कण में बिखरे सौंदर्य को पीऊं? सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीचे की हरी हरी दूब पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: हमारे देश में भयंकर वाली टेक्नोलॉजीज चलती हैं। अमेरिका के दो साइंटिस्ट एक बात सुनकर हमारे देश की बेहोश हो गए जब उन्हें पता चला कि घर में अगर चप्पल उल्टी रखती जाए तो लड़ाई हो जाती है।
0: दोस्तों, मैं हूं आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले आइए ना एक गीत सुन लेते हैं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सेल्समैन ने कहा, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू ने कहा, नहीं, हम कॉकरोच को इतना लाड़ प्यार नहीं करते, आज पाउडर लगा देंगे, कल परफ्यूम मांगेगा।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके, जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा।

0: Nevada. What a wonderful phrase.
1: Hakuna Matata. Ain't no peasant craze.
2: दोस्तों, आज के इस हंसी खुशी के प्रेरणादायक प्रोग्राम में बस इतना ही। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, कल फिर मिलता हूँ।
3: Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata.
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्याभील 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
5: कोयले की कहानी।
6: दोस्तों, जरा पहचानिए तो ये आवाज किसकी है। पहचानिए, पहचानिए। ये भाप के इंजन की आवाज है। क्या आपको ये मालूम है कि भाप के इंजन को चलाने में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता था? तो चलिए हम बता देते हैं, वो ईंधन था कोयला। क्या आपने कोयला देखा है? आजकल कोयले का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता। आइए सुनते हैं कोयले की कहानी उसी की जुबानी।

अरबों सालों में बन पाया था, गहराई में दबा पड़ा था, प्राकृतिक प्रक्रमों के चलने से, घने जंगलों के दबने से, मिट्टी की परतें जमने से, दाब ताप के फिर बढ़ने से, कार्बनीकरण प्रक्रिया के चलने से, धीरे धीरे हौले हौले मृत वनस्पति बदली मुझमें।

0: लटका उल्टा फंदे से,
1: फंदे से
0: रस्सी कहे अचंभे से, लटका उल्टा फंदे से, फंदे से, फंदे से रस्सी कहे अचंभे से, मेरा धागा तेरे पास सदा मिलेगी तुझको खास।
2: बकड़ बकड़ बम्बे बाओ, बम्बे बाओ, बम्बे बाओ,
3: अकड़ बकड़ बम्बे बाओ, अस्सी नब्बे पूरे सौ में निकला धागा, चोर निकल के भागा।
2: अकड़ बकड़ बम्बे बाओ, अस्सी नब्बे पूरे सौ, सौ में निकला धागा तो चोर निकल के भागा। बच्चों खूब हंसो, मजे करो, बैठे ना रहो, खूब हंसो।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: चरवाहा।

0: अरे किशन, किशन बेटा, कहाँ है तू?
1: क्या है काका?
0: आज पाठशाला नहीं जाना
1: है काका? आज तो रविवार है।
0: ओ, मैं तो भूल ही गया, आज तो तुम्हारी रविवार की छुट्टी है। सुन, तू जा, आज तू ही पशु चरा ला।
1: काका, मुझे तो आज पाठ याद करना है।
0: ओफो, तुझे तो बस सारा दिन पाठ ही याद करना है। ऐसा कर, पुस्तक साथ ही लेता जा, पशु चरते रहेंगे और तुम अपना पाठ याद कर लेना।
1: वाह काका, जब मैं पाठ याद करता हूँ ना, तो पूरा ध्यान पुस्तक में ही रखता हूँ, इधर उधर नहीं देखता।
0: अरे शाम को आकर पाठ याद कर लेना। ये ले, पकड़ लाठी और ले जा पशुओं को चराने। और हाँ, ये ले डिब्बा, इसमें भात है।
1: अच्छा,
0: दोपहर को खा लेना। मुझे तो आज शहर जाना है।
1: तब तो ठीक है काका। हाँ काका, मेरे लिए शहर से हिंदी की पुस्तक लेते आइएगा।
0: ठीक है बेटा, तुम्हारी हिंदी की पुस्तक लेता आऊंगा।
1: चल शेरू, चल दोस्त, आज तुझे भी खूब घुमाऊंगा, चला मेरे साथ।
2: किशन पशुओं को लेकर चरागाह में जा पहुंचा। वो आज बहुत खुश था। पशु हरी हरी घास चरने लगे। किशन अपने पशुओं का पूरा पूरा ध्यान रखता कि उसके पशु किसी के खेत में घुसकर कोई नुकसान ना कर दे। वो एक पेड़ की छाया में जा बैठा। उसने भात का डिब्बा खोला ही था, तभी उसकी दृष्टि सामने के खेत पर जा पड़ी। उसने देखा बहुत सारे पशु मुखिया काका के खेत में घुस आए हैं और दूर तक फैली हुई तरबूज और खरबूजों की बेलें तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं और इधर उधर फेंक रहे हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा।
3: अरे ओ शर्मू, ओ शर्मू, किधर है तू भाई? अरे कोई है? वो देखो, शंभू के पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं। ओए हुर्रिया, हप हप हप, चला चला चला, हे हा।
4: अरे ये चादर ओढ़े कौन सो रहा है? कौन है भाई? कौन है भाई?
5: अरे चादर क्यों खींच रहा है, क्यों चिल्ला रहा है?
6: सोने भी नहीं देता।
4: अरे शंभू, तू तो आराम से सो रहा है, सामने देख। अरे उठना, तेरे पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं।
5: ओफो, तुझे क्या, तेरा खेत तो नहीं उजाड़ रहे, जा जाकर अपना काम कर।
4: अरे शंभू, कैसा आदमी है रे तू,
5: क्यों परेशान कर रहा है? चल जा यहां से, सोने भी नहीं देता। जा जाकर तू ही पशुओं को बाहर निकाल दे।
4: अरे इतने सारे पशु, मैं अकेले कैसे निकालूंगा? देख, अरे देख ना, किस बुरी तरह से खेत को उजाड़ रहे हैं।
5: एक बार कह दिया ना, तेरा खेत तो नहीं है, फिर तुझे क्या परेशानी है? मेरी समझ में नहीं आ रहा।
4: खेत तो सभी के होते हैं, आज तेरे पशु मुखिया काका के खेत में घुसे हैं, कल तेरे खेतों में किसी और के पशु भी घुस सकते हैं।
5: ओफो,
4: तब तेरी समझ में आएगा।
5: अच्छा जा जा जा जा जा, मुझे सोने दे।
4: किसी का खेत उजड़ रहा है और इसे कोई चिंता ही नहीं।
2: भागता भागता किशन मुखिया काका के खेत में जा पहुंचा और अकेले ही लाठी घुमाते हुए खेत में से पशुओं को निकालने लगा। शेरू भी भौं भौं करके पशुओं को भगाने में उसकी मदद करने लगा। इतने में ही किशन ने दूर से देखा मुखिया काका उसी की तरफ आ रहे हैं।
3: चलो चलो चलो
7: किशन, तुम खेत में क्या कर रहे हो?
4: मुखिया काका, पशु खेत में घुसाए थे, उन्हें निकाल रहा था।
7: अरे ये सब तरबूज और खरबूजे कैसे बिखरे हैं? किसने किया ये सब?
4: वो काका शंभू है ना,
7: हाँ।
4: उसके पशु खेत में घुसाए थे।
7: और शंभू कहाँ था?
4: वो देखिए, वो वहाँ चादर ओढ़े सो रहा है, वो पेड़ के नीचे।
7: तो फिर उसके पशु किसने निकाले?
4: वो तो मैंने देख लिया काका, नहीं तो।
7: तो तूने शंभू को नहीं जगाया?
4: बहुत जगाया काका, बहुत जगाया, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी।
7: इन्हें अकेले ही इतने सारे पशु तुमने कैसे निकाले?
1: मेरे पास लाठी है ना,
7: हाँ।
1: इसी से, और मेरे शेरू ने भी मेरी मदद की।
7: बेटा किशन, तुम बहुत बहादुर हो, आओ मेरे साथ चलो, मैं शंभू की खबर लेता हूं। चलो।
1: चलिए काका, चल शेरू, आ।
2: मुखिया काका किशन को लेकर उसी जगह जा पहुंचे जहां पेड़ के नीचे शंभू सो रहा था।
7: शंभू, अरे ओ शंभू,
3: अरे ओ शंभू,
5: अरे अरे, आज पशु चराने क्या आ गया? सोने नहीं देता।
3: क्या है?
7: सोने नहीं देता, तुझे मैं सुलाता हूँ। और चलकर देख तेरे पशुओं ने मेरे खेत को कैसे उजाड़ा है।
5: आप मुखिया साहब, आपके खेत किसने उजाड़े?
7: मुझसे पूछ रहा है।
8: तू चल के देख खेत की हालत, तब तुझे पता चलेगा किसने उजाड़े हैं खेत।
5: अजी मुखिया जी, मेरे पशु तो यही थे। किसी और के पशु घुसे होंगे।
1: अरे शंभू, क्या बात कर रहा है? मैंने तुम्हें इतना चिल्ला चिल्ला कर बताया, तेरे पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं।
5: तू चुप रह, तू तो आज पहली बार पशु चराने आया है, तुझे कुछ मालूम भी है?
8: अगर आज किशन न होता तो मेरे खेत में एक भी तरबूज और खरबूजा न बचता, समझे?
5: लेकिन मेरे पशु कहाँ हैं?
8: खुद तो सो रहा था और हमसे पूछ रहा है कि पशु कहाँ हैं।
5: मुखिया काका, आज माफ कर दो, आगे से ध्यान रखूंगा।
8: अच्छा चल जा और देख,
5: हाँ।
8: आगे से अपने पशुओं का ख्याल रखना
5: जी,
8: किसी और के खेत में ना घुसें
5: जी।
8: हाँ, तुझे छोड़ रहा हूँ
5: जी,
8: पर आगे से ध्यान रखना, समझे?
5: मुखिया जी, आगे ऐसा कभी नहीं होगा, आगे ऐसा कभी नहीं होगा।
8: चल बेटा किशन, तुझे मीठे तरबूज और खरबूजे खिलाता हूँ।
1: मुखिया जी, किसी और दिन खाऊंगा, अब मैं भी चलता हूँ। मेरे पशु वो देखिए, ओ दूर निकल गए हैं। अच्छा मुखिया जी।
8: अच्छा बेटा किशन, किसी दिन घर आना। हाँ
1: आऊंगा, जरूर आऊंगा मुखिया जी। चल शेरू, आ। इधर
2: इधर चल। किशन जब शाम को घर लौटा तो उसके पिताजी शहर से वापस आ गए थे। उसने अपने पिताजी को सारी बात बताई कि कैसे शंभू के पशु मुखिया काका के खेत में घुस गए थे और शंभू पेड़ के नीचे सो रहा था। उसने अकेले ही मुखिया काका के खेत से पशुओं को बाहर निकाल दिया। इस पर उसके पिताजी बहुत खुश हुए और बोले,
0: मेरा किशन बड़े काम का है, अपने साथ साथ औरों का भी ध्यान रखता है, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ा बहादुर है, अकेले ही इतने पशुओं को भगा दिया और दूसरे के खेत को उजड़ने से बचा लिया। इधर आ बेटा, शाबाश।
4: काका,
0: जा बेटा, पहले कुछ खा ले, फिर अपना पाठ याद करना।
4: अच्छा काका, चल शेरू आ।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।

0: हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर कार्यक्रम में हम आपके लिए कोई ना कोई सुविचार लेकर आते हैं, तो आज आपके लिए प्रस्तुत करते हैं सबसे पहले एक सुविचार।
2: तो सुविचार है,
1: द वन हु चेजेस टू रैबिट्स गेट्स नन, यानी
2: जो दो खरगोशों का पीछा करता है वो किसी को भी नहीं पकड़ पाता।
1: वो किसी को भी पकड़ नहीं पाता। तो श्रोताओं, इस सुविचार का अर्थ ये हुआ कि हमें एक साथ बहुत सारे लक्ष्य नहीं रखने चाहिए,
2: मात्र एक लक्ष्य पर स्वयं को केंद्रित करना चाहिए।
1: जी हाँ, तो जब भी कोई काम करें तो उसी पर अपने लक्ष्य को साध करके रखें, सफलता आपके सामने होगी। साथियों, अब बारी है श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं को जानने की। हमारे एक श्रोता मित्र ने लिखा है, प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, मैं ब्लाइंड हूँ, मेरा नाम भी दीजिए प्रोग्राम में। तो दोस्त, आपकी प्रतिक्रिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन समस्या ये है कि आपने अपना नाम नहीं बताया।
2: सभी श्रोताओं से निवेदन है कि कृपया अपना नाम जरूर बताइए
1: और अपना पता और राज्य का नाम भी जरूर बताइए,
2: और हाँ, संपर्क बनाए रखिए।
1: एक और श्रोता की प्रतिक्रिया हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, और इस श्रोता ने लिखा है,
2: अजीत जी और विमलेश जी को मेरा सप्रेम नमस्कार।
1: मैं कानाराम चौहान, गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से। हमारा अपना कार्यक्रम उमंग मैं नियमित रूप से सुनता हूँ। इसमें दी जाने वाली जानकारियाँ मनोरंजक के साथ साथ बड़ी ही ज्ञानवर्धक होती हैं। विगत दिनों में इंसुलिन की कहानी आपने सुनाई, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इसके लिए CIET NCERT का धन्यवाद।
2: श्रोता मित्रों, जो कानाराम जी ने लिखा है वो एक सैंपल है।
1: सैंपल सुनाने का तात्पर्य ये था कि इसी प्रकार आप अपने बारे में भी लिख सकते हैं, यानी नाम,
2: जगह,
1: जिला और
2: राज्य।
1: तो आइए चलते हैं आज के कार्यक्रम में, और आज के कार्यक्रम के द्वारा यात्रा करते हैं एक विचित्र संसार की,
2: जहां कुछ भी हमारी दुनिया की तरह नहीं है।
1: सुनते हैं कार्यक्रम गुलिवर की विचित्र यात्राएं।
3: मैं एक जहाज पर नौकरी करता था।

नौकरी करते हुए मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार दक्षिणी सागर से पूर्वी द्वीप समूह की ओर जाते हुए हमारा जहाज तूफान में फंसकर चकनाचूर हो गया। सौभाग्य से मैं तैरकर किनारे आ गया और थककर वहीं लेट गया। बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को पतले पतले धागों से बंधा पाया। मैं आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था कि कोई चीज मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आ खड़ी हुई। ये एक मानव आकृति थी, बहुत ही छोटी सी। कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। मैं समझ गया कि चुपचाप लेटे रहने में ही भलाई है। अब उन अद्भुत प्राणियों ने तीर बरसाना बंद कर दिया। उनमें से एक कुछ दूर ऊंचाई पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर कुछ कहने लगा। मैंने हाथ हिलाकर उसे समझाने का प्रयत्न किया कि मैं उसकी भाषा नहीं समझता। फिर बार बार अपना हाथ मुंह की ओर ले जाकर मैंने इशारा किया कि मैं भूखा हूं। वो मेरा इशारा समझ गया। बस फिर क्या था, मेरे मुंह के पास सीढ़ी लगा दी गई और सैकड़ों लोग टोकरियों में खाने का सामान ला ला कर मेरे मुंह में उंडेलने लगे। जब पानी पीने का इशारा किया तो उन्होंने कई पीपे मुंह में उंडेल दिए। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि मेरा पेट है या कुआं। थोड़ी देर में ही मेरी पलकें भारी हो गईं और मैं गहरी नींद में सो गया। खड़खड़ खड़खड़ की आवाज से जब मेरी नींद टूटी तो ये देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि एक गाड़ी में रखकर मुझे कहीं ले जाया जा रहा है। उन छोटे छोटे लोगों की एक विशाल भीड़ हथियार लिए मेरे दाएं बाएं चल रही थी। मैं समझ गया कि मुझे कैद कर लिया गया है। मेरे वहां पहुंचते ही लिलिपुट वासियों की एक विशाल भीड़ मुझे देखने के लिए उमड़ पड़ी। मेरे पहाड़ जैसे शरीर को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित थे। लिलिपुट के बादशाह ने मुझे एक पुराने मंदिर में कैद कर लिया। संभवतः राजधानी में यही एक ऐसा स्थान था जिसमें मैं झुककर घुस सकता था। शेष मकान तो खिलौने जैसे थे। जिस तरह वे लोग मेरे विशाल शरीर को देखकर आश्चर्यचकित थे, उसी तरह मैं भी उनकी छोटी सी दुनिया को देखकर हैरान था। कुछ शरारती लोग मुझ पर तीर चलाने लगे। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर
मुझे सौंप दिया। पांच को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और एक को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और छह विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख में चौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं ना जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलिपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलिपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलिपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया।
ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलीपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं न मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं, पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए। ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटे से छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सब के बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलीपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे, उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे
इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली, इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े, तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे

0: हो, तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: गुलीवर की विचित्र यात्राएं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: बिन्नी का सपना।
0: अरे तुम्हें क्या हुआ?
2: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
0: ओह, किसने की तुम्हारी ये हालत?
2: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

0: तापमान हम बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।
1: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
2: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
3: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
1: CFC है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती है, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
4: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ।

0: ये सपना था, पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: आओ बच्चों, आज हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला।

अह से कोई भी शब्द नहीं बनता है, इसे दो बिंदी से दर्शाते हैं। अह को कई शब्दों के आखिरी में लगाया जाता है, जैसे नमः, प्रातः।

अंग से कोई भी शब्द नहीं है, लेकिन इसको शब्द के ऊपर बिंदी जैसे जोड़ा जाता है। इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। इस बिंदी से शब्द की आवाज बदलती है, जैसे चांद, जंगल।

इया से कोई भी शब्द नहीं है, इसको हम आधा अनुस्वार बोलते हैं। इसको अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु जैसे जोड़ा जाता है, जैसे गाँव, जहाँ।

ण से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, लेकिन ण शब्द के बीच में या आखिरी में आता है, जैसे बाण।

0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबा की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
2: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
3: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
2: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
3: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
2: यानी कि आपके कहने के आधार पर क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
3: एक बार जब विसंगति आ जाती है जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है।
2: जी जी जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
3: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए

0: अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं, लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
1: जी बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे, वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर सुमन के मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं, तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
0: जी, ये दो वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है, और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
2: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है, ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति ही खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
1: जी बताइए।
0: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब की तरफ से, ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की खोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले, या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये?
0: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे, तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभावों से रोका जा सकता है, और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
1: तो दोनों को ही खानी
0: चाहिए। और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
1: अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
0: जी,
1: और डॉक्टर साहब,
3: क्या फाइलेरिया की खा लेने से पूरे साल इससे बचा जा सकता है?
0: जी नितिन जी, ये एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
1: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर, और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है, इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
0: ये जब अभियान चलता है, हम सभी यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें। जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग, उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें। इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
1: जी, और डॉक्टर साहब, एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
0: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता, इसके जो कीटाणु हैं वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में दस बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं। अच्छा। तो जब किसी का कोई भी, अगर किसी को जांच करानी होती है, तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
1: अच्छा, जी जी, रात के 10 बजे से 2 बजे तक जब आ जाता
0: वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी
3: जी, और मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फिलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
1: जी बताइए।
0: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहाँ पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
1: जी
4: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़ पर।
5: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
6: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति के साथ रोज जो उठता बैठता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM को। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाता है। किसान साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं तलहनी फसलों के ऊपर। तो तलहनी फसलों का अगर नाम आया है तो हमारा जो झाबुआ जिला है उसमें अधिकतर हम देखते हैं हमारे यहाँ का किसान जो है मूंगफली की, सोयाबीन की और तिल्ली की खेती करता है। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि मूंगफली का हम तेल निकालते हैं, साथ ही हम उसको स्नैक्स में भी खा रहे हैं। बाजारों में छोटे छोटे पैकेट्स में सिंगदाने हमको मिलते हैं, हम उसको रोस्टेड करके भी खाते हैं, साथ ही हम मूंगफली का बटर बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मूंगफली से बनी हुई चीज़ों का जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो आज हम जानेंगे कैसे हम मूंगफली की अधिक से अधिक उपज ले सकते हैं और कौन सा बीज हमें इस्तेमाल करना चाहिए और मूंगफली की खेती में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए आदि जानकारियों को जानेंगे। तो किसान साथियों, चलिए शुरू करते हैं।
2: हमारे देश में तिलहन की खेती की विशेष भूमिका है, क्योंकि हमारे रोजमर्रा के खानपान में खाने वाले तेल का इस्तेमाल खूब होता है। और तिलहनी फसलों की बात जहां तक आती है, हमारे देश में मुख्य तौर पर मूंगफली, सोयाबीन, तिल आदि तिलहनी फसलों की खेती होती है। इनमें मूंगफली की क्या खास भूमिका है, आज हम इस पर बात करेंगे। क्योंकि मूंगफली का तेल जहां तेल के रूप में इस्तेमाल होता है, वहीं इसके दाने जो हैं वो नमकीन के रूप में खाए जाते हैं। और साथ ही आपको तो पता ही होगा कि आजकल मूंगफली के बटर की मांग भी खूब बढ़ने लगी है। तो ऐसे में मूंगफली की खेती से किसानों को क्या फायदा हो सकता है, इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, किसान क्या करे ताकि उनकी मूंगफली का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो, इन सभी पहलुओं पर आज हम विचार विमर्श करेंगे। और इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़ गुजरात से बेहतर जगह और भला क्या हो सकती है। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और बहुत सारे किसान भी मौजूद हैं जिनसे हम ये पूरी बातचीत करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्वागत करें हमारे खास मेहमानों का। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मूंगफली अनुसंधान निदेशालय के निदेशक डॉक्टर राधाकृष्णन, साथ ही हमारे साथ है राष्ट्रीय कृषि सलाहकार श्री एस के दलाल, इनके साथ ही विशेष मेहमान डॉक्टर एस डी सावलिया हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो कि सहायक तकनीकी अधिकारी हैं, साथ ही डॉक्टर आर ए जाट वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान और डॉक्टर रिंकू डे वरिष्ठ वैज्ञानिक है सूक्ष्म जीव विज्ञान की। और साथ ही बहुत सारे किसान जैसा कि मैंने आपको बताया वो यहाँ पर मौजूद है। तो आप सभी का स्वागत है अपनी तरफ से और इन सभी विशेषज्ञों के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। बिल्कुल, और इसी तालियों की गूंज के साथ आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और चर्चा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं एक रिपोर्ट।
3: हमारे देश में तिलहन की 7 बड़ी फसलें हैं और मूंगफली का इनमें प्रमुख स्थान है। खाना बनाने में मूंगफली के तेल का खूब इस्तेमाल किया जाता है। भारत में बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। एक अनुमान के अनुसार सरकार को हर साल करीब 1.5 करोड़ टन खाद्य तेल आयात के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। मूंगफली समेत दूसरी तिलहनी फसलों की उपज में बढ़ोतरी उपज और मांग के अंतर को पा सकती है। सरकार और वैज्ञानिक अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने इस बार मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। इसके अलावा 100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार बोनस भी दे रही है। दूसरी ओर हमारे वैज्ञानिक ज्यादा उपज वाले बीज तैयार कर रहे हैं, साथ ही वो किसानों से वैज्ञानिक विधि से मूंगफली की खेती करने पर जोर दे रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार और वैज्ञानिकों की ये कोशिशें रंग लाएंगी और मूंगफली भारत को खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में अपनी भूमिका निभाएगी।
2: तो अभी आपने रिपोर्ट देखी, आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर राधाकृष्णन, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी मैं, क्या वजह है कि अनाज के उत्पादन में हमने जो सफलता हासिल की है, तिलहन के मामले में वो बात अभी तक नहीं हो पाई है, क्या वजह है इसकी?
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન, આપું રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં, એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।
4: તિલન જહાં તક મૂંગફલી કે બાત હૈ વો રેઇન ફેડ હૈ જો બારિશ કે ઉપર નિર્ભર હૈ કરીબ 80% ग्राउंडनट जो है बारिश की वजह हेल्प से ही उगाया जाते हैं। जो बारिश का जो कमियां आते हैं, जो टाइम पर नहीं आते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम, जो बारिश कम होने का, ये मेजर कारण है। इसके अलावा कुछ कीट वगैरह भी होते हैं जिसका नियंत्रण का अभी अच्छे तकनीक अवेलेबल है। बाकी जो मेजर प्रॉब्लम जो है वो ड्राउट का है, जो कम पानी होने का होता है।
2: बिल्कुल दलाल जी, आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि ये खाद्य तेल आयात जो है, इसे लेकर सरकार को करोड़ों खर्च करना पड़ता है। ऐसे में केंद्रीय कृषि विभाग जो है वो क्या कदम उठा रहा है ताकि जो घरेलू तेल उत्पादन है उसे बढ़ाया जा सके?
5: आपने बिल्कुल सही सवाल किया। भारत के अंदर हम खाद्यान्न तेल जो आयात करते हैं वो उसके ऊपर भारत सरकार का करीब करीब 73,000 करोड़ रुपया साल का खर्च होता है। हमारी जो पैदावार है जो तिलहन की फसलों से होता है, उससे जो हम अपने घरेलू तरीके से जो पैदा कर सकते हैं तेल, वो करीब करीब आधा होता है, 50% के करीब हम यहाँ करते हैं और 50% हमको आयात करना पड़ता है। करीब 14-15 के आंकड़ों के मुताबिक 17 KG हर एक इंसान जो है पर कैप्टा कंजम्पशन है, जो कि बहुत ज़्यादा है, जबकि WHO के मुताबिक 10 KG काफ़ी होता है। तो हमारे यहाँ तेल का जो खपत है बहुत ज़्यादा है, जिसको हम इस माध्यम के थ्रू ये कहना चाहेंगे कि लोग तेल कम खाएं, ये स्वास्थ्य के लिए भी ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। हम एक्सपोर्ट भी करते हैं मूँगफली, जैसे हमने 5,000 करोड़ की पिछले साल हमने एक्सपोर्ट किया है। टोटल हम करीब करीब जो तिलन फसलों के जो हैं वो 19,800 करोड़ का निर्यात भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे को काफ़ी इसके जो विदेशी मुद्रा है वो खर्च करनी पड़ती है। इसलिए हम लोगों को तेल की कम खपत करनी चाहिए। तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कई एक कार्य किए हैं, जिसके अंदर ऑयल पाम एक ऐसा वो हमने निकाला है जिसका पोटेंशियल देश के अंदर करीब 19.33 लाख हेक्टर है, जहाँ पे हम पाम ऑयल जो है वो पैदा कर सकते हैं, जिसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है और हमारे खाने की जिसकी कमी है उसको काफी हद तक पूरा कर सकती है।
2: जी बिल्कुल। तो तिलहन उत्पादन की बात जब हो रही है, राधाकृष्णन जी आप बताएं हमें कि इसमें मूंगफली खास तौर पर इसकी भूमिका कितनी है?
4: मूंगफली का भूमिका बाकी जो तिलहन है, जैसे राई है या मस्टर्ड या सोयाबीन है, उसके तुलना में अभी कम है, क्योंकि इसका जो एरिया है वो उस क्रॉप के हिसाब से ये तीसरे स्थान पर है।
2: जी,
4: तो ये तीसरे स्थान पर है अभी।
2: और निदेशालय की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही है मूंगफली उत्पादन को बढ़ावा देने?
4: ये निदेशालय नया नया किस्में डेवलप करने का, और इसका जो भारत में जितनी जहाँ ग्राउंडनट उगाते हैं और उसमें जो संशोधन चलते हैं उसको कोऑर्डिनेट करने का ये काम मेनली करते हैं। इसके अलावा जो मूंगफली का उगाने में जो भी समस्याएं आते हैं उसको सुधारने का और उसको हल करने का जो तकनीकें वो बनाने का भी हम कोशिश कर रहे हैं।
2: जी।
4: फिर हमारा एक और कोशिश है जो अच्छे गुणवत्ता का बीज उपलब्ध करने का वो प्रोग्राम ब्रीडर सीड प्रोग्राम है वो भी हम करते हैं
2: जी। डॉक्टर दे, ऐसे में आप बताइए कि कुछ खास उपलब्धियां निदेशालय की जो है मूंगफली उत्पादन को बढ़ावा देने की, वो क्या उपलब्धियां हैं?
6: निदेशालय में काफी सारी उपलब्धियां रही हैं, जैसे कुछ कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, इम्प्रूव्ड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस डेवलप किए गए हैं एग्रोनॉमिक रिलेटेड। इसके अलावा जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है उसके द्वारा कंट्री में जितने हमारे कोऑर्डिनेटेड रिसर्च सेंटर्स हैं वहाँ से काफ़ी सारी उन्नत किस्में डेवलप की गई हैं, ग्राउंडनट की वैरायटीज रिलीज हुई हैं। और इस निदेशालय में जो ब्रीडिंग के द्वारा जो अच्छी प्रजातियाँ निकली हैं उसमें से 3 उन्नत ग्राउंडनट की वैरायटीज निकली हैं, जैसे गिरनार 1, गिरनार 2, गिरनार 3। और इसमें इसके अलावा काफ़ी सारी प्लांट प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजीज डेवलप की गई हैं जिसके द्वारा जैसे ग्राउंडनट के जो इम्पोर्टेंट डिजीजेज पेस्ट है, डिजीजेज में जैसे स्टेम रॉट है, कॉलर रॉट है, और इसके अलावा और भी कुछ सॉइल बोन डिजीजेज हैं जिनके कंट्रोल मेजर्स डेवलप किए गए हैं जिसके द्वारा ये जो इम्पोर्टेंट डिजीजेज हैं या बीमारियां जो मूंगफली के पौधे में लगती हैं इसका कंट्रोल किया जा सकता है। और मूंगफली में बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट, कीड़े मकोड़े लगते हैं जो काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं क्रॉप को, उनके कंट्रोल मेजर्स के लिए भी बहुत सारी नई तकनीकें डेवलप की गई
2: हैं। कीड़े मकोड़ों और रोग बीमारियों के रोकथाम पर आगे बात करेंगे। डॉक्टर जाट से यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से जो मूंगफली का जो उत्पादन है उसके लिए जो आपने बताया कि जो वैज्ञानिक विधि है वो अगर अपनाया जाए तो वो बेहतर है, तो जो प्रचलित विधि है और जो वैज्ञानिक विधि है इनमें कितना अंतर है?
7: इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण पहलू है हमारा उसमें पोषक तत्व प्रबंधन। जैसे कि हम किसानों को सजेस्ट करते हैं कि वो 25 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 30 किलो पोटाश दें, लेकिन आमतौर पे किसान क्या करता है कि वो बहुत कम मात्रा के अंदर पोषक तत्व डालता है। साथ ही जैसे हम रिकमेंड करते हैं कि राइजोबियम, जो क्योंकि ये मूंगफली फसल है तो उसमें राइजोबियम जो बायोफर्टिलाइजर है वो लगाना आवश्यक है, लेकिन किसान या तो लगाता नहीं है या अगर बायोफर्टिलाइजर वो लगाता भी है तो उसकी क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती है। तो इसकी वजह से मूंगफली की फसल में पोषक तत्वों की कमी के कारण उपज में काफ़ी कमी आती है। दूसरा, फिर हम उनको बताते हैं कि जैसे खरपतवार की काफ़ी समस्या है क्योंकि मूंगफली की जो फसल है उसकी ऊंचाई काफ़ी कम रहती है, तो इसकी वजह से इसमें खरपतवार की काफ़ी समस्या रहती है। तो हम किसानों को हमारा रिकमेंडेशन है कि भी जो जब वो बुआई करता उस समय पेंडी मेथालिन नामक खरपतवार नाशी आता है उसकी 900 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर उसकी मात्रा हम बताते हैं, लेकिन कई किसान हैं जो वो नहीं लगाते, इसकी वजह से शुरू में ही खरपतवार आ जाते हैं। फिर बाद में हमारा रिकमेंडेशन है कि बुआई के 20 और 40 दिन बाद वो खरपतवार निकाले, या तो जैसे मजदूर लगा के निकाले या इंटरकल्चरिंग करें, लेकिन कई बार किसान वो भी नहीं कर पाता है क्योंकि आजकल मजदूरों की काफ़ी कमी हो रही है, तो उसकी वजह से भी हम मूंगफली की उपज में काफ़ी कमी आती है। तो ये कुछ जो इसके अलावा मूंगफली में एक बड़ा जो मुद्दा है वो है पौध संख्या पर हेक्टर की।
2: अब अच्छा, इसमें तो उसके बारे में हम आपसे जानेंगे कि किस तरह से जो उत्पादकता है और उत्पादन है वो बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर सावलिया से यहाँ पर मैं जान लूं कि जैसे कि बातचीत में कई बार ये बात आई है जो कीड़े मकोड़े हैं उससे काफी फसल को नुकसान हो जाता है, ऐसे में किस तरह की वैज्ञानिक विधियां हैं जो किसानों को अपनानी चाहिए?
8: ज्यादातर मैं कहना चाहता हूं कि अभी आप जो पंचामृत पंचगव्य करके जीवामृत है, ऐसी जो घरेलू उत्पादन हो सकता है जो गायों की पालन पोषण के साथ साथ उसको दुगना फायदा होता है, दूध भी मिलता है, अपने चारे का भी सही तरह से इस्तेमाल करता है, गोबर मिलता है, तो अपनी जो जमीन की जो फर्टिलिटी है उसको भी वो मेंटेन कर सकता है और खुद अपने हाथों से पंचामृत बना के वो अपने खेत में छिड़काव करने से कीड़े मकोड़े भी कीट आते हैं नुकसान करने वाले उसकी संख्या भी कम कर सकते हैं, उससे नुकसान भी कम कर सकते हैं और जो ये सब जीवामृत है वो सब वातावरण के लिए अनुकूल है और हेल्थ के लिए अनुकूल है, पर्यावरण को सुरक्षित रखता है। और जो कुदरती परोपजीवी परभक्षी कीट है, लेडीबर्ड बीटल है, क्राइसोपा है और जो दूसरे कई है, उसकी भी उसको भी नुकसान नहीं करता और पूरी मात्रा में उसकी संख्या रहने देते हैं, और ताकि दवाइयां का छिड़काव कम हो और किसान को कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कम हो।
2: तो इसके उपाय हम आगे आपसे और भी जानेंगे। दलाल जी से इस बीच हम जान लेते हैं कि यहाँ बात हो रही है कि जो मूंगफली का उत्पादन है, हमने देखा बातचीत में कि उसमें चुनौतियां काफी है, लेकिन अगर वैज्ञानिक विधियों को अपनाया जाए तो इन चुनौतियों से पार पाया जा सकता है। तो किसानों को दलाल जी तभी प्रोत्साहित किया जा सकता है किसी भी खेती से ज्यादा जोड़ने के लिए, अगर उसे उसमें फायदा नजर आए। तो किसानों की आय दुगनी करने की जो बात हो रही है उस दिशा में, उस नजरिए से अगर देखा जाए तो मूंगफली की जो खेती है वो कितना फायदा पहुंचा सकती है किसानों को?
5: देखिए, जैसे राधाकृष्णन साहब ने बताया कि मूंगफली तीसरे नंबर की फसल है जो तिलहन की फसलों के अंदर। हम सबसे पहले सोयाबीन लेते हैं जिसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है देश में, दूसरे नंबर पे रेप एंड मस्टर्ड आता है, तीसरे नंबर मूंगफली आता है। इसका एरिया भी कम है, प्रोडक्शन भी कम है कंट्री एज ए होल देखते हुए। मूंगफली की फसल को आपको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार मिनी किट, सीड मिनी किट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। हमने 17-18 में करीब 16.11 लाख सीड मिनी किट जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम बांटेंगे किसानों को, ताकि इन मिनी किट के अंदर हम जो है किसान को जो सबसे 10 साल से कम उम्र वाली जो नई ये होती हैं आपकी वैरायटीज होती हैं वो हम देते हैं, ताकि उनको पॉपुलराइज किया जा सके, ताकि ज़्यादा उपज देने वाली जो जो किस्में हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रोडक्शन अगर आपकी उत्पादकता बढ़ जाएगी तो उत्पादन ऑटोमेटिकली उसके जो है बढ़ जाता है। जैसे कि अब जहाँ तक उत्पादन का हिसाब है उसके अंदर उत्पादन गुजरात सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है देश में, दो नंबर पे राजस्थान आता है, लेकिन उत्पादकता के अंदर राजस्थान ज़्यादा उत्पादकता देता है। तो इसलिए हम वो ये सीड मिनी किट जो है पॉपुलराइज करने के लिए बांटते हैं। दूसरा, हम ICR के करीब 515 जो हमारे KVKs हैं उनके थ्रू फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, ताकि नई जो टेक्नोलॉजी है, नई जो बातें बताई जाती हैं काश्तकार को
2: जी,
5: वो अडॉप्ट करे और नई तकनीक के साथ अगर वो खेती करेगा तो पैदावार उसकी बढ़ती है
2: जी बिल्कुल।
5: तो ये
2: पैदावार बढ़ेगी तो फायदा भी होगा, मुनाफा भी होगा। डॉक्टर राधाकृष्णन, हमें ये बताएं कि बात सिर्फ खेती और उत्पादन बढ़ाने की नहीं है, आय भी प्राप्त करने की है ज्यादा से ज्यादा, तो मूल्य वर्धन, वैल्यू एडिशन ये भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो क्या निदेशालय की तरफ से, मूंगफली अनुसंधान निदेशालय की तरफ से इसकी भी जानकारी किसानों को दी जाती है कि वो किस तरह से वैल्यू एडिशन कर सकें?
4: वैल्यू एडिशन पर ये निदेशालय बहुत कम काम कर रहे हैं अभी। जैसे जो टेबल प्रोडक्ट्स है
2: जी,
4: लेकिन हम दूसरे जो डायरेक्शन में जो काम कर रहे हैं, जो मूल्यवर्धित वैरायटीयां डेवलप करें
2: जी,
4: जैसे जो हाई ओलिक एसिड वाला, जो ओलिक एसिड जो है, जैसे ओलिव ऑयल का जो क्वालिटी है वो ओलिक एसिड से आता है, हम ऐसे किस्म में और डेवलप करने में अभी लगे हुए हैं जिसके ओलिक एसिड कंटेंट उसकी बराबर हो जो ओलिव ऑयल का
2: जी,
4: तो उसी उसमें काफी कामयाबी अभी हुआ है, वो वैरायटियां अभी आ जाएगा बहुत ही कम समय में। और दूसरा है जो एक्सपोर्ट पर्पस के लिए जो वैरायटीज चाहिए
2: जी,
4: जैसे बड़े दाने का हो या यूनिफॉर्म कर्नल का हो, उसी टाइप का किस्में विकसित करने में भी हम काफी कामयाबी हुआ है, अब उसी डायरेक्शन पर हम काम कर रहे हैं।
0: किसान साथियों, जैसा कि अभी आपने सुना, हमारी सरकार भी मूंगफली की खेती को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग कार्यों में लगी हुई है। साथ ही हम अपने व्यवसाय इसको व्यवसाय के तौर पर भी कर सकते हैं और इसमें क्या सुधार लाया जा सकता है और हम क्या कर सकते हैं ये जानेंगे। उससे पहले आइए लेते हैं यहाँ पर छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को।

0: किसान साथियों, ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। तो किसान साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मूंगफली से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: अगर किस्मों की बात करते हैं तो हमारे निदेशालय से जो वैरायटीज है गिरनार 2, ये वैरायटी उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए निकाली गई है। इसी प्रकार से इसी निदेशालय से एक दूसरी वैरायटी है गिरनार 3, ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए निकाली गई है। फिर अगर गुजरात की बात करें तो जो जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ से GG20 वैरायटी है। इसके अलावा एक और अभी नई वैरायटी आई है GJG22। इस वैरायटी के अंदर जो कोलर रोट और स्टेम रोट की समस्या है तो इसमें काफ़ी सहनशीलता इस वैरायटी में। इसके अलावा फिर अगर एक स्पेनिश जो ग्रुप है बंच ग्रुप, उसके अंदर TG37A वैरायटी है ट्रॉम्बे की, तो वो खरीफ और समर दोनों ऋतु में उगाया जा सकता है। फिर ऐसे ही एक और वैरायटी है GJG31, ये भी स्पेनिश ग्रुप वैरायटी है और ये भी किसानों में काफी प्रचलित हो रही है।
2: जी ठीक है डॉक्टर डे, अब आप मुझे ये बताएं और हमारे सभी किसान भाइयों बहनों को बताएं कि खाद उर्वरक को लेकर के किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किसानों को।
3: जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मूंगफली एक लिग्यूम क्रॉप है, तो ये जो लिग्यूम क्रॉप है इसमें राइजोबियम का बहुत बड़ा रोल रहता है। राइजोबियम की तरह और भी कुछ सूक्ष्म जीव है जिनका पौधे के न्यूट्रिशन के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसी तरह राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्स करता है और इसी तरह से कुछ फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं जो फॉस्फोरस की उपलब्धि को बढ़ाता है पौधे के लिए। तो हमारा यही रोल है कि हम पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन पहुँचाए। तो इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स है जैसे यूरिया है और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स है, DAP है, म्यूरेट ऑफ पोटाश है, इसके साथ साथ अगर हम पौधे को नाइट्रोजन भी उपलब्ध कराना चाहते हैं जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन है, तो इसके लिए राइजोबियम का बहुत बड़ा रोल है। तो हम लोग इस निदेशालय में कुछ जैविक खातर या बायो फर्टिलाइजर बनाया है जो पौधे को नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद करता है।
2: राइजोबियम कितनी आती है?
3: इनकी लागत बहुत कम है। एक पैकेट बायो फर्टिलाइजर की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 रुपये होती है और लागत के हिसाब से बहुत ही कम कीमत पे ये उपलब्ध होता है, लेकिन इसका जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि राइजोबियम और फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजिंग जो बैक्टीरिया है वो बायोफर्टिलाइजर के पैकेट के द्वारा या लिक्विड बायोफर्टिलाइजर के द्वारा किसानों तक पहुंचाए जिससे उनका लाभ वो ले सकें।
2: जी बिल्कुल, ये तो खाद उर्वरकों की बात हुई डॉक्टर सावलिया। अब कीड़े मकौड़े उनके रोकथाम और निदान की बात करें तो वहां भी लागत की बात आ जाती है। रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल से कई नुकसान होते हैं, लागत भी ज्यादा होती है, ऐसे में क्या उपाय आप सुझाएंगे किसानों को?
4: मूंगफली में जो फफूंदी रोग आते हैं ज्यादातर वो स्टेम रोट करके और कोला रोट करके आता है। उसमें उसके कंट्रोल के लिए ट्राइकोडर्मा करके एक दूसरा फफूंद आता है जो किसान का मित्र है। अगर सोने से पहले सीड को ट्रीट किया जाता है उसे और बाद में 30-35 दिन का पाक होता है, जब फसल होती है तब ट्राइकोडर्मा या तो इरंडी के खल के साथ या तो जो डीकम्पोस्ट फर्टिलाइजर FIMA फर्टिलाइजर है उसके साथ मिक्स करके जब उपलब्ध मात्रा में भेज में पानी हो जमीन में उसी समय दिया जाए और बाद में तो उसका हम रोग की मात्रा कम कर सकते हैं और उसकी वजह से जो किसानों की आमदनी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये सब जो ट्राइकोडर्मा वो सब आता है उसकी कीमत ज्यादा नहीं है, 50 या 100 रुपए के करीब 1 kg आता है और 1-1 2 kg 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है।
2: बिल्कुल, तो कम कीमत में कम लागत में अच्छा उत्पादन हासिल करने के कुछ आप लोगों ने यहाँ पर विशेष सलाह दी है, उपाय सुझाए हैं। हमें किसानों के पास जाना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप लोग मूंगफली की खेती करते हैं, किसी तरह की समस्या या चुनौती आप लोग के सामने होती है तो उसका निदान, उसका हल अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर विशेषज्ञ मेहमान मौजूद है उसका हल देने के लिए। तो कौन सवाल पूछना चाहेंगे आप में से? जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं और पूछे अपना सवाल।
5: मेरा नाम नारायण जी है, मैं गांव का रहने वाला किसान हूं और वर्षा ऋतु में हमारा मुख्य पाक मूंगफली है और मैं यहाँ 4 साल से सजीव खेती कर रहा हूँ, गाय आधारित सजीव खेती करता हूँ। जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत वो हमारे खेत पे ही तैयार करते हैं और नीम का ऑयल और नीम का अर्क, ऐसे वो कोई कीटनाशक आता है और जब हम मूंगफली बोते हैं पावनी में तो उसमें ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करता है। मैं कई सालों से राष्ट्रीय मगफली संशोधन केंद्र से और कृषि यूनिवर्सिटी जूनागढ़ से जुड़ा हुआ हूँ, वो ये सभी लोग हैं उसका मार्गदर्शन के नीचे ही मैं खेती करता हूँ और मेरे गांव के सभी किसान भाइयों को उसका मार्गदर्शन देता हूँ। परेशानी में ये हम जे पाक तैयार करते हैं, मेरे पास भी है सजीव खेती का पाक, पर अभी कोई लेने के लिए कोई ये भी उसको क्या रिसर्च करने है कि भाई ये पेस्टिसाइड के रासायनिक खातर दवा वाला नहीं है, वो मैं अनुरोध करता हूँ कि ये यहाँ और किसानों को वो परीक्षण कराए और सरकारी तौर पर उसके खरीदी करे।
2: ठीक है, राधा कृष्ण जी क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे?
6: ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से जो प्रोड्यूस आते हैं उसको पूर्ण रूप से उसका जो रिटर्न मिलना है तो उसका सर्टिफिकेशन का जरूरत है। अभी सर्टिफिकेशन का एजेंसीज तो वैसे कम है और फार्मर को इसके बारे में जानकारी का भी थोड़ा कमी है, तो सर्टिफाइंग एजेंसीज अगर बढ़ जाते हैं और इसका थोड़ा और इसका पॉपुलराइजेशन का जरूरत है। लेकिन ऑर्गेनिक खेती अभी पिकअप हो रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं आया है, उसके साथ साथ ये भी इम्प्रूव होगा, उसके लिए हम कोशिश करेंगे
2: जरूर। जी चलिए, कुछ और सवाल यहाँ पर जी।
7: मेरा नाम जंतीलाल वेकरिया है, हूँ भरवाड़ा गांव में रहवासी हूँ। मगफली उत्पादन में मेरी बड़ी समस्या है उकसुक का रोग। उकसुक का रोग आ गया बाद उसके इलाज अच्छी नहीं मिलते के उत्पादन के बहुत ज्यादा घाटी पड़ते, तो उकसुक का रोग के लिए क्या नया उपाय है ये हम जानता मांगते हैं।
8: उकसुक का रोग मुख्यतः फफूंद से आता है, उसके लिए एस्पजिलस नाइजर करके फफूंद है जो काली देखने में काली होती है, उसकी शुरुआत तो बीज से ही होती है। वो पहले से किसान भाइयों को ही ख्याल रखना पड़ेगा, जब आप पूरा हार्वेस्ट करते हो तब जो पोड जो थ्रेसर से थ्रेस करते हो उसी टाइम पोड टूट जाता है, तो वो फफूंद है वो हवा में भी रहती है और जमीन में भी रहती है। उसके बीज है वो उस टाइम अगर जो डैमेज पोड है जो भी उसका जो छिलका टूट गया उसी में वो फफूंद घुस जाती है, आपको देखने से पता नहीं चलेगा। वो आप उस वैसे बीज की आप बुआई करोगे तो वो सड़ जाएगा। दूसरा कि आप जो बीज है वो तो बारिश के समय ही सीधा मार्केट से खरीदते हो, आप गवर्नमेंट एजेंसी से या तो खुद गवर्नमेंट एजेंसी से खरीदो या खुद का बीज रखो, और खुद का बीज रखने में भी आपको तकेदारी रखनी पड़ेगी। छान के अच्छी क्वालिटी के बीज रखो और पूरा उसको पहले सूखने दो, 9% भेज से कम भेज होनी चाहिए, 9% के करीब ही होनी चाहिए। उससे ज़्यादा भेज है और आपने गोडाउन में डाल दिया तो उसमें फफूंद आ सकती है। दूसरा, जहाँ आपने संग्रह किया है वो जगह में बिने भेज वाली मीन्स बिना मॉइस्चर होना नहीं चाहिए और अच्छी तरह से उसको कीड़े भी नहीं लगना चाहिए, उसको सही तरह से रखना है और टाइम टू टाइम उसको फ्यूमिगेशन करना है, और बाद में अच्छी तरह से छीलने के टाइम अगर आप ज़्यादा भेज दे देते हो और मॉइस्चर ज़्यादा देते हो तो भी हवा में से वो लग जाता है, तो उसको कम से कम भेज दे के छिले और अच्छे जो सोइंग के लिए सीड अलग करते हो हैंड पिकिंग करते हो तो उसमें जो भी सीड आपको डिसकलर मिले दूसरा कलर वाला भी मिले तो उसको भी निकाल दो, टूटे हुए सीड को भी निकाल दो, उसका अगर टेस्टा जो मीन्स और लाल कलर वाला जो छाल बोलते हैं वो भी अगर थोड़ा सा भी डैमेज हो गया तो उसको निकाल दो और अच्छे अच्छे क्वालिटी के सीड ही चुन के रखो और सेम साइज के रखो ताकि।
2: चलिए कुछ और सवाल यहाँ पे ले लेते हैं जी, पूछिए।
9: મેંદરડા તાલુકાના બરવાળા ગામથી હું ખેડૂત બોલ રહ્યો હું. અમારા ગામની અંદર, સૌરાષ્ટ્રની અંદર, જૂનાગઢ જિલ્લાની અંદર બહુ મૂંડા છે, જીવાત આતી હે, તો એ પણ બળ ડોડવા ખાઈ જાય, મગફળી અંદર દાણા ખાઈ જાય, તો એને માટે મારે કયું સંશોધન કરવું, કઈ દવા વાપરવી, એનો ઈલાજ શું? અમારે ગઈ સાલ બહુ માંડવીમાં મોટા નુકસાન હો ગયા, કોઈ ઉત્પાદન નહીં મળ્યા, સારા પણ બિગડ ગયા, સારા પણ ખાધા દેવા ન રહ્યા, તો એના માટે હું જાણવા માંગુ કે આને માટે શું કરવાનું.
2: ક્યા વજહ હૈ ઇસકી ઓર ક્યા નિદાન?
8: મૂંગફલી મેં જો બતા રહે વો ઉસમે હિન્દી મેં ગિટાર બોલતે હૈ, ગુજરાતી મેં મુંડા બોલતે હૈ ઉસકો, તો વો જીવાત હૈ વો પૂરે સાલ તક જમીન મેં રહેતી હૈ, એક ફીટ સે જ્યાદા રહેતી હૈ. ઉસકા જો જીવન ચક્ર હૈ પૂરે સાલ, એક સાલ લગતા હૈ જીવન ચક્ર પૂરા કરને મેં, ઓર જબ પહેલી બારિશ હોતી હૈ તો પહેલી બારિશ કે બાદ હી ઉસકા જો પુખ્ત હૈ વો જમીન સે બહાર આતા હૈ, ઓર જો ખેત કે અગલ બગલ મેં જો પૌધે પેડ હૈ, ખેજડી હૈ, પીછે નીમ હૈ, બેર હૈ, ઓર દૂસરા જો પેડ હૈ ઉસકે ઉપર વો ઉસકા પુખ્ત હૈ, વો રાત ભર રહેતા હૈ, ચાર પાંચ દિન રહેતા હૈ, ઉસકે પૌધે પત્તિયાં ખાતા હૈ, ઓર વહાં પ્રજનન વો મેટિંગ કરને કે બાદ ચાર પાંચ દિન કે બાદ વો અર્લી સુબહ 5 to 8 o'clock કે બીચ ખેત મેં જાતા હૈ, ઓર 15-20 centimeter ગહેરાઈ તક વો આપણે ઈંડે છોડ દેતા હૈ, એક એક એક એક કરકે કભી એક સાથ દેતા હૈ.
2: ઉપાય ક્યા હૈ, ક્યા ક્યા નિદાન હૈ ઇસ સમસ્યા કા?
8: સમસ્યા કા નિદાન કે લિયે બારિશ હોને કે બાદ તુરંત 3 દિન તક ખેત કે અગલ બગલ વાળે પેડ પૌધો કો દવા છિટકાવ કરે, ઇમિડાક્લોપ્રિડ 70.5 SL કરકે આતા હૈ, વો 1.5 ml પ્રતિ લિટર યા તો કાર્બોક્સિલ વો આતા હૈ, ઉસી કો સ્પ્રે યા મોનોક્રોટોફોસ ઉસકો આપકો સ્પ્રે કરના પડેગા, ઓર શામ કે સમય વો લેમ્પ જલા કે, શામ કે સમય લેમ્પ જલા કે ઉસકે નીચે એક બડા સા બર્તન રખ કે ઉસમે પાણી ભર કે કેરોસીન યા મિટી કા તેલ જો કે કેરોસીન બોલતે હૈ ઉસી કો ડાલ કે રખના પડેગા, તાકી વો જો જીવ હૈ વો રાત કો લાઇટ કો આકર્ષિત હોતા હૈ ઓર ઉસમે આકે ગિર કે મર જાયેગા, ઓર સભી કિસાનો કો યે સાથ સાથ મિલ કે કરના પડેગા, એક દો કરેગા તો ઉસકા કંટ્રોલ નહીં હૈ, ઓર દૂસરા ઉસકા એક ફેરોમોન આતા હૈ, વો હર 15 square meter કે બીચ આપકો ઉસકો લગાના હૈ, તાકી વો આકર્ષિત હો કે વહાં આયે ઓર ઓર ઉસમે ઉસે હમ માર સકતે હૈ.
2: ઠીક હૈ, તો બડે પૈમાને પર જબ નુકસાન હો રહા હૈ તો બહેતર હૈ કે સભી કિસાન મિલ કે ઇસકા ઉપાય કરે. કુછ ઓર સવાલ ઇધર આપ લોગ જો બેઠે હૈ કુછ કરના ચાહેંગે બતાએ અપને બારે મેં, જબ આપ મૂંગફલી કી ખેતી કરતે હૈ તો ઇસસે ક્યા આપ લોગો કો લાભ હોતા હૈ, ક્યા ઓર સવાલ પૂછના ચાહેંગે?
10: મેરા નામ સમીર વગાસિયા હૈ. હમ જો મૂંગફલી કી ખેતી કરતે હૈ ઉસકી જો લાગત આતી હૈ ઉસકા સમર્થન મૂલ્ય હમકો નહીં મિલતા, સરકાર જો યોજનાએ ચલાતી હૈ પાવનતર કી ઉસકા લાભ કિસાનો કો કમ ઓર વ્યાપારી કો જ્યાદા મિલતા હૈ, ઇસકા ક્યા કારણ હૈ?
2: દલાલ જી, યહાં પર આપસે જરૂર મેં યે જાનના ચાહુંગી કે સરકાર ને અભી સમર્થન મૂલ્ય બઢાયા ભી હૈ ઓર હમને દેખા હૈ કે દલહન કો કિસ તરહ સે સરકાર ને બઢાવા દિયા હૈ, વહાં પે ભી સમર્થન મૂલ્ય બઢાને કે સાથ સાથ બોનસ ભી દિયા હૈ. આપકો લગતા હૈ કે ઇસ તરહ કે ઉપાય તિલહની ફસલો કી જો ખેતી હૈ ઉસકો બઢાવા દેગી?
11: જ્યાં તક સમર્થન મૂલ્ય કા સવાલ હૈ, ભારત સરકાર હરેક જો ફસલ હોતી હૈ ઉસકા ન્યૂનતમ સમર્થન મૂલ્ય નિકાલતી હૈ, ઉસમે વૈજ્ઞાનિક જાતે હૈ ઓર જો CPC હમારી હૈ કોસ્ટ પ્રાઇસેસ વાલે વો ઉસકા મૂલ્યાંકન કરતે હૈ, કિંમત નિકાલતે હૈ, ઉસકે બેસિસ કે ઉપર હમ લોગ જો MSP ઉસકી ડિટરમિન કરતે હૈ. અભી ઇસ બાર હમને જો બોનસ કો મિલા કે 4450 rupees ઇસકા MSP રખા હૈ. યે આપ જો બાત કહે રહે હૈ, કિસાન કહે રહે હૈ, યે બિલકુલ સહી હૈ. જબ ફસલ જ્યાદા આ જાતી હૈ તો જો જો ટ્રેડર હૈ વો મૂલ્ય ગિરા દેતા હૈ, તો ઉસ કેસ કે અંદર ભારત સરકાર ને કુછ એક એજન્સીઝ નેફેડ ઓર યે જો હૈ સ્ટેટ વાલા સ્ટેટ કો ભી ચાહીએ કે ઇસકે અંદર જરા સહયોગ દે ઓર સમર્થન મૂલ્ય કે ઉપર વો ખરીદારી કરે.
2: ડોક્ટર રાધાકૃષ્ણ, બતાએ હમે કુછ એસે ઉપાય જિસસે કિસાનો કો ઓર જ્યાદા પ્રોત્સાહિત કિયા જા સકતા હૈ મૂંગફલી કી ખેતી કે લિયે.
6: યે તો જહાં તક પ્રોક્યોરમેન્ટ ઓર પ્રાઇસિંગ કા હૈ વો પોલિસી ઇશ્યુઝ હૈ, ઓર જો પ્રોક્યોરમેન્ટ હૈ સ્ટેટ ઓર નફેડ વગેરા કરતે હૈ કુછ કાફી હદ તક, લેકિન જો પ્રોડ્યુસ જ્યાદા હોતે હૈ ઉસ ટાઈમ પર ખાસ કરકે યે પ્રોબ્લેમ હોતે હૈ, ઓર જો હાઈલી રેમ્યુનરેટિવ जो एग्रीकल्चर है उसमें एक ऑप्शन ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, कुछ हद तक गुजरात में चलते हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एरिया में है या कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई ग्राउंडनट बनाना है, जैसे कोई इंडस्ट्री है, चॉकलेट इंडस्ट्री हो, पीनट बटर हो, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर करे फार्मर्स के साथ, फार्मर को अच्छा रेम्यूनरेशन भी मिलेगा, वो जो जो अच्छा फसल भी आ जाएगा और जो इंडस्ट्री का नीड है वो भी फुलफिल हो जाएगा।
2: तो अगर निर्यात के लिए किसान मूंगफली का उत्पादन करना चाहे तो जाहिर है उसकी गुणवत्ता पर उसको खास ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे में किन बातों का ध्यान रखे अच्छी गुणवत्ता के लिए?
6: इसमें मैडम दो चीजें हैं, एक तो जो फील्ड में जो उगाते हैं उस टाइम, क्योंकि हमारा मेजर ट्रेड बैरियर है अफ्लाटॉक्सिन का, जो पहले बताए गए थे, अफ्लाटॉक्सिन का दो स्टेज में उसका प्रॉब्लम होता है, एक तो जब फसल उगाते हैं, दूसरा उसके बाद वो स्टोरिंग और प्रोसेस में। तो फसल उगाते हैं उसके लिए जो अच्छा एग्रीकल्चर गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वो हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, वो पॉपुलराइज भी कर रहे हैं, वो करने से इसका जो मात्रा बहुत ही कम होता है या नील भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो स्टोरेज है, जैसे इसका ड्राइंग है, प्रोसेसिंग है, जैसे इसका शेलिंग का वेटिंग, वेट शेलिंग, ड्राई शेलिंग, उसी चीज़ों पर इसका फर्क पड़ता है। ये एक कॉम्पोजिट चीज है जो इसको फार्मर को और खेती को अलग कर सकते हैं और इंडस्ट्री को अलग कर सकते हैं, ऐसे नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये खेती और इंडस्ट्री मिलकर करना है, इसलिए मैंने बोला अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर कोई कंपनी करते हैं तो ये दोनों चीजें साथ में ले सकते हैं।
2: जी डॉक्टर जाट, हमें बताएं आप पौध संख्या को मेंटेन रखने की बात बता रहे थे, उस जानकारी को आप पूरी कीजिए, कैसे जो किसान है वो जो पौध संख्या है उसको बरकरार रख सकते हैं?
1: जी, जैसा कि मूंगफली में तीन प्रकार की जो किस्में होती है, एक होती है फैलने वाली, दूसरी अर्थ फैलने वाली और तीसरी होती है बंच टाइप गुच्छे वाली। तो इसमें जो फैलने वाली है उसके अंदर हमारा जो रिकमेंडेशन है कि उसके अंदर जो 60 जो स्पेसिंग है 60x10 सेंटीमीटर, तो उसके हिसाब से इसको इसमें बुआई करनी है। दूसरा है अर्ध फैलने वाली किस्में, तो उसकी 45x10 के हिसाब से बुआई करनी है और उसकी पौध संख्या होनी चाहिए 2,64,000। और जो गुच्छे वाली है उसकी 30x10 उस हिसाब से 3,33,000 पौध संख्या पर हेक्टर में होनी चाहिए। लेकिन इस मूंगफली के अंदर एक तो क्या है कि जर्मिनेशन की समस्या है, आमतौर पे फील्ड में हम देखते हैं कि 75% से 80% ही जर्मिनेशन होता है जो बीज डालते हैं, तो उसकी वजह से जो पौध संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी होती नहीं है। दूसरा, मूंगफली के अंदर जो कोला रोट आता है उसकी वजह से काफी प्लांट्स मर जाते हैं, तो उसकी वजह से और भी पौध संख्या कम हो जाती है। फिर इसके अंदर मूंगफली में जो बीज की साइज है वो काफी वेरी करती है।
2: अच्छा,
1: तो उससे अगर मान लो अगर बीज की साइज छोटी है तो सीड रेट कम हो जाएगी।
2: अच्छा,
1: और अगर बीज उसी वैरायटी का जो अगर दाना बड़ा है तो उसकी सीड रेट बढ़ जाएगी। तो किसान को चाहिए कि जो सीड साइज और जर्मिनेशन परसेंटेज कितना, ये दो बात को ध्यान में रखते हुए बीज की दर निर्धारित करें।
2: अच्छा,
1: तो अगर बुआई से पहले 5-7 दिन

0: पहले आपके बीज में से थोड़े से बीज लेके और उसको जो न्यूज़पेपर होता है उसमें डाल के थोड़ा पानी डालें और उसको आपको 48 या 60 घंटे के अंदर उसमें कितना जर्मिनेशन परसेंटेज आपको पता चल जाएगा। तो उस जर्मिनेशन के परसेंटेज के हिसाब से और सीड साइज के हिसाब से आप बीज दर का निर्धारित करके उचित जो पौध संख्या है वो खेत में रख सकते हैं
1: जी।
0: और अगर उचित पौध संख्या होगी तो उसी अनुपात में आपको उपज भी ज्यादा मिलेगी
1: जी। बिल्कुल डॉक्टर जी, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है वो मूंगफली के किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि लागत की हम बात करते हैं, खाद उर्वरक डालने की बात करते हैं, तो अंधाधुंध न दे करके जिसकी जरूरत हो उतनी ही मात्रा में हम उसका इस्तेमाल करें। इस दृष्टि से अगर देखें तो मूंगफली के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या बनवाना चाहिए, कितना जरूरी है?
2: हाँ जी, बिल्कुल बनवाना चाहिए, क्योंकि सॉयल हेल्थ कार्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये मूंगफली एक तिलहन फसल है
1: जी,
2: और इसमें जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जो नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए राइजोबियम का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है
1: जी।
2: तो जैसे जो सीरियल क्रॉप्स है उनकी तुलना में इसमें नाइट्रोजन की जरूरत बहुत कम पड़ती है। जनरली 25 किलो नाइट्रोजन 50 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम दें तो हम काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन खाद की उसका कंजम्पशन कम कर सकते हैं। तो सॉयल हेल्थ कार्ड हमने यहाँ पे भी काफ़ी लोगों को, फार्मर्स को ट्रेनिंग भी दिया है, और हमारी संस्थान की वजह से काफ़ी जो आसपास के गांव हैं उनके फार्मर्स को हमने सॉयल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट भी किया है गवर्नमेंट की स्कीम की वजह से। और इसमें से जो फार्मर्स हैं उनको फायदा भी हुआ है, उनको पता चल रहा है कि उनकी जो उनका जो फार्म है, उनके जो खेत हैं, उसकी फर्टिलिटी लेवल क्या है। और हमें हम ये भी बता रहे हैं कि आपको नाइट्रोजन की मात्रा कम देनी है, फास्फोरस की मात्रा कम देनी है, और इतनी खाद देने से ही आपके लिए सफिशिएंट है। तो इस हिसाब से भी फार्मर्स को पता चल रहा है कि हमें कितना खाद देना है, और उससे ज़्यादा हम नहीं दें तो हम जो हमारी खाद की पूर्ति भी कम कर सकते हैं और हमारी काफी सेविंग भी हो सकती है। तो ये दोनों तरफ से फार्मर्स
1: ये बात लागू होती है। ठीक है राधाकृष्ण जी, ये बताएं हमें कि बीज की बात अक्सर आई है, कई तरह की समस्याओं के निदान के तौर पर देखा हमने कि बीज अच्छी गुणवत्ता का हो ये बहुत जरूरी है, तो ऐसे में आप क्या सुझाव देते हैं किसानों को, बीज कहाँ से प्राप्त करें और बीज का जब चुनाव करें तो किन बातों का ध्यान वो रखें?
3: बीज जो है जहाँ तक संभावना है, शक्यता है, आप जो स्टेट का बीज का एजेंसी से खरीदिए, एक। दूसरा, अगर एक बार आप अच्छे वैरायटी का लिया है, आप उसको आगे सीड के लिए जो रखना है उसको प्योरिटी से, उसके साथ दूसरे मिलावट ना हो उस हिसाब से करिए और आगे उसको रखिए। ये जो मार्केट में जो आते हैं जो अलग अलग कंपनियों का, उस सीड का जो है हमारे पास उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, ये कहाँ से बनाया है, क्या बना है, कैसे होगा, इसके बारे में मैं पता नहीं है। तो जब आप कुछ सीड कंपनियों का भी चलता होगा उसमें अच्छा भी चलता होगा, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा जो आपके जो सीड जो सर्टिफिकेशन एजेंसी, जो बीज निगम है या यूनिवर्सिटी है, वहीं से खास करके सीड अपना खरीदिए ताकि आपको अच्छा सीड हमेशा मिले।
1: और किसान क्या बीज उत्पादन पर भी यहाँ पर करते हैं, गुजरात के जो किसान है
3: यहाँ करते हैं, और उस पर हमने काफी तालीम भी दिया है किसानों को
1: जी।
3: हर साल हम तो 2-3 बैच को मिनिमम तो करते हैं, अच्छा सीड कैसे बनाए और उसको कैसे स्टोर करें, इसका हम ट्रेनिंग भी देते हैं।
4: किसान साथियों, जैसा कि आपने सुना यहाँ पर ट्रेनिंग्स के माध्यम से भी किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कैसे नया बीज बनाया जा सकता है। साथ ही आपने मूंगफली से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, और इन जानकारियों का सिलसिला आगे चलता रहेगा। उससे पहले आइए लेते हैं यहाँ पर छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिली गीत को।
5: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: किसान साथियों, ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। किसान साथियों, हम सुन रहे थे मूंगफली की खेती को लेकर, मूंगफली की खेती से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को। तो किसान साथियों, चर्चा के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं कुछ और मूंगफली से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को।
1: चलती हूँ और अपना नाम बताएं और पूछे अपना सवाल।
2: कपिल वेकरिया मारू नाम। हवे सौथी वधारे प्रश्न मोटो ए है आफला टॉक्सिन जे फूग बराबर आपने जे मार्केटिंग मा सौथी वधारे नड़े है, तो एक फूग क्यारे आवे, केटलो समय मांडवी सुकोवी, आते बधी खेडूतोने खरेखर एटली बधी जाण नथी, तो ए खेडूतोने जाण करे, एक ये प्रश्न है।
1: ठीक है, तो कौन जवाब देना चाहेंगे आप में से?
3: वो किसान जानना चाहता है कि जो अफ्लाटॉक्सिन का प्रॉब्लम है, वो अफ्लाटॉक्सिन क्या है, वो कैसे आती है, कब आती है और उसको मैनेज कैसे करना है। मैं तो बताना चाहता हूँ किसान भाइयों कि अफ्लाटॉक्सिन एक एस्परजिलस फ्लेवस करके एक फफूंद आती है, उसकी वजह से लगता है। वो फफूंद जब लग जाती है तो बीज में वो एक जहर बना देती है, और जो खाने के लिए, उसके लग जाने के बाद खाने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि उससे कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो वो न आए इसीलिए आपको पहले से ही जो आप खरपतवार करते हैं या तो इंटरकल्चरिंग करते हैं, तभी से किसानों को ख्याल रखना पड़ेगा कि जो पौड़ है, मीन्स मूंगफली का जो पौड़ है, उसको डैमेज नहीं होना चाहिए। वो जमीन में से भी आ सकती है और हवा में से भी वो फफूंद आ सकती है, तो पॉट डैमेज नहीं होना चाहिए। हार्वेस्टिंग के टाइम भी पॉट डैमेज नहीं होना चाहिए, अगर डैमेज हुआ तो उसको तुरंत ही अलग करके मार्केट में बेच देना है। और फफूंद हार्वेस्टिंग के बाद,
1: आपका कहना है कि जो दाने हैं मूंगफली के, उसमें किसी तरह का नुकसान उसे नहीं होना चाहिए।
3: देखने से आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें फफूंद लग गया है।
1: अच्छा,
3: बाहर से कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर वो जब लग जाता है तो वो अपने आप ही वो पॉइजन शुरू कर देता है।
1: ठीक,
3: तो उसको आने ही नहीं देना। या तो जब आप स्टोर करो, तो पहले से मैंने बता दिया था कि जो 9% से कम नमी होनी चाहिए, तभी आप उसको स्टोर कर सकते। तब तक आपको फील्ड में उसको सुखाना है, और सुखाने के टाइम जो गोडाउन है उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, वो सब ख्याल रखना है। और बीज
1: बचाव ही जो है वो बेहतर उपाय है। चलिए कुछ और सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। एक सवाल आप भी पूछना चाहते हैं?
4: हाँ, मूंगफली ने खेती में, हमने मूंगफली पाकते समय सफेद फूग आती है, उसका क्या कारण होता है, उसका क्या इलाज है?
3: जो पाकने के समय आप बता रहे, वो पाकने से समय जब मूंगफली में ड्रॉट, पानी की कमी आ जाती है, और वो उसकी फफूंद है वो जमीन में ही रहती है, या तो बीज से आती है। जो ड्रॉट ड्राई स्पेल मार देता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो ये जो फफूंद है वो ऑक्सीजन लविंग, उसको अगर टेम्परेचर ज़्यादा मिला और ज़्यादा ऑक्सीजन मिला तो वो बढ़ सकती है, क्योंकि किसान हमारे यहाँ सौराष्ट्र के किसान ज़्यादातर इंटरकल्चरिंग करते हैं, और मैंने देखा है कि कभी कभी तो 62 डेज तक इंटरकल्चरिंग करते हैं। तो मेरा एक सुझाव है कि 50 दिन के बाद मूंगफली में इंटरकल्चरिंग न करें तो अच्छा है। और जब ड्राई स्पेल आता है तो फैला के पानी दे दे, और जैसे जमीन दबी रहेगी वैसे कम आएगी, और सोइंग के बाद आप उसे प्लेंकर चला के जमीन को दबा दे।
1: ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर जाट से मैं जानना चाहूंगी, जैसे बातचीत में बात आ रही है कि जो मूंगफली है उसमें उचित नमी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, ऐसे में सिंचाई को लेकर हमें जरूर बताएं किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या अंतराल होना चाहिए, या फिर जल की जैसी उपलब्धता है इन क्षेत्रों में जहां पर मूंगफली की खेती होती है, ऐसे में सिंचाई की कौन सी विधि सबसे ज्यादा बेहतरीन होती है?
5: जी, वैसे तो मूंगफली एक सूखा सहन करने वाली फसल है, लेकिन फिर भी ज़्यादा उत्पादन देने के लिए हमें कुछ ऐसी फसल अवस्थाएं हैं, उस समय पे पानी की कमी नहीं आनी चाहिए।
1: जी,
5: तो शुरू में तो जैसे फसल की बुआई है, उस समय पर्याप्त नमी होनी चाहिए, ताकि उसका जो अंकुरण अच्छे से हो और हमें पौध संख्या सही मात्रा में मिले।
1: जी,
5: फिर उसके बाद में से फूल बनते हैं, फिर सुइयां बनते समय, फली बनते समय और दाना बनते समय, ये ऐसी अवस्थाएं हैं जब जमीन के अंदर जो मॉइस्चर है, नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, जिससे कि हमें ज्यादा उपज मिले। फिर जैसे इसमें ड्राई स्पेल जब बीच में सूखा आ जाता है, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन के माध्यम से हम अगर इसमें इरिगेशन देते हैं तो कम पानी में हम ज्यादा क्षेत्रफल के अंदर इरिगेशन कर सकते हैं।
1: जी जी, बिल्कुल। चलिए यहाँ पे कुछ और सवाल ले लेते हैं किसान भाइयों से, कुछ और पूछना चाहेंगे आप सवाल? जी आपने बताया था आपके पास और भी सवाल है, तो बता पूछिए अपना दूसरा सवाल।
2: जी आपने आगरी बात थी थोड़ी बार पहला कि तेल अपने आयात करवू पड़े छे बाहर थी અને અહીંયા મગફળીનો એરિયો ઘટતો જાય છે, એની પાછળના કારણો એવા કંઈક મને દેખાય છે કે ખાતર અને જંતુનાશક દવા બધું બહુ મોંઘું મળે છે, તો એના માટે

0: जिसके पास नॉलेज नहीं है एग्रीकल्चर हाँ। का, वो लोग दुकान मांड के मींस को शॉप खड़ा करके पेस्टिसाइड बेचते हैं, दवाइयां बेचते हैं और किसानों को कोई मिलती जुलती दवाइयां दे रहे हैं,
1: ठीक है।
0: तो उसकी वजह से जो किसानों को लागत ज्यादा आ जाती है, तो उसका सुझाव है कि गवर्नमेंट कोई ऐसा सुझाव लगाए कि जो बीएससी एजी है वो जिसको नॉलेज है उसी को लाइसेंस मिले।
1: तो इन्होंने जो सवाल पूछा है डॉक्टर राधाकृष्णन, उसका क्या जवाब देना चाहेंगे आप?
2: ये जो एग्रीकल्चर इनपुट जो है खास करके केमिकल्स, वो जो है इसके एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है। इसमें कई अच्छे कंपनियां भी है, नए कंपनियां भी है, जो लेस पॉपुलर कंपनियां भी है। अब इसमें जो फार्मर को ये जो मिलते हैं ज्यादातर ये खरीदी होते हैं जो इनपुट ट्रेड डीलर जो बोलते हैं उसके बेसिस पर है। अभी उसमें दो चीजें हैं, एक तो इनपुट डीलर जानबूझ के भी कर सकते हैं या दूसरा उनका अनजान होने के वजह से भी। तो अभी उसके लिए काफी प्रोग्राम चल रहे हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी में इनपुट डीलर्स के लिए डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू किया है जो छुट्टी के दिन चलते हैं, जो इसके पूरा जानकारी देते हैं। इसके अलावा अभी अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं जो इनपुट डीलर्स को इसको ट्रेनिंग देने के लिए। लेकिन ये जो खरीदी है इसमें एक और चीज भी है, किसान का जो क्रेडिट है उसे रिलेटेड भी है, तो अच्छा। उसमें भी इनको जो कुछ प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो ट्रेडर जो बोलते हैं वो उसको खरीदना पड़ते हैं कई लोगों को। लेकिन इसमें अवेयरनेस क्रिएट करने का काफी श्रम चल रहे हैं, और दूसरा इसमें कुछ पॉलिसी चेंज भी जहां तक मैं जानता हूं वो सरकार लाने वाला है।
1: जी बिल्कुल, तो सरकारी प्रयासों के बारे में हमें जरूर यहाँ पे दलाल जी बताएं, और साथ ही जो राष्ट्रीय तिलहन मिशन है सरकार का, ये जो बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, इसके तहत किसानों को किस तरह की सहायता, आर्थिक सहायता दी जाती है, इसके बारे में भी हमें बताएं।
3: भारत में नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम शुरू किया गया, NMOP शुरू किया गया 14-15 में, उससे पहले 13-14 का तिलन का रिकॉर्ड प्रोडक्शन रहा है, जिसके अंदर हम लोगों ने किसानों की मदद से 32.75 मिलियन टन तिलन फसलों की प्रोडक्शन हमारी हुई, जो कि एक रिकॉर्ड है। उसके बाद जैसा कि राधा कृष्णन साहब ने बताया था कि ये एक, क्योंकि एक शुष्क एक कृषि के अंदर उगाने वाली फसल है, तो ये बहुत ज़्यादा उस पर बारिश पे डिपेंडेंट रहती है। 13-14 के बाद 14-15, 15-16 में बारिश कम रही और टाइम से नहीं आई, इसकी वजह से इसका एरिया घट गया, जो कि 28 मिलियन टन हेक्टर से वो गिर के 25-26 के करीब आ गया। उधर प्रोडक्टिविटी भी गिर गई, क्योंकि सूखा पड़ा तो प्रोडक्टिविटी जो उत्पादकता है वो कम हुई, जो कि 1168 से गिर के ये 968 आ गई, जिसकी वजह से प्रोडक्शन हमारा कट के 25.25 मिलियन टन रहा। इसको रिकवर करने के लिए अभी 16-17 में हमारा फिर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, जबकि हमारी उम्मीद है कि 32.10 मिलियन टन प्रोडक्शन होने की संभावना है।
1: जी।
3: एरिया हालांकि उतना ही है 26, लेकिन प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ गई है जो कि 1225 किलो पर हेक्टर हो गई है। इसकी वजह से थोड़ा सा हमारे जो तिलन की फसलों में उत्पादन है वो थोड़ा बढ़ा है।
1: जी।
3: इसके अलावा जो किसानों को मदद देने के लिए हम सरकार ने डेमोस्ट्रेशन जो है जो हमने चलाए हुए हैं इनपुट से लेके, क्योंकि जैसा कि अभी सभी और विशेषज्ञ बता रहे थे, सीड एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है किसी भी फसल के लिए, तो एक अच्छी किस्म की फसल का बीज होना बहुत जरूरी है। तो इसकी वितरण पे और इसकी प्रोडक्शन के ऊपर ये हमारे इस NMOP प्रोग्राम के अंडर हम इसके अंदर असिस्टेंस देते हैं, सीड एजेंसीज को बढ़ावा देते हैं ताकि अच्छी किस्म की फसलों का बीज चेन के अंदर आ सके और किसानों को उपलब्ध हो सके। इनपुट के अंदर हम और इनको प्लांट प्रोटेक्शन की जो दवाइयां हैं, जैसा कि अभी कितने किसान पूछ रहे थे कि उनकी फसल के अंदर बीमारी लगती है, उसको उसका समाधान के लिए हम इसके लिए उसको अनुदान देते हैं। इसके अलावा मैकेनाइजेशन के लिए हम लोग इरिगेशन के लिए पावर जो स्प्रे वगैरह पंप है उसके लिए भी अनुदान दिया जाता है। इन
1: ठीक है, यानी कि कई रूप में जो सरकार है वो मदद पहुंचाती है किसानों तक, ताकि वो जो मूंगफली की खेती या अन्य तिलहनी फसलों की खेती की तरफ उनका रुझान बढ़े।
4: रेडियो स्टेशन 90.8 FM भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील।

रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने मूंगफली से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। किसान साथियों, अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांट्याभिल 90.8 FM के साथ छवा की आवाज़।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट RJ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर। लेकर आई हूं एक और इंस्पायरिंग कहानी जिंदगी के रंग गीतों के संग में। आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक ऐसी वुमन एंटरप्रेन्योर जिन्होंने स्ट्रगल को स्ट्रेंथ बना दिया और नेचर को अपनी पहचान बना दिया। हैंडमेड केमिकल फ्री स्किन केयर ब्रांड नेचुरल नेक्टर की फाउंडर मिसेस संगीता सिंघल जी। तो चलिए जानते हैं संगीता जी को थोड़ा और उनकी ब्रांड के बारे में इस एपिसोड में। तो संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी के रंग गीतों के संग पर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
2: नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद SN रेडियो का, मुझे अपनी सफर और अपना थॉट आपके शायद शेयर करने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ।
1: हम भी बहुत एक्साइटेड है मैम, और हम शुरू करेंगे आपकी शुरुआती जर्नी और शुरुआती सफर से, जहाँ पे आपने ये डिसाइड किया कि आपको नेचुरल स्किन केयर में जाना है। ये किस तरह से हुआ ये सफर तय कि ये मेरी कॉलिंग है या स्किन केयर प्रोडक्ट्स में मुझे जाना है? क्योंकि मैं जानती हूँ आपके लिए ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये एक इमोशनल जर्नी रही है। तो किस तरह से आपने ये पहचान, अपनी पहचान को पहचाना और उस पे, उस रास्ते पे चलना शुरू किया, वो बताएं हमारे श्रोताओं को।
2: मेरे लिए ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, ये बल्कि एक इमोशनली जुड़ा हुआ है। जब मैंने देखा कि बाजार में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो नेचुरल कह तो देते हैं लेकिन उनकी शुद्धता इतनी नहीं होती है, जब मैंने खुद के ऊपर ट्राई किया तो मुझे कभी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। फिर धीरे धीरे मैंने खुद में ही स्किन केयर प्रोडक्ट बनाए और उस पर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं।
1: जी,
2: ये मेरा एक पैशन है और इमोशनल है, दोनों है।
1: जी जी, तो कभी कुछ ऐसा हुआ, कोई रिएक्शन हो गया या कोई ऐसा इंस्टेंस जो आपको हंसा देता है, आज भी गुदगुदा देता है, आज भी अगर वो साझा करना चाहे तो?
2: मेरे प्रोडक्ट में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मार्केट के प्रोडक्ट मुझे कभी सूट ही नहीं हुए हैं।
1: अच्छा, जी जी जी, तो आपकी स्किन सेंसिटिव है या किस तरह से, कोई एक ऐसा इंस्टेंस या एनेक्डोट हमारे साथ साझा करना चाहें कि कभी कुछ ट्राई किया हो और इस तरह का कुछ रिएक्शन हुआ हो?
2: हाँ, मुझे एक्चुअली बचपन से ही स्किन सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम था, तो जनरली हमारी मम्मी वगैरह क्या करती थी, हमें मुल्तानी मिट्टी से नहला दिया करती थी, और ज्यादा जब ड्राइनेस होती थी तो ग्रीसलीन लगा दिया करती थी। लेकिन मार्केट में धीरे धीरे ना वो भी एकदम प्योर नहीं आने लगा कि ग्रीसलीन भी हमें प्योर मिल जाए या मुल्तानी मिट्टी भी हमें प्योर मिल जाए।
1: करेक्ट,
2: तो जब मार्केट की साबुन वगैरह भी हम यूज करते थे ना, तो मुझे बड़ी इचिंग सी, रैशेज और ऐसे लाल लाल स्पॉट्स हो जाते थे स्किन पर, और जब थोड़ा सा भी वेदर चेंज होता था तो हाथ पैरों पे ना इसकी स्किन उतरती थी। सही बात है, इसलिए फिर मुझे लगा कि यहाँ से बचपन से धीरे धीरे धीरे मैं कोशिश करती रही डे बाय की कुछ घर की चीजों की रेमेडी बनाऊं, कुछ घर की चीजों का यूज करूं। इस तरह से फिर मेरा सफर शुरू हुआ।
1: वाओ, थैंक गॉड आपका सफर शुरू हुआ, सो दैट हमारे स्किन के लिए एक अमेजिंग प्रोडक्ट आया नेचुरल नेक्टर के नाम से। तो मैम, इसी एहसास के साथ हम लेंगे एक सॉन्ग का ब्रेक, हमारा पहला गीत आज का, राही नए नए रास्ता नया नया। चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक संगीता जी। मैम अब आगे चलते हैं और जानते हैं थोड़ा और डीप में कि आपने हमें बताया कि नेचुरल के नाम पे बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स हैं जो नेचुरल नहीं है, एक्चुअली केमिकल बेस्ड हैं। बट एज अ यूजर, एज अ कंज्यूमर, जब मैं आज भी शॉपिंग के लिए जाती हूँ और मैं स्किन केयर में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे पहचान सकती हूँ एज अ ले पर्सन कि ये सिर्फ एक अच्छी मार्केटिंग का प्रोडक्ट है या एक जेन्युइन हेल्थ केयर का या स्किन केयर का प्रोडक्ट है जिसपे मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ। तो वो जो कॉम्पोनेंट है इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का, वो क्या है? क्या वो प्राइस है? क्या वो इंग्रेडिएंट्स हैं? कैसे एक ले पर्सन, एक कंज्यूमर पहचान सकता है कि असली क्या है और सिर्फ मार्केटिंग क्या है?
1: इसके लिए सबसे बेस्ट है इंग्रेडिएंट्स
0: जी।
1: और मार्केटिंग तो देखिए, जो अच्छे पैसा खर्च कर सकता है वो तो मार्केटिंग में पैसा खर्च सकता है, लेकिन जैसे हम जैसे जो लोग हैं जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं और सिंगल हैंड से काम कर सकते हैं, तो मार्केटिंग में हम कभी भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। पैकेजिंग बहुत मैटर करती है, लेकिन मेरे लिए पैकेजिंग मैटर नहीं करती है, क्योंकि हम इंग्रेडिएंट्स बेचते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, न कि हम पैकेजिंग बेचते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि मेन इंग्रेडिएंट्स पे बहुत डिपेंड करता है कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है। और इसका एक सबसे बड़ा पहचान ये भी है कि उनकी लाइफ सेल्फ बहुत शॉर्ट होती है। जितना वो नेचुरल होगा उनकी लाइफ उतनी ही कम होगी।
0: ओके नाइस। और कोई ऐसा एक इंस्टेंस बता सकते हैं जहाँ पे, या कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे कोई साबुन हो या कोई एक क्रीम हो जो आपके प्रोडक्ट्स में से कुछ हो, जिससे कोई कंज्यूमर एक आइडिया लगा सके कि हाँ ये प्रोडक्ट नेचुरल है, सच में नेचुरल है? कोई ऐसा एक नुस्खा अगर आप शेयर करना चाहें।
1: जनरली मैं अपना रोज वाटर है, सपोज कीजिए मेरा खुद का ही, जो मार्केट में रोज वाटर आता है वो जनरली बोलते हैं कि रोज वाटर ओरिजिनल है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। लेकिन मैं सबसे ही पूछती हूँ कि जब रोज वाटर हम खुद बनाते हैं, आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं, लेकिन वो कभी उसमें कलर नहीं आता है, क्योंकि पिंक रोज से हम बनाते हैं उसको, हम स्टीम करते हैं, जनरली स्टीम डिस्टिलेशन से ही बनाया जाता है, तो उसका जो पानी कलेक्ट होता है वो व्हाइट ही पानी कलेक्ट होता है, वो पिंक पानी कभी कलेक्ट होता ही नहीं है। तो पिंक कैसे हो गया? और अगर पिंक हो भी गया सपोज कीजिए, तो आप उसको फूड में कैसे यूज करेंगे, आप आईज में कैसे डालेंगे? तो मेरा जो रोज वाटर है वो प्योर व्हाइट है, उसे आप फूड में भी यूज कर सकते हैं, स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हेयर पे भी अप्लाई कर सकते हैं और आईज में भी।
0: ओके नाइस। हाँ तो चलिए, नेचुरल नेक्टर का रोज वाटर जरूर यूज करना पड़ेगा आपकी बारी। तो इस बार जब मैं शॉपिंग जाऊंगी तो मेरा रोज वाटर जब खत्म होगा तो मैं नेचुरल नेक्टर का ही रोज वाटर यूज करूंगी। आगे चलते हैं मैम, आपकी जर्नी में आपने बताया आपके हस्बैंड का ये सपना था, बेसिकली उनका ये ड्रीम था, और फिर आपके इन-लॉज ने भी आपको बहुत सपोर्ट किया, बहुत इम्पोर्टेंस दी, हर तरह से आपको एक फैमिली सपोर्ट हमेशा रहा। तो इस ये जो आपके स्ट्रेंथ थी, इसने आपके सफर को किस तरह से एक मीनिंग दिया, एक मतलब दिया, एक मकसद दिया? और क्या डिफरेंस होता है उन लोगों में जिनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती और उन लोगों में जिनके पास इस तरह का सपोर्ट होता है? आप कोई एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें जो बहुत पर्सनल हो, जो आपको लगता है कि इंस्पायर कर सकता है हमारे श्रोताओं को और आपके जैसी वुमेन फोक को जो अपना बिजनेस शुरू तो करना चाहती हैं, जिनके पास सपने तो हैं बट शायद सपोर्ट नहीं है?
1: जी मैम, इसमें मेरे हस्बैंड का और मेरे इन लॉज का बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि जब परिवार साथ होता है ना तो एक बहुत बड़ी ताकत हमारे साथ होती है। जब हम कभी डगमगा रहते हैं, हमें डीमोटिवेट आ जाता है या कुछ, तो वो हमें हिम्मत देते हैं, वो हमें बोलते हैं कोई बात नहीं, आज नहीं मिका। जब मैं आपको एक फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मैंने जब शुरू किया, मैंने एक छोटी सी एग्जीबिशन लगाई, बहुत छोटी सी, जब मुझे बोलना भी नहीं आता था कि मैं अपने प्रोडक्ट को बेचूं कैसे, क्या बोलूं मैं ऐसा कि लोग बाग मेरे प्रोडक्ट को खरीदें, क्यों खरीदेंगे वो मेरा, क्योंकि वो मुझे जानते ही नहीं है, मेरे ऊपर ट्रस्ट कैसे करेंगे? तो मैं उन्हें यही बोलती थी कि मैं क्या बोलूंगी, क्या करूंगी, कुछ नहीं। तो बोले कि जो तुमने बनाया है, तुमने उसमें डाला है, उसको फील किया है, उसको शेयर करो।
0: करेक्ट।
1: तो सामने वाले को महसूस होगा कि जो हम बोल रहे हैं वो फेक नहीं है, वो सच्चाई है। मैंने वैसा ही किया। फिर जब एग्जीबिशन लगाई तो किसी किसी दिन हम ऐसा होता था कि हमारी एक प्रोडक्ट भी सेल नहीं होता था। फिर मैं घर आती, मुझे लगता है यार मैं तो बिजनेस बंद कर देती हूँ, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं इतना डीमोटिवेट हो जाती थी। फिर बोलते थे नहीं डीमोटिवेट, सब दिन एक जैसा नहीं होता, आज अच्छा बिका है, कल हो सकता है कम बिके, कल इससे भी ज्यादा तुम अच्छा कर पाओ।
0: बिल्कुल।
1: तो वो मोटिवेशन बहुत काम आता था इसमें। और एक पता नहीं, ऐसा मैं मानती हूँ कि एक शायद ठाकुर जी का भी मेरे बहुत सपोर्ट रहा, हाथ रहता है कि जब उन्हें लगता है कि हमारा एक हाथ जाने वाला है तो भी वो हमें दो रास्ते खोलने के लिए एक मोटिवेशन दे देते हैं कि भैया पता नहीं आगे फ्यूचर में मेरे साथ ऐसा होने वाला था, तो एक उनकी भी मुझे बहुत हिम्मत रही कि नहीं नहीं मुझे करना ही है, करना ही है, करना ही है।
0: कोई ऐसा डिवाइन मोमेंट या कोई ऐसा डिवाइन एक्सपीरियंस कभी हुआ हो जब आप बिल्कुल गिव अप कर चुके हों और फिर एकदम से एक यू नो एक रे ऑफ होप दिखी, तो वो अगर आप साझा करना चाहें कि वो मैं चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमें सुन रहे हैं वो बहुत बार ऐसे मोड़ पे ऐसे मुकाम पे पहुंचते हैं जीवन में जहां पे वो सच में गिव अप करने वाले होते हैं, बट कहीं ना कहीं से एक रे ऑफ होप उनको मिल सकते हैं या वो ढूंढ सकते हैं, तो उस एक इंस्पायरिंग सफर को अगर आप शेयर करें तो बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे मैम, अगर आपके जहन में अगर कुछ आ रहा है अभी जो आप साझा करना चाहें।
1: जी मैम, मैं एक चीज करती हूँ शेयर आपसे।
0: जी
1: मैं मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा बीमार थे, अभी तो नहीं रहे, लेकिन वो नहीं रहे तो मुझे ऐसा लगता था कि जब उनका सपोर्ट खत्म हो गया तो शायद मैं आगे कुछ कर नहीं पाऊंगी। मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं अकेली, मेरे से होगा नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसा मतलब मैं सोचती रहती थी, क्योंकि बिजनेस करने की हिम्मत भी खत्म हो गई। डीमोटिवेट इतना ज्यादा हो गया, फिर मुझे लगा कि नहीं, एक्चुअली बच्चों ने बोला, मेरे फादर मदर इन लॉ ने भी बोला कि जब तुम्हारा सपना है ये और उसका सपना है ये, तो उसके सपने को पूरा करने के लिए तुम्हें मोटिवेट होना है, तुम्हें गिरना नहीं है। फिर मुझे भी डे बाय डे यही फील होता रहा कि नहीं ये मेरा सपना है, इसे तुझे अपने जीते जी, मेरे जीते जी इसको पूरा करना ही करना है, करना ही है, इसको किसी भी तरह से आपको छोड़ना नहीं है। और फिर लोगों का भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला, जो मेरे प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो काफी सालों से मेरे कस्टमर बने, वो भी मुझे कहते थे कि मैडम कोई बात नहीं ना, हम तो आपके साथ है ना, हम तो रेगुलर आपसे मंगाते ही हैं, हम भी लोगों को बोलेंगे, एक से दो, दो से तीन होंगे, आप इतने अच्छा बिजनेस करती हैं, इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाती हैं, आप करिए, आप हिम्मत मत हारिए, हम आपके सपोर्ट में हैं। उससे बहुत लोगों का सपोर्ट रहा, मेरे को कस्टमर का सपोर्ट भी मुझे बहुत मिला।
0: जी जी, तो कहते हैं जैसे एक रास्ता बंद होता है तो 100 रास्ते खुलते हैं, उसी तरह से शायद आपकी जर्नी रही मैम। एंड आई एम सो सॉरी फॉर द लॉस ऑफ योर हस्बैंड। हम पूरी एसएन फैमिली की तरफ से आपको यू नो एक कंडोलेंस देना चाहते हैं और आपको आपके आपकी शख्सियत के लिए आपको कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं कि यू नो इतने ब्लॉकेजेस के बाद भी आप आगे बढ़ते रहे और आपने उनके सपने को जिंदा रखा। दो चॉइसेस होती हैं, या तो आप उस सपने को मर जाने दें और अपने ग्रीफ में बह जाएं, और दूसरी चॉइस होती है जो बहुत डिफिकल्ट होती है, बहुत कम लोग ले पाते हैं, बट वो होती है उस सपने को जिंदा रखना और उसको आगे ले जाना। तो वो करके आपने ऑलरेडी उनको एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट पे कर दिया है और आई एम श्योर वो जहां भी हैं वो बहुत प्राउड हैं, बहुत हैप्पी हैं आपकी जर्नी को लेकर। तो बहुत कंग्रेचुलेशंस मैम। इसी एहसास के साथ हम सुनेंगे एक प्यारा सा गीत, जब कोई बात बिगड़ जाए।

0: क्या बेहतरीन और सदाबहार नगमा है ये। मैम आगे चलते हैं और जानेंगे आपसे कि आई एम श्योर आपके सफर में बहुत सारे फाइनेंशियल स्ट्रगल्स रहे हैं, ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी जैसे जीवन आगे चला, और लोगों का ट्रस्ट जीतना जैसे आपने बताया कि शुरुआत में किस तरह से लोगों को बिलीव कराएं अपने प्रोडक्ट में, क्या कहें उनसे, तो वो सब जो चैलेंजेस थे उन सबके बीच क्या कोई ऐसी प्रैक्टिस है आपकी, क्या कोई ऐसा विश्वास है आपका, या कोई ऐसी एक आपका एक तरीका है आपका इस सब से निकल के हमेशा चलते रहने का एक जज्बा बनाए रखना, क्या है वो ऐसी चीज जो आपको हमेशा मोटिवेट करती है? क्या वो डिवाइन पावर है, क्या वो इनर स्ट्रेंथ है, क्या वो कोई प्रैक्टिस है, मेडिटेशन, योगा, जो भी, वो अगर आप साझा करना चाहें हमारे श्रोताओं के साथ।
1: जी मैम, इसमें सबसे बड़ी जो ताकत है वो है कि एक तो हमारा परिवार का सपोर्ट, दूसरा है मेरा एक इसमें मोटिवेशन जो मुझे मिला वो सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरे हस्बैंड से मिला। वो लास्ट तक जो उनका मोटिवेशन था वो यही था कि कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी आखिरी सांस तक इस बिजनेस को करना ही करना है। और मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि हम डीमोटिवेट होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते, लेकिन हमें डीमोटिवेट की तरफ जाना ही नहीं है। कई लोग मिलते हैं ऐसे जो कहते हैं कि नहीं छोड़ दो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बहुत कमी थोड़ी आ रही है, तुम्हारे पैसे से थोड़ा सा घर चलेगा, ये वो सब। लेकिन नहीं, हमें अपने सपने के लिए भी जीना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और आएंगे चैलेंज तो आते ही हैं, फाइनेंशियल चैलेंज भी आते हैं, बिजनेस में बहुत चैलेंजेस आते हैं, सपोर्ट भी नहीं मिलता है, कस्टमर का भी नहीं मिलता है, लेकिन हाँ अगर हम कोशिश करते रहते हैं तो मिलता है सपोर्ट।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आपको कितना समय हो गया इस बिजनेस में मैम?
1: मुझे इसमें हो गए हैं 8 या 10 इयर्स, 8 to 10 इयर्स।
0: वाओ वाओ, अमेजिंग। एक डेकेड, एक दशक हो गया है ऑलमोस्ट। आई एम श्योर आप एक मदर भी हैं, और एक मदर होने के साथ साथ बिजनेस संभालना और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टेक केयर करना, तो इमोशनल बैलेंस और मेंटल बैलेंस को किस तरह से आप मेंटेन करते हैं? कभी बच्चों के साथ कोई चैलेंजेस आए या कोई ऐसा इंस्टेंस, अगेन मैं कोई एक कोई वाक्य अगर आप साझा करना चाहें कि कभी ऐसा हुआ हो जिसने आपको स्ट्रेंथ दी हो, जो परेशानी के साथ आया बट जाते जाते आपको स्ट्रेंथ देकर गया जब आपने उस मोमेंट को संभाला, उस लम्हे को जिया, तो किस तरह से, और आपके बच्चे किस तरह से आपको सपोर्ट करते हैं इस वेंचर में?
1: मदर होने के साथ साथ जो एंटरप्रेन्योर दोनों रोल्स जो मैंने निभाए हैं वो वाकई में इमोशनली तो बहुत होते हैं, और एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये हमारे एक हिंदुस्तानी महिला के लिए, तो शायद एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इसमें मेरे बच्चों ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। जब मुझे लगता था कि मुझे बच्चों के साथ अभी बाहर जाना है या उनको कहीं, लेकिन मैं उनके साथ नहीं जा पाती थी, तो वो मुझे बोलते थे कोई बात नहीं आप अपना बिजनेस करो, हम चले जाएंगे, हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर लेंगे, तो वो कर लेते थे इस तरह से मैनेज। और एक दूसरा पॉजिटिव मुझे वहां से आया जब मैंने मेडिटेशन और योगा करना शुरू किया। मैं जब भी थोड़ा सा भी डीमोटिवेट होती हूँ या कहीं से भी मुझे लगता है कि नहीं मेरा बिजनेस, मेरा मतलब शरीर भी लो जा रहा है, माइंड से भी या फिजिकली भी मैं लो फील करती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ, अपना सिर्फ जनरली म्यूजिक अपने लगा लेती हूँ और अपना सिर्फ और सिर्फ ध्यान में अपने बैठ जाती हूँ, 1 घंटा आधा घंटा, दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है मैं नहीं सुनती नहीं हूँ।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि अब वो एज आ चुकी है कि हमें अपने लिए भी जीना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और एक कटआउट जोन क्रिएट कर लेना अपनी पसंद की चीजों के साथ और अपने साथ एक मी टाइम एंजॉय करना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। आपको म्यूजिक का शौक है क्या? आप गाते भी हैं मैम?
1: नहीं, मुझे सुनना बहुत पसंद है, मुझे गाने का इतना शौक नहीं है, लेकिन हाँ पुराने गाने मैं बहुत सुनती हूँ।
0: जी जी।
1: और मैं जहाँ रहती हूँ सोसाइटी में वहाँ मैं योगा भी रोज आती हूँ सुबह, मुझे उनसे भी थोड़ा मोटिवेट मिलता है कि वो योगा सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, तो मुझे लगता है कि योगा और मेडिटेशन भी हमारे लिए बहुत मीनिंगफुल है।
0: बिल्कुल, हमें बहुत सेंटर करता है हमारे थॉट्स को, हमारे बिखरे हुए थॉट्स को। तो अगला गीत मैं आपकी पसंद का ही सुनाना चाहूंगी। पहले एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके प्रोडक्ट्स में आपने बताया कि केयर और ट्रस्ट का जो एलिमेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो सबसे ऊपर है हर चीज से ज्यादा बढ़ के, तो क्या आप मानते हैं कि जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं उनमें जो मेकर है उसकी एनर्जीज, उसके इमोशंस ट्रांसफर होते हैं? कभी कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है या आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो प्योरिटी है, आपकी जो इंटेंट है प्योर, वो भी ट्रांसफर होता है आपके प्रोडक्ट में? किस तरह से आप इसको देखते हैं?
1: हाँ मैं पूरी तरह मानती हूँ कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स में मेकर का इमोशनल बहुत और एनर्जी दोनों जुड़ी हुई होती है। जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उसे ये ध्यान रखते हैं कि जैसे हमारी स्किन जितनी सेंसिटिव है, बच्चों की स्किन जितनी सेंसिटिव है, बड़ों की उतनी ही सबकी स्किन सेंसिटिव है। हर की स्किन को बेबी केयर की ही नीड होती है। तो मुझे अपनी स्किन पे सबसे पहले मैं प्रोडक्ट बनाती हूँ, फिर अपनी स्किन पे ट्राई करती हूँ, फिर मुझे लगता है कि मेरी स्किन पे रिजल्ट थोड़ा ठीक आ रहा है या कुछ 19-20 है या कम ज्यादा आ रहा है ड्राइनेस या वो, तो मैं मेरे बच्चों पर या जैसे छोटे बच्चे हैं उन पर या मेरी मदर पर हर एज पे मैं ट्राई करके फिर उसको मार्केट में लॉन्च करती हूँ, ताकि सामने वाले पर उसको स्किन पर इतना खराब रिजल्ट ना आए। अगर फायदा ना हो तो कम से कम वो उसको यूजलेस भी ना जाए उसके लिए।
0: और आपके जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें कि बेबी प्रोडक्ट्स हैं और एडोलेसेंट हैं, किस तरह टीनेज हैं, किस तरह से आपकी प्रोडक्ट रेंज है, और सबसे आपका जो जिसको आप रेकमेंड करेंगे सब लोगों के लिए स्किन केयर का एक बेसिक कोई प्रोडक्ट जो आप सबको रेकमेंड करना चाहें नेचुरल नेक्टर का।
1: मेरे प्रोडक्ट वैसे देखिए न्यू बॉर्न बेबी भी यूज कर सकता है क्योंकि नेचुरल है
0: जी,
1: तो हमें जरूरत नहीं है कि हमारी स्किन भी बेबी सॉफ्ट ही होती है जैसे बच्चों की है उतनी ही हमारी है, तो मेरे प्रोडक्ट सारे नेचुरल। चाहे आप मेरे यहाँ का बॉडी वॉश यूज कीजिए, चाहे हैंड वॉश यूज कीजिए, चाहे मॉइस्चराइजर यूज कीजिए, चाहे स्क्रब यूज कीजिए।
0: जी जी, तो आप
1: जो बॉडी वॉश आप लगा रहे हैं वही बच्चे लगा सकते हैं।
0: वाओ वाओ, वो इतने नेचुरल हैं
1: जी।
0: राइट, तो मैम आपकी पसंद का कोई गाना बताएं जो अब हम प्ले करना चाहेंगे।
1: जो भी आप पसंद, मेरे भी पुराने गाने सब पसंद आते हैं।
0: अच्छा, फिर भी कोई आपका फेवरेट टॉप फेवरेट अगर आप सुनना चाहें तो हम आपकी फरमाइश पे प्ले करना चाहेंगे।
1: सागर जैसी आंखों वाली।
0: वाओ क्या बात है, तो चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत फिल्म सागर से, सागर जैसी आंखों वाली। ये तो बता तेरा नाम है क्या।

0: बहुत ही प्यारा गीत। मैम आगे चलते हैं। मेरा सवाल अब है आपके कस्टमर से रिलेटेड, क्योंकि नेचुरली 10 साल हो गए तो एक कस्टमर बेस आपका एक लॉयल कस्टमर बेस बन गया होगा। तो जब वो आपके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, आपको ट्रस्ट दिखाते हैं, आपको लॉयल्टी, ब्रांड लॉयल्टी दिखाते हैं, तो वो फीलिंग आपको अंदर से किस तरह से फुलफिल करती है? और कोई कस्टमर एक्सपीरियंस अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें, कि आई एम श्योर 10 सालों में बहुत सारे कस्टमर एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, तो कोई एक या दो एक्सपीरियंस जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आप कभी नहीं भूल पाते, जिसने आपकी जर्नी को बहुत शेप किया है, वो अगर हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें।
1: मैम, जब कस्टमर हमारे प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं और दोबारा उसे जब परचेज करते हैं, तो मुझे बहुत अंदर से खुशी होती है कि उन्हें इतना ट्रस्ट मेरे ऊपर किया कि वो मेरे प्रोडक्ट दोबारा लेने आ रहे हैं। टच वुड, मैं यही कहूंगी कि अभी तक जितने भी कस्टमर जो जुड़े हैं, कुछ को छोड़कर बाकी 90% ऐसे हैं जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं। यहाँ तक कि वो अपने बर्थडे, एनिवर्सरी या जैसे कुछ छोटे ओकेजन भी होते हैं ना, तो वो मुझसे हैम्पर बनवाते हैं और मुझे बोलते हैं कि मैम आप ये पूरे साल भर का कैलेंडर हमारा रखिए, ये है, आप इस एड्रेस पे इस डेट को ये पहुंचा दीजिएगा आप हैम्पर। इतना मुझे बहुत खुशी होती है कि उन्होंने मेरे सफर में मेरा सपोर्ट किया, कि ट्रस्ट जमाया मेरे ऊपर। और कई कस्टमर तो मेरे ऐसे हैं, अभी मैं आपको बता दी, थोड़े दिनों पहले एक ब्यावर के कस्टमर है मेरे, मैंने फर्स्ट एग्जीबिशन की थी ब्यावर में, पहली बार मैं उनसे मिली। एक्चुअली उनके हस्बैंड को बाहर जाना था फॉरन, उनकी यहाँ से फ्लाइट थी जयपुर से। वो मुझे ऐसे बोले कि मैम मैं प्रोडक्ट मंगा नहीं पाई हूँ, अब आप ब्यावर पहुंचा नहीं सकते क्योंकि आज उनको निकलना है और जयपुर से उनकी फ्लाइट है, लेकिन वो जयपुर जब तक पहुंचेंगे तब तक 11:30 बज जाएगी क्योंकि उनकी नाइट में फ्लाइट थी। फिर भी मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप उनको बोलिए, कोशिश करिए, मैं कोशिश करती हूँ ऐसा कि मैं उन्हें ये हमारे यहाँ 200 फिट तक मैं उन्हें दे देती हूँ। फिर उन्होंने बोला कि बहुत सारा उन्होंने मुझसे, मतलब उनको फील भी बहुत हुआ, लेकिन फिर भी मैंने उनकी तरफ से कोशिश की, मतलब चलो ठीक है मैं, अब वो फॉरेन जा रहे हैं, उन्होंने बोला कि आपके अलावा मैं यूज नहीं कर पाऊंगा वहां जाकर भी, क्योंकि मुझे आप ही के फेस वॉश और बॉडी वॉश सूट होता है। फिर मैं उनको वहां तक, लकीली मैं 11:30 उन्हें वहां देने गई, वो इतने खुश हुए और उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया कि मैडम आपके प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट बाद में हम देखते हैं, पहले आपका जो कस्टमर के प्रति डेडिकेशन है कि आप उस कस्टमर के लिए कितना डेडिकेट हो जाते हैं कि भाई हाँ मुझे वो प्रोडक्ट उसे देना है।
0: राइट राइट राइट,
1: वो मुझे, हमें बहुत अच्छा लगता है, वो मुझे भी सामने वाले का सुनकर बड़ा अच्छा, मुझे लगता है कि हमें कोशिश तो करें ना हम।
0: करेक्ट करेक्ट, वो पर्सनल केयर में, सच में पर्सनल केयर आनी चाहिए जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट है उसमें।
1: मुझे लगता है कि उन्होंने यूज किया, अब वो बेचारे परेशान हो रहे हैं कि कहाँ से मैं लूंगा, क्या करूंगा, ये वो सब, तो मुझे लगा कि नहीं उन्हें मुझे देना चाहिए।
0: बहुत ही प्यारा सा एक यू नो एक्सपीरियंस आपने साझा किया। ऐसा और कोई इंस्टेंस जो आपके जहन में भी आ रहा है जो आप साझा करना चाहें?
1: ऐसा ही एक एक्सपीरियंस और है, मेरे एक कस्टमर है, उनका एक छोटा बेबी है, तो उन्होंने अपने ये बाहर की जितने भी आते बच्चों के प्रोडक्ट उन्होंने यूज किया, उन्होंने मुझे बोला कि, मैंने कहा हाँ आप यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे बेटे को, वो 6 या 7 मंथ का था, कि उसे स्किन पर रैशेज हो गए हैं, रेड, जैसे हम मालिश करते हैं तो वो रेडिश हो गया है उसका, तो अब मैं क्या करूं
0: जी।
1: फिर मैंने उन्हें बोला आप कुछ मत कीजिए, मैं आपको एक क्रीम भेज रही हूँ अभी सिर्फ छोटी सी ट्रायल के लिए, आप उसको उसी क्रीम से बॉडी मसाज कीजिएगा, जब मालिश कराते हैं बच्चों की आप उसी से कीजिएगा, आपको रिजल्ट आता है तो बेस्ट, नहीं आता तो मुझे कॉल कीजिएगा, मैं उसके लिए ट्राई करूंगी कि कुछ और इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड कर आपको भिजवा सकूं।
0: राइट,
1: फिर मैंने उन्हें क्रीम भेजी, उनको वास्तव में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, फिर उन्होंने गूगल पे जाके बहुत अच्छा रिव्यू भी डाला
0: जी।
1: और काफी लोगों को शेयर किया कि उन्होंने मेरे छोटे से बच्चे को जो इतनी एलर्जी हो गया था, जिसको पानी से अगर मैं वॉश भी करती थी तो भी वो चिल्लाता था, हम सोचते थे कि छोटा बच्चा रो रहा है, पानी से बच्चे डरते हैं कई बार, लेकिन पता चला कि वो स्किन एलर्जी थी उसको, कि वो कुछ भी अड़ रहा था ना उसकी स्किन से तो वो रो रहा था। वो तब से आज दिन तक अपने बच्चों को मेरी ही बनाई हुई क्रीम्स लगाते हैं।
0: वाओ, हाउ अमेजिंग, इन एक्सपीरियंसेस में कितनी पर्सनल एक टच होती है और कितना एक आपको लगता होगा कि आप कितना चेंज ला पा रहे हैं किसी के जीवन में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड केयर। तो क्योंकि
1: बिल्कुल
0: बच्चों से ज्यादा कोमल और आप सॉफ्ट, और एक मन जो एक सॉफ्ट हो जाता है वो बच्चों की तरफ बहुत ज्यादा जाता है, और जब बच्चों को तकलीफ में देखते हैं तो बहुत दुख होता है। तो आई एम श्योर ये प्रोडक्ट्स एक मैजिक की तरह काम करते होंगे उनके ऊपर। आगे चलते हैं मैम, मेरा आखिरी सवाल आज का, क्योंकि आपने खुद ने अपने आप को इतना बुलंद बनाया है, अपनी शख्सियत को इतना बुलंद बनाया है अपने कर्मों से, अपने कॉन्शियस डिसीजन से, और हर ऑड के अगेंस्ट, हर परेशानी के अगेंस्ट आप खड़े हुए हैं। तो आज की जो वुमेन फोक हैं, जो अपने सपनों को जीना चाहती हैं, बट कहीं ना कहीं किसी रोड़े की वजह से, किसी ब्लॉक की वजह से उसको फुलफिल नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज हो, कोई प्रैक्टिकल मैसेज जो वो अपना सकती हैं, तो वो क्या होगा?
1: मैं हर महिला से यही कहना चाहूंगी कि अपने सपनों को भी कभी मत छोड़िए। हम परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अपने और सबके लिए जीते हैं। सबके लिए, सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हम सबके लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो छोटे छोटे कदमों से हम शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मैंने भी शुरुआत की थी तो एक दो प्रोडक्ट से की, और जनरली मार्केट से एक छोटी छोटी दो बॉटल खरीद कर अपने फ्रेंड सर्कल को दिया, अपने रिलेटिव को दिया, वहां से मैंने शुरुआत की। छोटे छोटे कदमों से हम बहुत ऊपर की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं।
0: जी
1: मुश्किलें आएंगी लेकिन हमें उनसे कभी घबराना नहीं है। और जब एक महिला खुद पर भरोसा करती है ना, तो वो अपने साथ पूरे परिवार को, पूरे राष्ट्र को और पूरे समाज को भी आगे ले जाती है। तो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हमें कभी घबराना नहीं चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, एक महिला जब उठती है तो सच में वो पूरे परिवार को लेकर ऊपर जाती है, और पूरा एक यूनिट उसके साथ ग्रो करता है। तो वो एक सिर्फ वुमन कर सकती है, एक सिर्फ औरत कर सकती है, ये शक्ति भगवान ने हमें दी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया संगीता जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतनी प्यारी, इतनी सरल और इतनी सहज बातें हमारे साथ साझा करने के लिए, आपके बिजनेस के बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके जीवन के बारे में, जिसने बहुत सारे लोगों को आई एम श्योर आज इंस्पायर किया होगा। थैंक यू मैम। आपकी
1: थैंक यू
0: कुछ,
1: मैम।
0: जी आप कुछ कहना चाहेंगे अंत में?
1: मैम मैं यही कहना चाहूंगी कि एसएम रेडियो का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये मेरा पहला इंटरव्यू था और मुझे बहुत अच्छा लगा। जिंदगी के रंग गीतों के संग आपका ये खूबसूरत प्रोग्राम, आपको बहुत बहुत बहुत बधाई हो। और मुझे तो कुछ शब्द भी नहीं है कि मैं आपको बता सकूं मुझे कितनी खुशी हो रही है अंदर से।
0: मैम आई एम सो ग्लैड मैम, हम इक्वली खुश हैं और इक्वली एक्साइटेड हैं इस प्रोग्राम की एयरिंग के लिए, क्योंकि आई एम श्योर आपकी बातों से बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, जो हमारे जिंदगी के रंग गीतों के संग का मकसद है और एसएन रेडियो का मकसद है, लोगों को खुश करना और उन्हें इंस्पायर करना थोड़ा सा। तो दोस्तों, संगीता जी की जर्नी ने हमें ये सिखाया कि जब फेथ, फैमिली सपोर्ट और सेल्फ बिलीव हो तो हर कहानी खूबसूरत बन सकती है। कभी कभी जिंदगी के सबसे खूबसूरत रंग स्ट्रगल्स के बाद ही आते हैं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हम सफर, मिलूंगी आपसे फिर से एक नए मेहमान के साथ और एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए आप अपने सपनों पर थोड़ा और भरोसा करिए, थोड़ा और बिलीफ रखिए, और जिंदगी के रंग गीतों के संग को महसूस करते रहिए। नमस्कार
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM
1: ભાવના આપણા ઝાબુઆના સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટેન્ટિયાવિલ 90.8

0: પઢંગલા ભાઈઓનું ઘણું ઘણું સ્વાગત કરીએ છીએ આપણા ઝાબુઆના સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો 90.8 FM ઝાબુઆની આવાજ પર.
1: Hakuna Matata. What a wonderful phrase.
2: Hakuna Matata. Ain't no peasant craze.
3: दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है. प्रेरणा मोटिवेशन इतना जरूरी क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हमें जिंदगी बेहद खूबसूरत तरीके से हंसते खेलते गुजारनी है, रोते धोते नहीं. तो आइए दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं हंसते खेलते हुए प्रेरणादायक गीतों के साथ और करते हैं प्रेरणादायक बातें.
2: What a wonderful phrase. Hakuna Matata.
3: दोस्तों, डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है. बड़ी मजेदार वाली बात है. आपका डर महज एक भाव के अलावा कुछ भी नहीं होता, जो आपकी कल्पना से और बढ़ता जाता है. डर को आप खुद चुनते हैं, लेकिन सफल लोग अपने इस डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते. वो अपने डर को अपनी सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं. वो हर उस चीज से लड़ते हैं जिससे वो डरते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं. वो खुद को विश्वास दिलाते हैं कि वो अपने डर से लड़ सकते हैं. बस आपको भी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए. बने रहिए आरजे समीर के साथ. हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, समय जरूर बदल जाता है और तब आप जीतते ही जीतते हैं दोस्तों.

अगर आप अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें परियों की कहानियां सुनाएं। यदि आप उन्हें और भी बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें और ज्यादा परियों की कहानियां सुनाएं।

आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ, हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।

0: दोस्तों, मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी। तो लीजिए सुनिए।
1: आत्मा से तृप्त लोग कैसे होते हैं। मेरे एक मित्र बस स्टैंड पर बैठे अपने शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। अभी बस स्टैंड पर लगी नहीं थी। महाशय बैठे बैठे किताब पढ़ रहे थे, तभी लगभग 10 साल की एक बच्ची पास आकर बोली, बाबूजी पेन ले लीजिए, 10 के 4 दे दूंगी, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, शायद भाई होगा उसका। मेरे मित्र ने कहा कि उसे पेन तो नहीं चाहिए। इसके जवाब में उसका सवाल बहुत ही प्यारा सा था, तो फिर हम कुछ खाएंगे कैसे। मित्र ने कहा, बेटा पेन तो नहीं चाहिए पर तुम कुछ खाओगे जरूर। और फिर उन्होंने बैग में से बिस्किट के 2 पैकेट निकाले और दोनों को पकड़ा दिए। लेकिन मेरे मित्र की हैरानी की सीमा न रही जब उस बच्ची ने 1 बिस्किट का पैकेट वापस कर दिया और कहा, बाबूजी हमारे लिए 1 काफी है। मेरे मित्र जवाब सुनकर चौंक गए। उन्होंने दोबारा कहा, अरे रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मित्र की आत्मा को झिंझोड़ दिया उस बच्ची के जवाब ने, जब उसने कहा, तो फिर आप क्या खाएंगे। दोस्तों, इस संसार में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग इंसानियत को ताक पर रखकर लोगों को बेतहाशा लूटने में लगे हुए हैं। वहां एक भूखी बच्ची ने मानवता की पराकाष्ठा का पाठ पढ़ा दिया। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं आत्मा के तृप्त लोग। लोभवश किसी से भी इतना ना लेना कि उसके हिस्से का भी हम खा जाएं। मानवता की पराकाष्ठा का पाठ है, बहुत सुंदर।
0: दोस्तों, मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

आइए दोस्तों, आपको बताते हैं अमर के बारे में, जो अपने आप में एक प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं। गरीबी और आर्थिक विषमता के दर्दनाक हालात ने दशकों पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को इस कदर व्याकुल कर दिया था कि उनकी कलम से विपथगा कविता निकली थी। श्वानों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात्रि बिताते हैं। पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण। दुर्योग से अमीरी गरीब की खाई चौड़ी ही हुई है, इसलिए तमाम कानूनी उपायों के बावजूद बाल श्रम बाल विवाह की समस्या खत्म नहीं हो पाई है। कई बार किसी ढाबे या रसूखदार के घर के बाल श्रमिक हमें यूं देखते मिल जाते हैं, मानो कह रहे हो हमें उबार लो, हमारा हाथ थाम लो, हम भी कुछ बनना चाहते हैं। अमरलाल ऐसी ही अभिलाषाओं के प्रतिनिधि हैं। राजस्थान के बंजारा समुदाय में पैदा हुए अमर का बचपन भी उन अनगिनत बच्चों जैसा था, जिन्हें सुबह सुबह ये सवाल सताता था कि आज घर में खाने को कुछ मिलेगा भी या नहीं। इस बुनियादी चिंता ने अमर से भी उनका लड़कपन छीन लिया। उसमें स्कूल और किताबों का कोई जिक्र क्या होता। होश संभालते ही पेट भरने की मजबूरी ने अमर को भी पत्थर तराशों के बीच पहुंचा दिया। उनके परिवार पर स्थानीय महाजन का कर्ज ऐसा चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं लेता था, इसलिए परिवार के सारे सदस्य बंधुआ मजदूरी करने को बाध्य थे। छोटे छोटे बच्चे से भी पत्थर ढुलवाने में साहूकार सामंतों को शर्म नहीं आती थी। साल 2001 की बात है, अमर की उम्र भी 6-7 साल की रही होगी। उनका खानाबदोश परिवार उन दिनों जिस गांव की पत्थर की खान पर काम कर रहा था, वहां बचपन बचाओ आंदोलन एक शिक्षा रैली लेकर पहुंचा। खदान के करीब से गुजरते हुए रैली के अगुआ कैलाश सत्यार्थी ने जब नन्हे अमर के हाथों में पत्थर का बड़ा टुकड़ा देखा तो वो ठिठक गए। वो फौरन अमर के माता पिता से बात करने के लिए पहुंचे ताकि उन्हें समझा सकें कि ये जुल्म है, ये तो इस बच्चे के खेलने कूदने पढ़ने लिखने के दिन हैं। अब जिनके पुरखों ने कभी स्कूल न देखा हो तो वो भला क्या समझेंगे शिक्षा की कीमत। उनके लिए तो बाल मजदूरी कोई अनहोनी बात थी नहीं, क्योंकि वो सब यही तो करते हुए बड़े हुए थे। मगर कैलाश सत्यार्थी उन्हें समझाने में जुटे रहे कि उनका बेटा किसी बड़े काम के लिए बना है। उन्होंने अमर के पिता से कहा कि यदि वो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन नहीं कर सकते तो जयपुर में एक बाल आश्रम है जो इसकी जिम्मेदारियां उठा सकता है। गरीब माता पिता भी बेटों का भला चाहते थे और उनके दिल में भी तरह तरह की तमन्नाएं थीं। कैसे अपनी संतान को नजरों से इतना दूर भेज दें। बिछो के ख्याल से ही उनका दिल कांप उठा। लरजती हुई आवाज में अमर के पिता ने सत्यार्थी जी से बस यही कहा कि वो पहले जयपुर आश्रम जाकर वहां रह रहे बच्चों को देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। माता पिता दोनों जयपुर बाल आश्रम आए। असंतोष की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि जैसी जिंदगी वे अपने बच्चों को दे रहे थे उससे आश्रम के जीवन की कोई तुलना ही नहीं थी। अमर अपने दो बड़े भाइयों के साथ जयपुर आश्रम आ गए। वो सब बेहद खुश थे क्योंकि वहां वे अपनी मर्जी से खेल सकते थे, पढ़ लिख सकते थे। 6 महीने तक आश्रम में पढ़ने के बाद अमर और उनके भाइयों का औपचारिक शिक्षा के लिए एक सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। अमर ने वहीं से 12वीं की अपनी शिक्षा पूरी की। बालाश्रम ने अमर और उनके भाइयों को एक नई जिंदगी दी, बल्कि अमर के नेतृत्वकारी गुण को भी बहुत अच्छी तरह से निखारा। वो कई बार बाल आश्रम बाल सभा के अध्यक्ष चुने गए। आश्रम में ही उन्होंने सत्यार्थी के बेटे भुवन से संवाद करने का मौका मिला, जो पेशे से वकील है। जैसे जैसे अमर बड़े और शिक्षित हुए, उनका यकीन पुख्ता होता गया कि कानून ही वो जरिया है जिसकी मदद से बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाई जा सकती है। साल 2013 में उन्होंने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और 2018 में कानून में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद 2019 में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। करीब 6 महीने तक दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकालत करने के बाद 1.5 साल तक अमर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ वकील के साथ काम भी किया और उसके बाद वो अपनी संस्था के लिए काम करते रहे। वो न सिर्फ बाल मजदूरों के मुक्ति अभियान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं,
बल्कि जिस किसी गांव के बारे में उन्हें पता चलता है कि वहां बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा। अमर वहां पहुंचकर अपनी कहानी सुनाते हैं और परिजनों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने बच्चों का भविष्य बचा लें। अमर को स्वीडन और नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को संबोधित करने का भी मौका मिला, जहां उन्होंने बच्चों के अधिकारों और बाल विवाह के खिलाफ दुनिया का ध्यान खींचा। अमर के माता पिता के पास जोधपुर में अब अपना घर है। जब भी कोई उनसे पूछता है, आपका बेटा दिल्ली में वकील है, अमर के अभिभावकों के लिए ये गौरव का क्षण होता है। उनके दूसरे बेटा बेटी भी अब नौकरी करते हैं, मगर इन वर्षों में अमर बार बार अपने समुदाय के बीच लौटते हैं। नतीजन उनके बंजारा समुदाय के अब लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। इलाके के खानाबदोश समुदायों के सामने मिसाल के तौर पर उनकी कहानी पेश की जाती है। मानना होगा कि अमर ने हाशिए पर जीने वाले हरेक बच्चे के हक की लड़ाई लड़ी है। अब अपने बचपन को उन्होंने हमेशा अपने भीतर जिंदा रखा है, ताकि वो उन्हें याद दिलाता रहे, हजारों बाल श्रमिकों को अमर की तलाश है।

दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए। बेशक हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ तो अच्छा जरूर होता है।

0: अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया।
1: मुश्किल का नाम मिट जाए।

0: सर, इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: That's the spirit, sir.

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता। हरी हरी दूब पर ओस की बूंदें अभी थीं, अभी नहीं है। ऐसा खुशियां जो हमेशा हमारा साथ दे, कभी नहीं थी, कहीं नहीं है। कंक्यार की कोख से फूटा बाल सूर्य जब पूरब की गोद में पांव फैलाने लगा, तो मेरी बगीची का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं या उसके ताप से भाप बनी उसकी बूंदों को ढूंढूं? सूर्य एक सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। ये बात अलग है कि ओस क्षणिक है। क्यों ना मैं क्षण क्षण को जीऊं, कण कण में बिखरे सौंदर्य को पीऊं? सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीचे की हरी हरी दूब पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: हमारे देश में भयंकर वाली टेक्नोलॉजीज चलती हैं। अमेरिका के दो साइंटिस्ट एक बात सुनकर हमारे देश की बेहोश हो गए जब उन्हें पता चला कि घर में अगर चप्पल उल्टी रखती जाए तो लड़ाई हो जाती है।
0: दोस्तों, मैं हूं आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले आइए ना एक गीत सुन लेते हैं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सेल्समैन ने कहा, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू ने कहा, नहीं, हम कॉकरोच को इतना लाड़ प्यार नहीं करते, आज पाउडर लगा देंगे, कल परफ्यूम मांगेगा।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके, जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा।

0: Matata. What a wonderful phrase.
1: Hakuna Matata. Ain't no peasant craze.
2: दोस्तों, आज के इस हंसी खुशी के प्रेरणादायक प्रोग्राम में बस इतना ही। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। कल फिर मिलता हूँ।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के फनकार हैं मदन मोहन जी, जो हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं, म्यूजिक डायरेक्टर। अपनी गजलों के लिए प्रसिद्ध इस संगीतकार का पूरा नाम मदन मोहन कोहली था। आइए दोस्तों इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं मदन मोहन जी के बनाए हुए इस गीत से।

मदन मोहन जी का जन्म 25 जून 1924 को बगदाद में हुआ था। इनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल इराकी पुलिस बलों के साथ महालेखाकार के रूप में काम कर रहे थे। मदन मोहन ने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्ष मध्य पूर्व में बिताए थे।

1932 के बाद उनका परिवार अपने गृह शहर चकवाल फिर पंजाब प्रांत पाकिस्तान झेलम जिले में लौट आया। उन्हें एक दादा दादी की देखभाल में छोड़ दिया गया जबकि उनके पिता व्यवसाय के अवसरों की तलाश में बॉम्बे आए। उन्होंने अगले कुछ वर्षों तक लाहौर के स्थानीय स्कूल में पढ़ाई की।

लाहौर में रहने के दौरान उन्होंने बहुत कम समय के लिए एक करतार सिंह से शास्त्रीय संगीत की मूल बातें सीखी। हालांकि संगीत में उन्हें कोई खास प्रशिक्षण नहीं मिला। कुछ समय बाद उनका परिवार मुंबई आ गया। मुंबई में 11 साल की उम्र में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित बच्चों के कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया। आइए सुनते हैं उनके द्वारा बनाया हुआ ये गीत।

सन 1943 में वो सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में शामिल हुए। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक 2 साल तक वहां सर्विस की, फिर सेना छोड़ दी और अपने संगीत हितों को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई लौटे। आइए सुने उनका ये गीत।

1946 में वो ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में कार्यक्रम सहायक के रूप में शामिल हुए। वहां वो उस्ताद फैयाज खान, उस्ताद अली अकबर खान, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसे विभिन्न कलाकारों के संपर्क में आए। इन दिनों के दौरान वो ऑल इंडिया रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होने वाले कार्यक्रमों के लिए संगीत बनाते थे। चलिए दोस्तों, सुने उनका ये गीत।

संगीतकार मदन मोहन के मामले में संगीतकार खय्याम साहब का कहना है कि वो संगीत के बेताज बादशाह थे। संगीत की जितनी विविधताएं होती हैं उन्हें उनका गहरा ज्ञान था। हालांकि कोई औपचारिक प्रशिक्षण उन्होंने कभी नहीं लिया। 1947 में उन्हें ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां उन्होंने छोटी सी अवधि के लिए ही काम किया। 1948 में उन्हें फिल्म शहीद के लिए संगीतकार गुलाम हैदर के तहत लता मंगेशकर के साथ फिल्म युगल पिंजरे में बुलबुल बोले और मेरा छोटा दिल डोले गाने का पहला मौका मिला। बस फिर क्या था, मदन मोहन जी की किस्मत बदल गई। आइए सुने उनका ये गीत।

जो मिल गया है तेरा सहारा।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार हैं ये प्रसिद्ध जोड़ी आनंद मिलिंद की। आनंद मिलिंद हिंदी फिल्मों की एक प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी है। प्रतिभाशाली संगीतकार चित्रगुप्त के ये दोनों बेटे आनंद चित्रगुप्त और मिलिंद चित्रगुप्त अपनी शुरुआती दौर में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सहायक रहे।

0: मुझे प्यार।
1: अपने पिता के सहायक के तौर पर भी उन्होंने कई हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में संगीत दिया। आइए सुनते हैं उनकी बनाई हुई तर्ज पर ये गीत।

उनकी पहली सफल हिंदी फिल्म कयामत से कयामत तक थी। बस इस फिल्म ने सफलता के कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये फिल्म आमिर खान की भी पहली फिल्म थी। इस फिल्म का गीत पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा उदित नारायण जी ने गाया था। इस फिल्म के संगीत के लिए आनंद मिलिंद को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। चलिए सुनते हैं यही गीत।

सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

कश्मीर कहा जाता है, तो 80 और 90 के दशक को अब भी इसकी सुरीली धुनों के लिए याद किया जाता है। इस जोड़ी ने अब तक 200 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दे दिया है।

इनकी सबसे पहली फिल्म थी 1982 में अब आएगा मजा। ये कॉमेडी फिल्म थी जिसमें फारूक शेख और अनीता राज ने काम किया था। इसके कई गाने लता मंगेशकर जी ने गाए थे। जैसे ही लोगों को पता चला कि इस फिल्म के संगीतकार आनंद मिलन हैं, बस लता जी के आशीर्वाद से इनकी डिमांड बढ़ती चली गई।

उदित नारायण की आवाज इन्हें शुरू से ही पसंद थी, तो इसलिए इनके ज्यादातर गाने उदित नारायण जी ने ही गाए। और दूसरी गायिका थी अलका याग्निक। अलका याग्निक भी इनके संगीत पर बराबरी से गाती रहीं। चलिए सुनते हैं इन्हीं का एक और गीत।

गोविंदा की दूल्हे राजा और कुली नंबर वन जैसी फिल्मों के गाने सुनने में बड़े हल्के फुल्के से लगते हैं, लेकिन ऐसे गाने संगीतबद्ध करना बहुत ही मुश्किल होता है।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: कुछ रास्ते पैरों से नहीं बल्कि दिल से तय किए जाते हैं, और जब उन रास्तों पर सुरों के हम सफर मिल जाएं, तो सफर जिंदगी बन जाता है। नमस्कार, आदाब और एक बेहद खूबसूरत सुकून भरी शाम आप सभी के नाम। 90.8 FM रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील पर मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय, और आप सुन रहे हैं हम सबका अपना प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों, रोजमर्रा की इस भाग दौड़ में अक्सर दिल की बातें दिल में ही रह जाती हैं, लेकिन इस महफिल में ऐसा नहीं होगा। अल्फाज से एहसास तक एक ऐसी जगह है जहां गुजरे जमाने के वो नायाब फनकार, वो जादुई आवाजें और वो अमर गजलें लौट आएंगी, जो कभी सीधे कागज से उतरकर हमारे एहसासों में घुल मिल जाती थी। आज की शाम हम उन धुंधली यादों की मखमली डायरी को फिर से खोलेंगे, सुरों के उस सुनहरे दौर में चलेंगे जहां हर एक लफ्ज में मोहब्बत, जुदाई, इंतजार और सुकून का एक गहरा समंदर छुपा है। आज इस महफिल में कौन कौन से अजीम फनकार अपनी आवाज से जादू बिखेरेंगे, ये राज धीरे धीरे खुलेगा जैसे जैसे शाम आगे बढ़ेगी। तो फिर क्या, अपनी खिड़कियों के पर्दे जरा सरका दीजिए, ताजी हवा

दोस्तों 90.8 FM रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील पर अल्फाज से एहसास तक का हमारा ये कारवां अब एक ऐसे मुकाम पर आ पहुंचा है जहां सुरों की गहराई और जज्बातों का समंदर और भी गहरा होने जा रहा है। संगीत की दुनिया में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कानों को सुकून नहीं देती बल्कि जो वक्त की गवाह बन जाती हैं। एक ऐसी ही अजीम और जादुई शख्सियत जिन्हें दिल्ली घराने की रूहानी तालीम मिली और जिन्होंने अपनी मखमली और बेहद भारी और दमदार आवाज से पूरे बर्रे सगीर मतलब सब कॉन्टिनेंट बांग्लादेश पाकिस्तान हिंदुस्तान को अपना दीवाना बना लिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गज़ल और ठुमरी की बेताज मलिका मोहतरमा इकबाल बानो जी की। आज हमारी इस महफिल में हम इकबाल बानो जी की एक ऐसी नायाब अमानत लेकर आए हैं जो मोहब्बत करने वालों का जैसे परमानेंट एंथम बन चुका है। हफीज़ होशियारपुरी साहब की लिखी एक ऐसी गज़ल जो बिछड़ने के दर्द को भी एक बेहद खूबसूरत और बावकार अंदाज देती है। तो चलिए अपनी रूह को सौंप दीजिए इकबाल बानो जी की पुरकश आवाज को। आंखें बंद कर लीजिए और महसूस कीजिए इस लाजवाब गजल को जिसके बोल हैं, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे आपको नजर करते हुए।

मुहतरमा इकबाल बानो जी की उस दमदार और मखमली आवाज ने हमारे दिलों को एक अजीब से जज्बात से भर दिया और अब अल्फाज से एहसास तक का हमारा हसीन कारवां महफिलों के उस सलीके से आगे बढ़कर सीधे रूह की उस सादगी और दर्द की तरफ बढ़ रहा है जहां कोई बनावट नहीं। महफिल के उस अदब और ठहराव में खोया था दिल अभी कि रूह को झकझोरने वाली एक और सदा आई है। ये वो आवाज है जिसमें किताबों के कायदे नहीं बल्कि सीधे रेगिस्तान की मिट्टी की वफा आई है। दोस्तों, जब दिल किसी की याद में बेहद बेबस हो जाता है, जब रातों की नींदें उड़ जाती हैं, तब दिल किसी शास्त्रीय राग में नहीं रोता, तब दिल से एक सादी ठेठ और सीधी पुकार निकलती है। इसी सच्चे और बेबाक एहसास को अपनी आवाज देने के लिए अब हमारी महफिल में गूंजने जा रही है वो आवाज जिसे दुनिया बेहद प्यार से रेगिस्तान की बुलबुल कहती है। जी हाँ, हमारी और आपकी बेहद अजीज मोहतरमा रेशमा जी। रेशमा जी की तालीम तो सूफियों के दर और रेगिस्तान की खुली हवाओं में हुई थी। यही वजह है कि जब वो गाती हैं तो ऐसा लगता है कि दिल की गहराइयों से दर्द की कोई नदी बह रही हो जैसे। तो चलिए आज की शाम को थोड़ा और गहरा करते हैं। जरा अपनी आंखें बंद कर लीजिए और रेशमा जी की उस अमर रूहानी आवाज में महसूस कीजिए इस बेइंतहा दर्द भरे नगमे को जिसके बोल हैं, हाय ओ रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा, हाय ओ रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा।

दर्द की उस गहरी नदी से निकलकर दिल अब जरा सा मुस्कुराया है। मोहब्बत के उस रूठने मनाने का ये खूबसूरत दौर आया है। लफ्जों में मिसरी सी घुलने लगी है अब इस महफिल में, देखो हवाओं में किसी की मासूम आवाज का साया है। रेशमा जी की उस रूहानी आवाज के उस गहरे दर्द ने यकीनन हम सब की आंखों को थोड़ा नम किया होगा, लेकिन दोस्तों मोहब्बत में सिर्फ बिछड़ने का दर्द ही नहीं होता, उसमें एक बेहद खूबसूरत मीठा और प्यारा सा एहसास भी होता है, और वो है अपनों से रूठना और उन्हें मनाना। इसी प्यारे और नाजुक से एहसास को अपने सुरों से सजाने के लिए अब हमारी महफिल में गूंजने जा रही है वो आवाज़ जिन्हें दुनिया अदब से बुलबुले पाकिस्तान कहती है। जी हाँ, मोहतरमा नयारा नूर जी। नयारा नूर की आवाज़ में ऐसी जादुई सादगी और ऐसी मिठास है कि जब वो गाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कानों में धीरे धीरे मिसरी घुल रही हो। तो चलिए, अगर आपका भी कोई अपना आपसे रूठा हुआ है तो इस नगमे को उसके नाम कर दीजिए। अपने चेहरे पर लाइए एक प्यारी सी मुस्कान और नयारा नूर जी की इस बेहद सुरीली और सदाबहार आवाज में डूब जाइए। सुनिए ये लाजवाब पेशकश जिसके बोल हैं, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, अंगना में बाबा द्वारे पे भैया, जाने ना दूंगी मैं तो थामूंगी बैया, तुमको मना कर ही दम लूंगी सैया, चाहे तड़पूं चाहे रोऊं चिल्लाऊं पिया, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया। शौक फरमाइए।

दोस्तों, नयारा नूर जी की उस मासूम आवाज़ में रूठे हो तुम। तुमको कैसे मनाऊं पिया के साथ। हवाओं में जो मीठी मिश्री घोली थी, उसकी मिठास अब भी हमारे लबों पर है। लेकिन दोस्तों, अल्फाज से एहसास तक का हमारा ये कारवां अब अपने आज के आखिरी और तारीख ही मुकाम पर आ पहुंचा है। एक ऐसा मुकाम जहाँ सुरों के दो ऐसे समंदर एक साथ आ रहे हैं, जिनके बिना मौसीकी की कायनात ही अधूरी है। आज इस महफिल के आखिरी पड़ाव पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मौसीकी की तारीख की एक ऐसी नायाब और नादिर अमानत, जिसकी मिसाल मिलना नामुमकिन है और जो सीधे आपकी रूह छू लेगी। एक तरफ हैं मुजस्सम मलिकाए तरन्नम मोहतरमा नूर जहाँ जी, और दूसरी तरफ हैं सुरों के बेताज बादशाह रूहानियत की बुलंद आवाज़, जनाब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब। सोचिए, जब ये दो अजीम फनकार बिछड़ने के दर्द, इंतज़ार की बेबसी और प्यासी आँखों की दास्तां एक साथ गाते हैं, तो समा कैसा होता होगा। जब मोहतरमा नूर जहाँ की जी की खनकती आवाज़ और खान साहब की वो रूहानी तान एक साथ गूंजती है, तो वक्त अदब से थम जाता है। तो चलिए, आज की इस महफिल के इस सबसे खूबसूरत, खसूसी और नायाब कलाम को हम सब मिलकर महसूस करते हैं। धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए और इन दो मुअज्जज फनकारों की आवाज़ में डूब जाइए, जहाँ जुदाई का एक बेहद गहरा एहसास छुपा है।

और जनाब नुसरत साहब कहते हैं, अखा ने वेखी है तेरी राह, अखा ने वेखी है तेरी राह, यानी आंखों ने देखी है तेरी राह, लम्बियां जुदाइयां सह के रोवां ते लेवां तेरा नाम। आंखों ने देखी है तेरी राह, लंबी जुदाई सह के रोता हूँ तेरा नाम लेता हूँ। आपकी नजर ये खूबसूरत शाहकार

दोस्तों, जनाब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब और मैडम नूर जहाँ जी की इस रूहानी और ख़ूबसूरत इत्तेहाद के साथ आज की ये महफ़िल अपने मुकम्मल मुकाम तक आ पहुँची है। वक्त की रफ़्तार का पता ही नहीं चला दोस्तों कि कब हम अल्फाज से चले थे और एहसास तक आ पहुँचे, लेकिन सुरों का ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता और यादों के चिराग कभी बुझते नहीं। अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि मैं अब आपसे इजाज़त लूं, तो चलते चलते मैं बस यही कहूंगी कि ज़िंदगी की इस मसरूफियत में अपने दिल के एहसासों का को ज़िंदा रखिएगा, क्योंकि लफ्ज़ तो सिर्फ कान छू कर गुज़र जाते हैं, बात तो तब है जब कोई अल्फाज सीधे एहसास बन जाए। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों से मोहब्बत कीजिएगा और सुनते रहिएगा मुस्कुराते हुए। शब खैर, शुभ रात्रि, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे।

0: दोस्तों, आपकी मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।
1: आप जिनके करीब होते हैं।
2: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति के साथ रोज जो उठता बैठता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM को। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाता है। किसान साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं तलहनी फसलों के ऊपर। तो तलहनी फसलों का अगर नाम आया है तो हमारा जो झाबुआ जिला है उसमें अधिकतर हम देखते हैं हमारे यहाँ का किसान जो है मूंगफली की, सोयाबीन की और तिल्ली की खेती करता है। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि मूंगफली का हम तेल निकालते हैं, साथ ही हम उसको स्नैक्स में भी खा रहे हैं, बाजारों में छोटे छोटे पैकेट्स में सिंगदाने हमको मिलते हैं, हम उसको रोस्टेड करके भी खाते हैं, साथ ही हम मूंगफली का बटर बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मूंगफली से बनी हुई चीज़ों का जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो आज हम जानेंगे कैसे हम मूंगफली की अधिक से अधिक उपज ले सकते हैं और कौन सा बीज हमें इस्तेमाल करना चाहिए और मूंगफली की खेती में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए आदि जानकारियों को जानेंगे। तो किसान साथियों, चलिए शुरू करते हैं।
4: हमारे देश में तिलहन की खेती की विशेष भूमिका है, क्योंकि हमारे रोजमर्रा के खान पान में खाने वाले तेल का इस्तेमाल खूब होता है। और तिलहनी फसलों की बात जहां तक आती है, हमारे देश में मुख्य तौर पर मूंगफली, सोयाबीन, तिल आदि तिलहनी फसलों की खेती होती है। इनमें मूंगफली की क्या खास भूमिका है, आज हम इस पर बात करेंगे। क्योंकि मूंगफली का तेल जहां तेल के रूप में इस्तेमाल होता है, वहीं इसके दाने जो हैं वो नमकीन के रूप में खाए जाते हैं। और साथ ही आपको तो पता ही होगा कि आजकल मूंगफली के बटर की मांग भी खूब बढ़ने लगी है। तो ऐसे में मूंगफली की खेती से किसानों को क्या फायदा हो सकता है, इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, किसान क्या करे ताकि उनकी मूंगफली का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो, इन सभी पहलुओं पर आज हम विचार विमर्श करेंगे। और इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़ गुजरात से बेहतर जगह और भला क्या हो सकती है। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और बहुत सारे किसान भी मौजूद हैं जिनसे हम ये पूरी बातचीत करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्वागत करें हमारे खास मेहमानों का। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मूंगफली अनुसंधान निदेशालय के निदेशक डॉक्टर राधाकृष्णन, साथ ही हमारे साथ है राष्ट्रीय कृषि सलाहकार श्री एस के दलाल, इनके साथ ही विशेष मेहमान डॉक्टर एस डी सावलिया हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, जो कि सहायक तकनीकी अधिकारी हैं। साथ ही डॉक्टर आर ए जाट, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, और डॉक्टर रिंकू डे, वरिष्ठ वैज्ञानिक है सूक्ष्म जीव विज्ञान की। और साथ ही बहुत सारे किसान, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो यहाँ पर मौजूद है। तो आप सभी का स्वागत है अपनी तरफ से, और इन सभी विशेषज्ञों के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। बिल्कुल, और इसी तालियों की गूंज के साथ आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और चर्चा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं एक रिपोर्ट।
5: हमारे देश में तिलहन की 7 बड़ी फसलें हैं और मूंगफली का इनमें प्रमुख स्थान है। खाना बनाने में मूंगफली के तेल का खूब इस्तेमाल किया जाता है। भारत में बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। एक अनुमान के अनुसार सरकार को हर साल करीब 1.5 करोड़ टन खाद्य तेल आयात के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। मूंगफली समेत दूसरी तिलहनी फसलों की उपज में बढ़ोतरी उपज और मांग के अंतर को पा सकती है। सरकार और वैज्ञानिक अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने इस बार मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। इसके अलावा 100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार बोनस भी दे रही है। दूसरी ओर हमारे वैज्ञानिक ज्यादा उपज वाले बीज तैयार कर रहे हैं, साथ ही वो किसानों से वैज्ञानिक विधि से मूंगफली की खेती करने पर जोर दे रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार और वैज्ञानिकों की ये कोशिशें रंग लाएंगी और मूंगफली भारत को खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में अपनी भूमिका निभाएगी।
4: तो अभी आपने रिपोर्ट देखी, आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर राधाकृष्णन, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी मैं, क्या वजह है कि अनाज के उत्पादन में हमने जो सफलता हासिल की है, तिलहन के मामले में वो बात अभी तक नहीं हो पाई है, क्या वजह है इसकी?
2: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमरता रेजो टांटिया भीलनो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
6: तिलन, जहां तक मूंगफली का बात है, वो रेन फेड है, जो बारिश के ऊपर निर्भर है। करीब 80% ग्राउंडनट जो है बारिश की वजह हेल्प से ही उगाया जाते हैं। जो बारिश का जो कमियां आते हैं, जो टाइम पर नहीं आते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम, जो बारिश कम होने का, ये मेजर कारण है। इसके अलावा कुछ कीट वगैरह भी होते हैं, जिसका नियंत्रण का अभी अच्छे तकनीक अवेलेबल है। बाकी जो मेजर प्रॉब्लम जो है वो ड्राउट का है, जो कम पानी होने का होता है।
4: बिल्कुल दलाल जी, आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि ये खाद्य तेल आयात जो है, इसे लेकर सरकार को करोड़ों खर्च करना पड़ता है। ऐसे में केंद्रीय कृषि विभाग जो है वो क्या कदम उठा रहा है ताकि जो घरेलू तेल उत्पादन है उसे बढ़ाया जा सके?
7: आपने बिल्कुल सही सवाल किया। भारत के अंदर हम खाद्यान्न तेल जो आयात करते हैं, वो उसके ऊपर भारत सरकार का करीब करीब 73,000 करोड़ रुपया साल का खर्च होता है। हमारी जो पैदावार है, जो तिलहन की फसलों से होता है, उससे जो हम अपने घरेलू तरीके से जो पैदा कर सकते हैं तेल, वो करीब करीब आधा होता है, 50% के करीब हम यहाँ करते हैं, और 50% हमको आयात करना पड़ता है। करीब 14-15 के आंकड़ों के मुताबिक 17 KG हर एक इंसान जो है पर कैपिटा कंजम्पशन है, जो कि बहुत ज़्यादा है, जबकि WHO के मुताबिक 10 KG काफ़ी होता है। तो हमारे यहाँ तेल का जो खपत है बहुत ज़्यादा है, जिसको हम इस माध्यम के थ्रू ये कहना चाहेंगे कि लोग तेल कम खाएं, ये स्वास्थ्य के लिए भी ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। हम एक्सपोर्ट भी करते हैं मूँगफली, जैसे हमने 5,000 करोड़ की पिछले साल हमने एक्सपोर्ट किया है। टोटल हम करीब करीब जो तिलन फसलों के जो हैं वो 19,800 करोड़ का निर्यात भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे को काफ़ी इसके जो विदेशी मुद्रा है वो खर्च करनी पड़ती है। इसलिए हम लोगों को तेल की कम खपत करनी चाहिए। तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कई एक कार्य किए हैं, जिसके अंदर ऑयल पाम एक ऐसा वो हमने निकाला है, जिसका पोटेंशियल देश के अंदर करीब 19.33 लाख हेक्टर है, जहाँ पे हम पाम ऑयल जो है वो पैदा कर सकते हैं, जिसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है और हमारे खाने की जिसकी कमी है उसको काफी हद तक पूरा कर सकती है।
4: जी बिल्कुल। तो तिलहन उत्पादन की बात जब हो रही है, राधा कृष्ण जी आप बताएं हमें कि इसमें मूंगफली खास तौर पर इसकी भूमिका कितनी है?
6: मूंगफली का भूमिका बाकी जो तिलहन है जैसे राई है या मस्टर्ड या सोयाबीन है उसके तुलना में अभी कम है, क्योंकि इसका जो एरिया है वो उस क्रॉप के हिसाब से ये तीसरे स्थान पर है।
4: जी,
6: तो ये तीसरे स्थान पर है अभी।
4: और निदेशालय की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही है मूंगफली उत्पादन को बढ़ावा देने?
6: ये निदेशालय नया नया किस्में डेवलप करने का और इसका जो भारत में जितनी जहाँ ग्राउंड नट उगाते हैं और उसमें जो संशोधन चलते हैं उसको कोऑर्डिनेट करने का ये काम मेनली करते हैं। इसके अलावा जो मूंगफली का उगाने में जो भी समस्याएं आते हैं उसको सुधारने का और उसको हल करने का जो तकनीकें वो बनाने का भी हम कोशिश कर रहे हैं।
4: जी,
6: फिर हमारा एक और कोशिश है जो अच्छे गुणवत्ता का बीज उपलब्ध करने का वो प्रोग्राम ब्रीडर सीड प्रोग्राम है वो भी हम करते हैं।
4: जी डॉक्टर डे, ऐसे में आप बताइए कि कुछ खास उपलब्धियां निदेशालय की जो है मूंगफली उत्पादन को बढ़ावा देने की, वो क्या उपलब्धियां हैं?
8: निदेशालय में काफी सारी उपलब्धियां रही हैं, जैसे कुछ कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, इम्प्रूव्ड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस डेवलप किए गए हैं एग्रोनॉमिक रिलेटेड। इसके अलावा जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है उसके द्वारा कंट्री में जितने हमारे कोऑर्डिनेटेड रिसर्च सेंटर्स हैं वहाँ से काफ़ी सारी उन्नत किस्में डेवलप की गई हैं, ग्राउंडनट की वैरायटीज रिलीज हुई हैं। और इस निदेशालय में जो ब्रीडिंग के द्वारा जो अच्छी प्रजातियाँ निकली हैं उसमें से 3 उन्नत ग्राउंडनट की वैरायटीज निकली हैं, जैसे गिरनार 1, गिरनार 2, गिरनार 3। और इसमें इसके अलावा काफ़ी सारी प्लांट प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजीज डेवलप की गई हैं जिसके द्वारा जैसे ग्राउंडनट के जो इम्पोर्टेंट डिजीजेज पेस्ट है, डिजीजेज में जैसे स्टेम रॉट है, कॉलर रॉट है, और इसके अलावा और भी कुछ सॉइल बोन डिजीजेज हैं जिनके कंट्रोल मेजर्स डेवलप किए गए हैं जिसके द्वारा ये जो इम्पोर्टेंट डिजीजेज हैं या बीमारियां जो मूंगफली के पौधे में लगती हैं इसका कंट्रोल किया जा सकता है। और मूंगफली में बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट, कीड़े मकोड़े लगते हैं जो काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं क्रॉप को, उनके कंट्रोल मेजर्स के लिए भी बहुत सारी नई तकनीकें डेवलप की।
4: कीड़े मकोड़ों और रोग बीमारियों के रोकथाम पर आगे बात करेंगे। डॉक्टर जाट से यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से जो मूंगफली का जो उत्पादन है उसके लिए जो आपने बताया कि जो वैज्ञानिक विधि है वो अगर अपनाया जाए तो वो बेहतर है, तो जो प्रचलित विधि है और जो वैज्ञानिक विधि है इनमें कितना अंतर है?
9: इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण पहलू है हमारा उसमें पोषक तत्व प्रबंधन। जैसे कि हम किसानों को सजेस्ट करते हैं कि वो 25 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 30 किलो पोटाश दें, लेकिन आमतौर पे किसान क्या करता है कि वो बहुत कम मात्रा के अंदर पोषक तत्व डालता है। साथ ही जैसे हम रिकमेंड करते हैं कि राइजोबियम, जो क्योंकि ये मूंगफली फसल है तो उसमें राइजोबियम जो बायोफर्टिलाइजर है वो लगाना आवश्यक है, लेकिन किसान या तो लगाता नहीं है या अगर बायोफर्टिलाइजर वो लगाता भी है तो उसकी क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती है। तो इसकी वजह से मूंगफली की फसल में पोषक तत्वों की कमी के कारण उपज में काफ़ी कमी आती है। दूसरा, फिर हम उनको बताते हैं कि जैसे खरपतवार की काफ़ी समस्या है, क्योंकि मूंगफली की जो फसल है उसकी ऊंचाई काफ़ी कम रहती है तो इसकी वजह से इसमें खरपतवार की काफ़ी समस्या रहती है। तो हम किसानों को हमारा रिकमेंडेशन है कि भी जो जब वो बुआई करता उस समय पेंडी मेथालिन नामक खरपतवार नाशी आता है उसकी 900 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर उसकी मात्रा हम बताते हैं, लेकिन कई किसान हैं जो वो नहीं लगाते, इसकी वजह से शुरू में ही खरपतवार आ जाते हैं। फिर बाद में हमारा रिकमेंडेशन है कि बुआई के 20 और 40 दिन बाद वो खरपतवार निकाले, या तो जैसे मजदूर लगा के निकाले या इंटरकल्चरिंग करें, लेकिन कई बार किसान वो भी नहीं कर पाता है क्योंकि आजकल मजदूरों की काफ़ी कमी हो रही है, तो उसकी वजह से भी हम मूंगफली की उपज में काफ़ी कमी आती है। तो ये कुछ जो इसके अलावा मूंगफली में एक बड़ा जो मुद्दा है वो है पौध संख्या पर हेक्टर की।
4: अब अच्छा, इसमें तो उसके बारे में हम आपसे जानेंगे कि किस तरह से जो उत्पादकता है और उत्पादन है वो बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर सावलिया से यहाँ पर मैं जान लूं कि जैसे कि बातचीत में कई बार ये बात आई है जो कीड़े मकौड़े हैं उससे काफी फसल को नुकसान हो जाता है, ऐसे में किस तरह की वैज्ञानिक विधियां हैं जो किसानों को अपनानी चाहिए।
10: ज्यादातर मैं कहना चाहता हूँ कि अभी आप जो पंचामृत पंचगव्य करके जीवामृत है, ऐसी जो घरेलू उत्पादन हो सकता है जो गायों की पालन पोषण के साथ साथ उसको दुगना फायदा होता है, दूध भी मिलता है, अपने चारे का भी सही तरह से इस्तेमाल करता है, गोबर मिलता है, तो अपनी जो जमीन की जो फर्टिलिटी है उसको भी वो मेंटेन कर सकता है और खुद अपने हाथों से पंचामृत बना के वो अपने खेत में छिड़काव करने से कीड़े मकोड़े भी कीट जो कीट आते हैं नुकसान करने वाले उसकी संख्या भी कम कर सकते हैं, उससे नुकसान भी कम कर

0: सकते हैं, और जो ये सब जीवामृत है वो सब वातावरण के लिए अनुकूल है और हेल्थ के लिए अनुकूल है, पर्यावरण को सुरक्षित रखता है, और जो कुदरती परोपजीवी परभक्षी कीट है लेडीबर्ड बीटल है, क्राइसोपा है, और जो दूसरे कई है उसकी भी उसको भी नुकसान नहीं करता और पूरी मात्रा में उसकी संख्या रहने देते हैं, और ताकि दवाइयां का छिड़काव कम हो और किसान को कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कम हो।
1: तो इसके उपाय हम आगे आपसे और भी जानेंगे। दलाल जी से इस बीच हम जान लेते हैं कि यहाँ बात हो रही है कि जो मूंगफली का उत्पादन है, हमने देखा बातचीत में कि उसमें चुनौतियां काफी है, लेकिन अगर वैज्ञानिक विधियों को अपनाया जाए तो इन चुनौतियों से पार पाया जा सकता है। तो किसानों को दलाल जी तभी प्रोत्साहित किया जा सकता है किसी भी खेती से ज्यादा जोड़ने के लिए, अगर उसे उसमें फायदा नजर आए। तो किसानों की आय दुगनी करने की जो बात हो रही है उस दिशा में, उस नजरिए से अगर देखा जाए तो मूंगफली की जो खेती है वो कितना फायदा पहुंचा सकती है किसानों को?
2: देखिए, जैसे राधाकृष्णन साहब ने बताया कि मूंगफली तीसरे नंबर की फसल है, जो तिलहन की फसलों के अंदर हम सबसे पहले सोयाबीन लेते हैं जिसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है देश में, दूसरे नंबर पे रेप एंड मस्टर्ड आता है, तीसरे नंबर मूंगफली आता है। इसका एरिया भी कम है, प्रोडक्शन भी कम है, कंट्री एज ए होल देखते हुए मूंगफली की फसल को आपको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार मिनी किट, सीड मिनी किट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। हमने 17-18 में करीब 16.11 लाख सीड मिनी किट जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम बांटेंगे किसानों को, ताकि इन मिनी किट के अंदर हम जो है किसान को जो सबसे 10 साल से कम उम्र वाली जो नई ये होती हैं आपकी वैरायटीज होती हैं वो हम देते हैं, ताकि उनको पॉपुलराइज किया जा सके, ताकि ज़्यादा उपज देने वाली जो जो किस्में हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रोडक्शन अगर आपकी उत्पादकता बढ़ जाएगी तो उत्पादन ऑटोमेटिकली उसके जो है बढ़ जाता है। जैसे कि अब जहाँ तक उत्पादन का हिसाब है उसके अंदर उत्पादन गुजरात सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है देश में, दो नंबर पे राजस्थान आता है, लेकिन उत्पादकता के अंदर राजस्थान ज़्यादा उत्पादकता देता है, तो इसलिए हम वो ये सीड मिनी किट जो है पॉपुलराइज करने के लिए बांटते हैं। दूसरा, हम ICR के करीब 515 जो हमारे KVKs हैं उनके थ्रू फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, ताकि नई जो टेक्नोलॉजी है, नई जो बातें बताई जाती हैं काश्तकार को
1: जी,
2: वो अडॉप्ट करे और नई तकनीक के साथ अगर वो खेती करेगा तो पैदावार उसकी बढ़ती है
1: जी, बिल्कुल।
2: तो ये
1: पैदावार बढ़ेगी तो फायदा भी होगा, मुनाफा भी होगा। डॉक्टर राधाकृष्णन हमें ये बताएं कि बात सिर्फ खेती और उत्पादन बढ़ाने की नहीं है, आय भी प्राप्त करने की है ज्यादा से ज्यादा, तो मूल्य वर्धन, वैल्यू एडिशन ये भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो क्या निदेशालय की तरफ से, मूंगफली अनुसंधान निदेशालय की तरफ से इसकी भी जानकारी किसानों को दी जाती है कि वो किस तरह से वैल्यू एडिशन कर सकें?
3: वैल्यू एडिशन पर ये निदेशालय बहुत कम काम कर रहे हैं अभी। जैसे जो टेबल प्रोडक्ट्स है
1: जी,
3: लेकिन हम दूसरे जो डायरेक्शन में जो काम कर रहे हैं, जो मूल्यवर्धित वैरायटीयां डेवलप करें
1: जी,
3: जैसे जो हाई ओलिक एसिड वाला, जो ओलिक एसिड जो है जैसे ओलिव ऑयल का जो क्वालिटी है वो ओलिक एसिड से आता है, हम ऐसे किस्म में और डेवलप करने में अभी लगे हुए हैं जिसके ओलिक एसिड कंटेंट उसकी बराबर हो जो ओलिव ऑयल का
1: जी,
3: तो उसी उसमें काफी कामयाबी अभी हुआ है, वो वैरायटी अभी आ जाएगा बहुत ही कम समय में। और दूसरा है जो एक्सपोर्ट पर्पस के लिए जो वैरायटीज चाहिए
1: जी,
3: जैसे बड़े दाने का हो या यूनिफॉर्म कर्नल का हो, उसी टाइप का किस्में विकसित करने में भी हम काफी कामयाबी हुआ है, अब उसी डायरेक्शन पर हम काम कर रहे हैं।
4: किसान साथियों, जैसा कि अभी आपने सुना, हमारी सरकार भी मूंगफली की खेती को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग कार्यों में लगी हुई है, साथ ही हम अपने व्यवसाय इसको व्यवसाय के तौर पर भी कर सकते हैं और इसमें क्या सुधार लाया जा सकता है और हम क्या कर सकते हैं ये जानेंगे। उससे पहले आइए लेते हैं यहाँ पर छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को।

0: किसान साथियों, ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। तो किसान साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मूंगफली से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: अगर किस्मों की बात करते हैं तो हमारे निदेशालय से जो वैरायटीज है गिरनार 2, ये वैरायटी उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए निकाली गई है। इसी प्रकार से इसी निदेशालय से एक दूसरी वैरायटी है गिरनार 3, ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए निकाली गई है। फिर अगर गुजरात की बात करें तो जो जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ से GG20 वैरायटी है। इसके अलावा एक और अभी नई वैरायटी आई है GJG22। इस वैरायटी के अंदर जो कोलर रोट और स्टेम रोट की समस्या है तो इसमें काफ़ी सहनशीलता है इस वैरायटी में। इसके अलावा फिर अगर एक स्पेनिश जो ग्रुप है बंच ग्रुप, उसके अंदर TG37A वैरायटी है ट्रॉम्बे की, तो वो खरीफ और समर दोनों ऋतुओं में उगाया जा सकता है। फिर ऐसे ही एक और वैरायटी है GJG31, ये भी स्पेनिश ग्रुप वैरायटी है और ये भी किसानों में काफी प्रचलित हो रही है।
2: जी ठीक है डॉक्टर डे, अब आप मुझे ये बताएं और हमारे सभी किसान भाइयों बहनों को बताएं कि खाद उर्वरक को लेकर के किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किसानों को।
3: जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मूंगफली एक लिग्यूम क्रॉप है, तो ये जो लिग्यूम क्रॉप है इसमें राइजोबियम का बहुत बड़ा रोल रहता है। राइजोबियम की तरह और भी कुछ सूक्ष्म जीव है जिनका पौधे के न्यूट्रिशन के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसी तरह राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्स करता है और इसी तरह से कुछ फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं जो फॉस्फोरस की उपलब्धि को बढ़ाता है पौधे के लिए। तो हमारा यही रोल है कि हम पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन पहुँचाए। तो इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स है जैसे यूरिया है और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स है, DAP है, म्यूरेट ऑफ पोटाश है, इसके साथ साथ अगर हम पौधे को नाइट्रोजन भी उपलब्ध कराना चाहते हैं जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन है, तो इसके लिए राइजोबियम का बहुत बड़ा रोल है। तो हम लोग इस निदेशालय में कुछ जैविक खातर या बायो फर्टिलाइजर बनाया है जो पौधे को नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद करता है।
2: राइजोबियम कितनी आती है?
3: इनकी लागत बहुत कम है। एक पैकेट बायो फर्टिलाइजर की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 रुपये होती है और लागत के हिसाब से बहुत ही कम कीमत पे ये उपलब्ध होता है, लेकिन इसका जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि राइजोबियम और फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजिंग जो बैक्टीरिया है वो बायोफर्टिलाइजर के पैकेट के द्वारा या लिक्विड बायोफर्टिलाइजर के द्वारा किसानों तक पहुँचाए जिससे उनका लाभ वो ले सकें।
2: जी बिल्कुल, ये तो खाद उर्वरकों की बात हुई डॉक्टर सावलिया। अब कीड़े मकौड़े उनके रोकथाम और निदान की बात करें तो वहाँ भी लागत की बात आ जाती है। रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल से कई नुकसान होते हैं, लागत भी ज्यादा होती है, ऐसे में क्या उपाय आप सुझाएंगे किसानों को?
4: मूंगफली में जो फफूंदी रोग आते हैं ज्यादातर वो स्टेम रोट करके और कोला रोट करके आता है, उसमें उसके कंट्रोल के लिए ट्राइकोडर्मा करके एक दूसरा फफूंद आता है जो किसान का मित्र है। अगर सोने से पहले सीड को ट्रीट किया जाता है उसे और बाद में 30-35 दिन का पाक होता है जब फसल होती है तब ट्राइकोडर्मा या तो इरंडी के खल के साथ या तो जो डीकम्पोस्ट फर्टिलाइजर FIMA फर्टिलाइजर है उसके साथ मिक्स करके जब उपलब्ध मात्रा में भेज बिन पानी हो जमीन में उसी समय दिया जाए और बाद में तो उसका हम रोग की मात्रा कम कर सकते हैं और उसकी वजह से जो किसानों की आमदनी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये सब जो ट्राइकोडर्मा वो सब आता है उसकी कीमत ज्यादा नहीं है, 50 या 100 रुपए के करीब 1 kg आता है और एक दो केजी एक एकड़ के लिए पर्याप्त है।
2: बिल्कुल, तो कम कीमत में कम लागत में अच्छा उत्पादन हासिल करने के कुछ आप लोगों ने यहाँ पर विशेष सलाह दी है, उपाय सुझाए हैं। मैं किसानों के पास जाना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि आप कुछ पूछना चाहते हैं। आप लोग मूंगफली की खेती करते हैं, किसी तरह की समस्या या चुनौती आप लोग के सामने होती है तो उसका निदान, उसका हल अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर विशेषज्ञ मेहमान मौजूद है उसका हल देने के लिए। तो कौन सवाल पूछना चाहेंगे आप में से? जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं और पूछे अपना सवाल।
5: मेरा नाम नारायण जी है, मैं गांव का रहने वाला किसान हूं और वर्षा ऋतु में हमारा मुख्य पाक मूंगफली है और मैं यहाँ 4 साल से सजीव खेती कर रहा हूँ, गाय आधारित सजीव खेती करता हूँ। जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत वो हमारे खेत पे ही तैयार करते हैं और नीम का ऑयल और नीम का अर्क ऐसे वो कोई कीटनाशक आता है और जब हम मूंगफली बोते हैं पावनी में तो उसमें ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करता है। मैं कई सालों से राष्ट्रीय मगफली संशोधन केंद्र से और कृषि यूनिवर्सिटी जूनागढ़ से जुड़ा हुआ हूँ। वो ये सभी लोग है उसका मार्गदर्शन के नीचे ही मैं खेती करता हूँ और मेरे गांव के सभी किसान भाइयों को उसका मार्गदर्शन देता हूँ। परेशानी में ये हम जे पाक तैयार करते हैं, मेरे पास भी है सजीव खेती का पाक, पर अभी कोई लेने के लिए कोई ये भी उसको क्या रिसर्च करने है कि भाई ये पेस्टिसाइड के रासायनिक खातर दवा वाला नहीं है। वो मैं अनुरोध करता हूँ कि ये यहाँ और किसानों को वो परीक्षण कराए और सरकारी तौर पर उसके खरीदी करे।
2: ठीक है, राधा कृष्ण जी क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे?
6: ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से जो प्रोड्यूस आते हैं उसको पूर्ण रूप से उसका जो रिटर्न मिलना है तो उसका सर्टिफिकेशन का जरूरत है। अभी सर्टिफिकेशन का एजेंसीज तो वैसे कम है और फार्मर को इसके बारे में जानकारी का भी थोड़ा कमी है, तो सर्टिफाइंग एजेंसीज अगर बढ़ जाते हैं और इसका थोड़ा और इसका पॉपुलराइजेशन का जरूरत है। लेकिन ऑर्गेनिक खेती अभी पिकअप हो रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं आया है, उसके साथ साथ ये भी इम्प्रूव होगा, उसके लिए हम कोशिश करेंगे
2: जरूर। जी चलिए, कुछ और सवाल यहाँ पर जी।
7: मेरा नाम जंतीलाल वेकरिया है, हूँ भरवाड़ा गांव में रहवासी हूँ। मगफली उत्पादन में मेरी बड़ी समस्या है उकसुक का रोग। उकसुक का रोग आ गया बाद उसके इलाज अच्छी नहीं मिलते के उत्पादन के बहुत ज्यादा घाटी पड़ते, तो उकसुक का रोग के लिए क्या नया उपाय है ये हम जानता मांगते हैं।
4: उकसुक का रोग मुख्यतः फफूंद से आता है, उसके लिए एस्पर्जिलस नाइजर करके फफूंद है जो काली देखने में काली होती है, उसकी शुरुआत

0: चीजों से ही होती है। वो पहले से किसान भाइयों को ही ख्याल रखना पड़ेगा, जब आप पूरा हार्वेस्ट करते हो तब जो पोड जो थ्रेसर से थ्रेस करते हो उसी टाइम पोड टूट जाता है, तो वो फफूंद है वो हवा में भी रहती है और जमीन में भी रहती है, उसके बीज है वो उस टाइम अगर जो डैमेज पोड है जो भी उसका जो छिलका टूट गया उसी में वो फफूंद घुस जाती है, आपको देखने से पता नहीं चलेगा, वो आप उस वैसे बीज की आप बुआई करोगे तो वो सड़ जाएगा। दूसरा कि आप जो बीज है वो तो बारिश के समय ही सीधा मार्केट से खरीदते हो, आप गवर्नमेंट एजेंसी से या तो खुद गवर्नमेंट एजेंसी से खरीदो या खुद का बीज रखो, और खुद का बीज रखने में भी आपको तकेदारी रखनी पड़ेगी, छान के अच्छी क्वालिटी के बीज रखो और पूरा उसको पहले सूखने दो, 9% भेज से कम भेज होनी चाहिए, 9% के करीबी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भेज है और आपने गोडाउन में डाल दिया तो उसमें फफूंद आ सकती है। दूसरा, जहां आपने संग्रह किया है वो जगह में बिने भेज वाली मीन्स बिना मॉइस्चर होना नहीं चाहिए, और अच्छी तरह से उसको कीड़े भी नहीं लगना चाहिए, उसको सही तरह से रखना है और टाइम टू टाइम उसको फ्यूमिगेशन करना है, और बाद में अच्छी तरह से छीलने के टाइम अगर आप ज़्यादा भेज दे देते हो और मॉइस्चर ज़्यादा देते हो तो भी हवा में से वो लग जाता है, तो उसको कम से कम भेज दे के छिले, और अच्छे जो सोइंग के लिए सीड अलग करते हो हैंड पिकिंग करते हो तो उसमें जो भी सीड आपको डिसकलर मिले दूसरा कलर वाला भी मिले तो उसको भी निकाल दो, टूटे हुए सीड को भी निकाल दो, उसका अगर टेस्टा जो मीन्स वो लाल कलर वाला जो छाल बोलते हैं वो भी अगर थोड़ा सा भी डैमेज हो गया तो उसको निकाल दो, और अच्छे अच्छे क्वालिटी के सीड ही चुन के रखो और सेम साइज के रखो ताकि।
1: चलिए कुछ और सवाल यहाँ पे ले लेते हैं जी, पूछिए।
2: मेंदड़ा तालुका ना बरवाड़ा गाम थी हूँ, खेतूत बोल रहा हूँ। हमारा गाम ने अंदर सौराष्ट्र ने अंदर जूनागढ़ जिला ने अंदर बहुत मुंडा से जीवात आती है, तो ये पान बहुत डोडवा खाई जाए, मगफली का अंदर दाना खाई जाए, तो आने माटे हमारे क्यों संशोधन करूँ, कई दवा वापरवी, इनो इलाज छू। हमारे गई साल बहु मांडवी में मोटा नुकसान हो गया, मोटा नुकसान हो गया, कोई उत्पादन नहीं मिला, सारा पी बिगड़ गया, सारा पन खादा देवा नो रहा, तो इना माटे जानवा मांगू कि आने माटे शू करवानू,
1: क्या वजह है इसकी और क्या निदान?
0: मूंगफली में जो बता रहे वो उसमें हिंदी में गिटार बोलते है, गुजराती में मुंडा बोलते है उसको, तो वो जीवाते वो पूरे साल तक जमीन में रहती है, एक फीट से ज्यादा रहती है, उसका जो जीवन चक्र है वो पूरे साल, एक साल लगता है जीवन चक्र पूरा करने में, और जब पहली बारिश होती है तो पहली बारिश के बाद ही उसका जो पुख्त है वो जमीन से बाहर आता है, और जो खेत के अगल बगल में जो पौधे पेड़ है खेजड़ी है पीछे नीम है बेर है और दूसरा जो पेड़ है उसके ऊपर वो उसका पुख्त है, वो रात भर रहता है, चार पाँच दिन रहता है, वो उसके पौधे पत्तियाँ खाता है और वहाँ प्रजनन वो मेटिंग करने के बाद चार पाँच दिन के बाद वो अर्ली सुबह 5 से 8 बजे के बीच खेत में जाता है और 15-20 सेंटीमीटर गहराई तक वो अपने इंडे छोड़ देता है, एक एक एक एक करके कभी एक साथ देता है।
1: उपाय क्या है, क्या क्या निदान है इस समस्या का?
0: समस्या का निदान के लिए बारिश होने के बाद तुरंत 3 दिन तक खेत के अगल बगल वाले पेड़ पौधों को दवा छिड़काव करें, इमिडाक्लोप्रिड 70.5 SL करके आता है, वो 1.5 ml प्रति लीटर या तो कार्बोक्सिल वो आता है उसी का स्प्रे या मोनोक्रोटोफोस उसको आपको स्प्रे करना पड़ेगा, और शाम के समय वो लैंप जला के उसके नीचे एक बड़ा सा बर्तन रख के उसमें पानी भर के केरोसिन या मिट्टी का तेल जो कि केरोसिन बोलते हैं उसी को डाल के रखना पड़ेगा ताकि वो जो जीव है वो रात को लाइट को आकर्षित होता है और उसमें आके गिर के मर जाएगा। और सभी किसानों को ये साथ मिलकर करना पड़ेगा, एक दो करेगा तो उसका कंट्रोल नहीं है। और दूसरा उसका एक फेरोमोन आता है, वो हर 15 स्क्वायर मीटर के बीच आपको उसको लगाना है ताकि वो आकर्षित होकर वहाँ आए और उसमें उसे हम मार सकते हैं।
1: ठीक है, तो बड़े पैमाने पर जब नुकसान हो रहा है तो बेहतर है कि सभी किसान मिलके इसका उपाय करें। कुछ और सवाल इधर आप लोग जो बैठे हैं कुछ करना चाहेंगे बताएं अपने बारे में, जब आप मूंगफली की खेती करते हैं तो इससे क्या आप लोगों को लाभ होता है, क्या और सवाल पूछना चाहेंगे?
3: मेरा नाम समीर वगासिया है, हम जो मूंगफली की खेती करते हैं उसकी जो लागत आती है उसका समर्थन मूल्य हमको नहीं मिलता। अच्छा। सरकार जो योजनाएं चलाती है 52 की, उसका लाभ किसानों को कम और व्यापारी को ज्यादा मिलता है, इसका क्या कारण है?
1: ठीक है, दलाल जी, यहाँ पर आपसे जरूर मैं ये जानना चाहूंगी कि सरकार ने अभी समर्थन मूल्य बढ़ाया भी है और हमने देखा है कि दलहन को किस तरह से सरकार ने बढ़ावा दिया है, वहां पे भी समर्थन मूल्य बढ़ाने के साथ साथ बोनस भी दिया है। आपको लगता है कि इस तरह के उपाय तिलहनी फसलों की जो खेती है उसको बढ़ावा देगी?
4: जहां तक समर्थन मूल्य का सवाल है, भारत सरकार हरेक जो फसल होती है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य निकालती है। उसमें वैज्ञानिक जाते हैं और जो सीपीसी हमारी है कॉस्ट प्राइसेस वाले, वो उसका मूल्यांकन करते हैं, कीमत निकालते हैं, उसके बेसिस के ऊपर हम लोग जो एमएसपी उसकी डिटरमिन करते हैं। अभी इस बार हमने जो बोनस को मिला के 4450 रुपया इसका एमएसपी रखा है। ये आप जो बात कह रहे हैं, ये किसान कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। जब फसल ज़्यादा आ जाती है तो जो जो ट्रेडर है वो मूल्य गिरा देता है, तो उस केस के अंदर भारत सरकार ने कुछ एक एजेंसीज नेफेड और ये जो है स्टेट को भी चाहिए कि इसके अंदर ज़रा सहयोग दे और समर्थन मूल्य के ऊपर वो खरीदारी करे।
1: डॉक्टर राधाकृष्णन, बताएं हमें कुछ ऐसे उपाय जिससे किसानों को और ज्यादा प्रोत्साहित किया जा सकता है मूंगफली की खेती के लिए।
5: ये तो जहां तक प्रोक्योरमेंट और प्राइसिंग का है वो पॉलिसी इश्यूज है, और जो प्रोक्योरमेंट है स्टेट और नफेड वगैरह करते हैं कुछ काफी हद तक, लेकिन जो प्रोड्यूस ज्यादा होते हैं उस टाइम पर खास करके ये प्रॉब्लम होते हैं। और जो हाईली रेम्यूनरेटिव जो एग्रीकल्चर है उसमें एक ऑप्शन ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, कुछ हद तक गुजरात में चलते हैं। अच्छा। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एरिया में है या कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई ग्राउंडनट बनाना है, जैसे कोई इंडस्ट्री हो, चॉकलेट इंडस्ट्री हो, पीनट बटर हो, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर करे फार्मर्स के साथ, फार्मर को अच्छा रेम्यूनरेशन भी मिलेगा, वो जो जो अच्छा फसल भी आ जाएगा और जो इंडस्ट्री का नीड है वो भी फुलफिल हो जाएगा।
1: तो अगर निर्यात के लिए किसान मूंगफली का उत्पादन करना चाहे तो जाहिर है उसकी गुणवत्ता पर उसको खास ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे में किन बातों का ध्यान रखे अच्छी गुणवत्ता के लिए?
5: इसमें मैडम दो चीजें हैं, एक तो जो फील्ड में जो उगाते हैं उस टाइम, क्योंकि हमारा मेजर ट्रेड बैरियर है अफ्लाटॉक्सिन का, जो पहले बताए गए थे। अफ्लाटॉक्सिन का दो स्टेज में उसका प्रॉब्लम होता है, एक तो जब फसल उगाते हैं, दूसरा उसके बाद वो स्टोरिंग और प्रोसेस में। तो फसल उगाते हैं उसके लिए जो अच्छा एग्रीकल्चर गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वो हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, वो पॉपुलराइज भी कर रहे हैं, वो करने से इसका जो मात्रा बहुत ही कम होता है या नील भी कर सकते हैं। लेकिन इसका जो स्टोरेज है, जैसे इसका ड्राइंग है, प्रोसेसिंग है, जैसे इसका शेलिंग का वेटिंग, वेट शेलिंग, ड्राई शेलिंग, उसी चीज़ों पर इसका फर्क पड़ता है। ये एक कॉम्पोजिट चीज है जो इसको फार्मर को और खेती को अलग कर सकते हैं और इंडस्ट्री को अलग कर सकते हैं, ऐसे नहीं है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये खेती और इंडस्ट्री मिलकर करना है, इसलिए मैंने बोला अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर कोई कंपनी करते हैं तो ये दोनों चीजें साथ में ले सकते हैं।
1: जी डॉक्टर जाट, हमें बताएं आप पौध संख्या को मेंटेन रखने की बात बता रहे थे, उस जानकारी को आप पूरी कीजिए, कैसे जो किसान है वो जो पौध संख्या है उसको बरकरार रख सकते हैं?
6: जी, जैसा कि मूंगफली में तीन प्रकार की जो किस्में होती है, एक होती है फैलने वाली, दूसरी अर्थ फैलने वाली, और तीसरी होती है बंच टाइप गुच्छे वाली। तो इसमें जो फैलने वाली है उसके अंदर हमारा जो रिकमेंडेशन है कि उसके अंदर जो 60 जो स्पेसिंग है 60x10 सेंटीमीटर, तो उसके हिसाब से इसको इसमें बुआई करनी है। दूसरा है अर्ध फैलने वाली किस्में, तो उसकी 45x10 के हिसाब से बुआई करनी है, और उसकी पौध संख्या होनी चाहिए 2,64,000। और जो गुच्छे वाली है उसकी 30x10 उस हिसाब से 3,33,000 पौध संख्या पर हेक्टर में होनी चाहिए।
1: ठीक है।
6: लेकिन इस मूंगफली के अंदर एक तो क्या है कि जर्मिनेशन की समस्या है। आमतौर पे फील्ड में हम देखते हैं कि 75% से 80% ही जर्मिनेशन होता है जो बीज डालते हैं, तो उसकी वजह से जो पौध संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी होती नहीं है। दूसरा, मूंगफली के अंदर जो कॉलर रोट आता है उसकी वजह से काफी प्लांट्स मर जाते हैं, तो उसकी वजह से और भी पौध संख्या कम हो जाती है। फिर इसके अंदर मूंगफली में जो बीज की साइज है वो काफी वेरी करती है।
1: अच्छा,
6: तो उससे अगर मान लो अगर बीज की साइज छोटी है तो सीड रेट कम हो जाएगी।
1: अच्छा,
6: और अगर बीज उसी वैरायटी का जो अगर दाना बड़ा है तो उसकी सीड रेट बढ़ जाएगी। तो किसान को चाहिए कि जो सीड साइज और जर्मिनेशन परसेंटेज कितना, ये दो बात को ध्यान में रखते हुए बीज की दर निर्धारित करें।
1: अच्छा,
6: तो अगर बुआई से पहले 5-7 दिन पहले आपके बीज में से थोड़े से बीज लेके और उसको जो न्यूज़पेपर होता है उसमें डाल के थोड़ा पानी डालें और उसको आपको 48 या 60 घंटे के अंदर उसमें कितना जर्मिनेशन परसेंटेज आपको पता चल जाएगा। तो उस जर्मिनेशन के परसेंटेज के हिसाब से और सीड साइज के हिसाब से आप बीज दर का निर्धारित करके उचित जो पौध संख्या है वो खेत में रख सकते हैं। और अगर उचित पौध संख्या होगी तो उसी अनुपात में आपको उपज भी ज्यादा मिलेगी।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर जी, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है वो मूंगफली के किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि लागत की हम बात करते हैं, खाद उर्वरक डालने की बात करते हैं, तो अंधाधुंध न दे करके जिसकी जरूरत हो उतनी ही मात्रा में हम उसका इस्तेमाल करें। इस दृष्टि से अगर देखें तो मूंगफली के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या बनवाना चाहिए, कितना जरूरी है?
7: हाँ जी, बिल्कुल बनवाना चाहिए, क्योंकि सॉयल हेल्थ कार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है और ये मूंगफली एक तिलहन फसल है
1: जी।
7: और इसमें जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जो नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए राइजोबियम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है
1: जी।
7: तो जैसे जो सीरियल क्रॉप्स हैं उनकी तुलना में इसमें नाइट्रोजन की जरूरत बहुत कम पड़ती है। जनरली 25 किलो नाइट्रोजन 50 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम दें तो हम काफी मात्रा में नाइट्रोजन खाद की उसका कंजम्पशन कम कर सकते हैं। तो सॉयल हेल्थ कार्ड हमने यहाँ पे भी काफी लोगों को, फार्मर्स को ट्रेनिंग भी दिया है और हमारी संस्थान की वजह से काफी जो आसपास के गांव हैं उनके फार्मर्स को हमने सॉयल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट भी किया है गवर्नमेंट की स्कीम की वजह से। और इसमें से जो फार्मर्स हैं उनको फायदा भी हुआ है, उनको पता चल रहा है कि उनकी जो उनका जो फार्म है, उनके जो खेत हैं, उसकी फर्टिलिटी लेवल क्या है। और हमें हम ये भी बता रहे हैं कि आपको नाइट्रोजन की मात्रा कम देनी है, फास्फोरस की मात्रा कम देनी है और इतनी खाद देने से ही आपके लिए सफिशिएंट है। तो इस हिसाब से भी फार्मर्स को पता चल रहा है कि हमें कितना खाद देना है और उससे ज्यादा हम नहीं दे तो हम जो हमारी खाद की पूर्ति भी कम कर सकते हैं और हमारी काफी सेविंग भी हो सकती है। तो ये दोनों तरफ से फार्मर्स
1: ये बात लागू होती है। ठीक है राधा कृष्ण जी, ये बताएं हमें कि बीज की बात अक्सर आई है, कई तरह की समस्याओं के निदान के तौर पर देखा हमने कि बीज अच्छी गुणवत्ता का हो ये बहुत जरूरी है, तो ऐसे में आप क्या सुझाव देते हैं किसानों को, बीज कहाँ से प्राप्त करें और बीज का जब चुनाव करें तो किन बातों का ध्यान वो रखें?
5: बीज जो है जहाँ तक संभावना है, शक्यता है, आप जो स्टेट का बीज का एजेंसी से खरीदिए, एक। दूसरा, अगर एक बार आप अच्छे वैरायटी का लिया है आप उसको आगे सीड के लिए जो रखना है उसको प्योरिटी से, उसके साथ दूसरे मिलावट ना हो उस हिसाब से करिए और आगे उसको रखिए। ये जो मार्केट में जो आते हैं जो अलग अलग कंपनियों का, उस सीड का जो है हमारे पास उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, ये कहाँ से बनाया है, क्या बना है, कैसे होगा, इसके बारे में मैं पता नहीं है। तो जब आप कुछ सीड कंपनियों का भी चलता होगा उसमें अच्छा भी चलता होगा, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा जो आपके जो सीड जो सर्टिफिकेशन एजेंसी जो बीज निगम है या यूनिवर्सिटी है वहीं से खास करके सीड अपना खरीदिए ताकि आपको अच्छा सीड हमेशा मिले।
1: और किसान क्या बीज उत्पादन पर भी यहाँ पर करते हैं, गुजरात के जो किसान है
5: यहाँ करते हैं और उस पर हमने काफी तालीम भी दिया है किसानों को
1: जी।
5: हर साल हम तो 2-3 बैच को मिनिमम तो करते हैं, अच्छा सीड कैसे बनाएं और उसको कैसे स्टोर करें, इसका हम ट्रेनिंग भी देते हैं।
8: किसान साथियों, जैसा कि आपने सुना यहाँ पर ट्रेनिंग्स के माध्यम से भी किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कैसे नया बीज बनाया जा सकता है। साथ ही आपने मूंगफली से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना और इन जानकारियों का सिलसिला आगे चलता रहेगा। उससे पहले आइए लेते हैं यहाँ पर छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिली गीत को।
9: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન. આપું રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં. એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM.

0: जान करे एक ये प्रश्न है।
1: ठीक है, तो कौन जवाब देना चाहेंगे आप में से?
2: वो किसान जानना चाहता है कि जो अफ्लाटॉक्सिन का प्रॉब्लम है, वो अफ्लाटॉक्सिन क्या है, वो कैसे आती है, कब आती है और उसको मैनेज कैसे करना है। मैं तो बताना चाहता हूँ किसान भाइयों कि अफ्लाटॉक्सिन एक एस्परजिलस फ्लेवस करके एक फफूंद आती है, उसकी वजह से लगता है। वो फफूंद जब लगता लग जाती है तो बीज में वो एक जहर बना देती है और जो खाने के लिए उसके लग जाने के बाद खाने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि उससे कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो वो न आए इसीलिए आपको पहले से ही जो आप खरपतवार करते हैं या तो इंटरकल्चरिंग करते हैं, तभी से किसानों को ख्याल रखना पड़ेगा कि जो पॉड है, मीन्स मूंगफली का जो पॉड है, उसको डैमेज नहीं होना चाहिए। वो जमीन में से भी आ सकती है और हवा में से भी वो फफूंद आ सकती है, तो पॉड डैमेज नहीं होना चाहिए। हार्वेस्टिंग के टाइम भी पॉड डैमेज नहीं होना चाहिए, अगर डैमेज हुआ तो उसको तुरंत ही अलग करके मार्केट में बेच देना है। और फफूंद हार्वेस्टिंग के बाद,
1: आपका कहना है कि जो दाने हैं मूंगफली हाँ, के उसमें किसी तरह का नुकसान उसे नहीं होना चाहिए।
2: देखने तो से देखने से आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें फफूंद लग गया है।
1: अच्छा,
2: बाहर से कुछ पता नहीं चलेगा लेकिन अंदर वो जब लग जाता है तो वो अपने आप ही वो पॉइजन शुरू कर देता है।
1: ठीक,
2: तो उसको आने ही नहीं देना। या तो जब आप स्टोर करो, तो पहले से मैंने बता दिया था कि जो 9% से कम नमी होनी चाहिए तभी आप उसको स्टोर कर सकते, तब तक आपको फील्ड में उसको सुखाना है और सुखाने के टाइम जो गोडाउन है उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, वो सब ख्याल रखना है। और बीज
1: बचाव ही जो है वो बेहतर उपाय है। चलिए कुछ और सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। कि एक सवाल आप भी पूछना चाहते हैं?
3: हाँ, मगफली ने खेती में हमने मगफली पाकते समय सफेद फूग आती है, उसका क्या कारण होता है ने उसका क्या इलाज है?
2: जो पाकने के समय आप बता रहे, वो पाकने के समय जब मूंगफली में ड्रॉट पानी की कमी आ जाती है और वो उसकी फफूंद है वो जमीन में ही रहती है या तो बीज से आती है, जो ड्रॉट ड्राई स्पेल मार देता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो ये जो फफूंद है वो ऑक्सीजन लविंग, उसको अगर टेम्परेचर ज़्यादा मिला और ज़्यादा ऑक्सीजन मिला तो वो बढ़ सकती है, क्योंकि किसान हमारे यहाँ सौराष्ट्र के किसान ज़्यादातर इंटरकल्चरिंग करते हैं और मैंने देखा है कि कभी कभी तो 62 डेज तक इंटरकल्चरिंग करते हैं। तो मेरा एक सुझाव है कि 50 दिन के बाद मूंगफली में इंटरकल्चरिंग न करें तो अच्छा है। और जब ड्राई स्पेल आता है तो फैला के पानी दे दे, और जैसे जमीन दबी रहेगी वैसे कम आएगी, और सोइंग के बाद आप उसे प्लेंकर चला के जमीन को दबा दे।
1: ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर जाट से मैं जानना चाहूंगी, जैसे बातचीत में बात आ रही है कि जो मूंगफली है उसमें उचित नमी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, ऐसे में सिंचाई को लेकर हमें जरूर बताएं किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या अंतराल होना चाहिए, या फिर जल की जैसी उपलब्धता है इन क्षेत्रों में जहां पर मूंगफली की खेती होती है, ऐसे में सिंचाई की कौन सी विधि सबसे ज्यादा बेहतरीन होती है?
4: जी, वैसे तो मूंगफली एक सूखा सहन करने वाली फसल है, लेकिन फिर भी ज़्यादा उत्पादन देने के लिए हमें कुछ ऐसी फसल अवस्थाएं हैं उस समय पे पानी की कमी नहीं आनी चाहिए।
1: जी,
4: तो शुरू में तो जैसे फसल की बुआई है उस समय पर्याप्त नमी होनी चाहिए ताकि उसका जो अंकुरण अच्छे से हो और हमें पौध संख्या सही मात्रा में मिले।
1: जी,
4: फिर उसके बाद में से फूल बनते हैं, फिर सुइयां बनते समय, फली बनते समय और दाना बनते समय, ये ऐसी अवस्थाएं हैं जब जमीन के अंदर जो मॉइस्चर है नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए जिससे कि हमें ज्यादा उपज मिले। फिर जैसे इसमें ड्राई स्पेल जब बीच में सूखा आ जाता है तो स्प्रिंकलर इरिगेशन के माध्यम से हम अगर इसमें इरिगेशन देते हैं तो कम पानी में हम ज्यादा क्षेत्रफल के अंदर इरिगेशन कर सकते हैं।
1: जी जी, बिल्कुल। चलिए यहाँ पे कुछ और सवाल ले लेते हैं किसान भाइयों से, कुछ और पूछना चाहेंगे आप सवाल? जी, आपने बताया था आपके पास और भी सवाल है, तो बता पूछिए अपना दूसरा सवाल।
0: जी, आपने अगली बात थी थोड़ी बार पहला कि तेल अपने आयात करव पड़े से बाहर थी, અને અહીંયા મગફળીનો એરિયો ઘટતો જાય છે, એની પાછળના કારણો એવા કંઈક મને દેખાય છે કે ખાતર અને જંતુનાશક દવા બધું બહુ મોંઘું મળે છે, તો એના માટે સરકારને બે સોલ્યુશન કરવાની જરૂર છે, એક તો જે ગમે એ દુકાન માંડીને બેસી જાય, ગમે એ પ્રોડક્ટ લઈને બેસી જાય છે એ બંધ કરાવવું જોઈએ, અને જે એગ્રીકલ્ચરની અંદર ભણેલા વિદ્યાર્થીઓ જે અત્યારે એમનેમ રખડે છે, બેકાર બેઠા છે, એને એને લાયસન્સ આપી અને વ્યવસ્થિત દવાઓ પેસ્ટિસાઇડ જે મળે છે માર્કેટમાં, જે ખાતરો મળે છે એ બોગસ કંપનીના ન હોવા જોઈએ, એવું બધું સરકારે થોડુંક ધ્યાન રાખવું જરૂરી દેખાય છે મને।
2: इनका सवाल था कि जो हमारे गवर्नमेंट बता रहे, सभी एजेंसियां बता रहे कि हमारा

0: उत्पादन कम हो रहा है,
1: हाँ,
0: लागत
1: हाँ,
0: ज्यादा लग रही है,
1: हाँ,
0: तो उसकी वजह एक है कि जो जिसके पास नॉलेज नहीं है एग्रीकल्चर का, वो लोग दुकान मांड के मींस को शॉप खड़ा करके पेस्टिसाइड बेचते हैं, दवाइयां बेचते हैं, और किसानों को कोई मिलती जुलती दवाइयां दे रहे हैं,
1: ठीक है,
0: तो उसकी वजह से जो किसानों को लागत ज्यादा आ जाती है। तो उसका सुझाव है कि गवर्नमेंट कोई ऐसा सुझाव लगाए कि जो बीएससी एजी है वो जिसको नॉलेज है उसी को लाइसेंस मिले।
1: तो इन्होंने जो सवाल पूछा है डॉक्टर राधाकृष्णन, उसका क्या जवाब देना चाहेंगे आप?
2: ये जो एग्रीकल्चर इनपुट जो है खास करके केमिकल्स, वो जो है इसका एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इसमें कई अच्छे कंपनियां भी है, नए कंपनियां भी है, जो लेस पॉपुलर कंपनियां भी है। अब इसमें जो फार्मर को ये जो मिलते हैं ज्यादातर ये खरीदी होते हैं जो इनपुट ट्रेड डीलर जो बोलते हैं उसके बेसिस पर है
1: जी।
2: अभी उसमें दो चीजें हैं, एक तो इनपुट डीलर जानबूझ के भी कर सकते हैं या दूसरा उनका अनजान होने के वजह से भी। तो अभी उसके लिए काफी प्रोग्राम चल रहे हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी में इनपुट डीलर्स के लिए डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू किया है जो छुट्टी के दिन चलते हैं, जो इसके पूरा जानकारी देते हैं। इसके अलावा अभी अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं जो इनपुट डीलर्स को इसको ट्रेनिंग देने के लिए। लेकिन ये जो खरीदी है इसमें एक और चीज भी है, किसान का जो क्रेडिट है उसे रिलेटेड भी है, तो
1: अच्छा।
2: उसमें भी इनको जो कुछ प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो ट्रेडर जो बोलते हैं वो उसको खरीदना पड़ते हैं कई लोगों को। लेकिन इसमें अवेयरनेस क्रिएट करने का काफी श्रम चल रहे हैं, और दूसरा इसमें कुछ पॉलिसी चेंज भी जहां तक मैं जानता हूं वो सरकार लाने वाला है
1: जी। बिल्कुल, तो सरकारी प्रयासों के बारे में हमें जरूर यहाँ पे दलाल जी बताएं, और साथ ही जो राष्ट्रीय तिलहन मिशन है सरकार का, ये जो बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, इसके तहत किसानों को किस तरह की सहायता, आर्थिक सहायता दी जाती है, इसके बारे में भी हमें बताएं।
3: भारत में नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम शुरू किया गया, NMOP शुरू किया गया 14-15 में, उससे पहले 13-14 का तिलन का रिकॉर्ड प्रोडक्शन रहा है, जिसके अंदर हम लोगों ने किसानों की मदद से 32.75 मिलियन टन तिलन फसलों की प्रोडक्शन हमारी हुई, जो कि एक रिकॉर्ड है। उसके बाद जैसा कि राधाकृष्णन साहब ने बताया था कि ये एक क्योंकि एक शुष्क एक कृषि के अंदर उगाने वाली फसल है, तो ये बहुत ज़्यादा उस पर बारिश पे डिपेंडेंट रहती है
1: जी।
3: 13-14 के बाद 14-15, 15-16 में बारिश कम रही और टाइम से नहीं आई, इसकी वजह से इसका एरिया घट गया, जो कि 28 मिलियन टन हेक्टर से वो गिर के 25-26 के करीब आ गया। उधर प्रोडक्टिविटी भी गिर गई क्योंकि सूखा पड़ा, तो प्रोडक्टिविटी जो उत्पादकता है वो कम हुई, जो कि 1168 से गिर के ये 968 आ गई, जिसकी वजह से प्रोडक्शन हमारा कट के 25.25 मिलियन टन रहा
1: जी।
3: इसको रिकवर करने के लिए अभी 16-17 में हमारा फिर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, जबकि हमारी उम्मीद है कि 32.10 मिलियन टन प्रोडक्शन होने की संभावना है
1: जी।
3: एरिया हालांकि उतना ही है 26, लेकिन प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ गई है जो कि 1225 किलो पर हेक्टर हो गई है, इसकी वजह से थोड़ा सा हमारे जो तिलन की फसलों में उत्पादन है वो थोड़ा बड़ा है
1: जी।
3: इसके अलावा जो किसानों को मदद देने के लिए हम सरकार ने डेमोस्ट्रेशन जो है जो हमने चलाए हुए हैं इनपुट से लेके, क्योंकि जैसा कि अभी सभी और विशेषज्ञ बता रहे थे, सीड एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है
1: जी, जी।
3: किसी भी फसल के लिए, तो एक अच्छी किस्म की फसल का बीज होना बहुत जरूरी है, तो इसकी वितरण पे और इसकी प्रोडक्शन के ऊपर ये हमारे इस NMOP प्रोग्राम के अंडर हम इसके अंदर असिस्टेंस देते हैं, सीड एजेंसीज को बढ़ावा देते हैं ताकि अच्छी किस्म की फसलों का बीज चेन के अंदर आ सके और किसानों को उपलब्ध हो सके
1: जी।
3: इनपुट के अंदर हम और इनको प्लांट प्रोटेक्शन की जो दवाइयां हैं, जैसा कि अभी कितने किसान पूछ रहे थे
1: जी, जी।
3: कि उनकी फसल के अंदर बीमारी लगती है, उसको उसका समाधान के लिए हम इसके लिए उसको अनुसंधान अनुदान देते हैं। इसके अलावा मैकेनाइजेशन के लिए
1: अच्छा।
3: हम लोग इरिगेशन के लिए पावर जो स्प्रे वगैरह पंप हैं उसके लिए भी अनुदान दिया जाता है इन
1: ठीक है, यानी कि कई रूप में जो सरकार है वो मदद पहुंचाती है किसानों तक, ताकि वो जो मूंगफली की खेती या अन्य तिलहनी फसलों की खेती की तरफ उनका रुझान बढ़े।
4: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपू रोज करहूं वाते खेती ना बारा मा अने समय ना मारा मा एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने मूंगफली से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। किसान साथियों, अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांट्याभील 90.8 FM के साथ, छावा की आवाज। खेत से मेरा लगाव, खेती से मेरा उत्थान, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति के साथ रोज जो उठता बैठता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, खेत से मेरा लगाव, खेती से मेरा उत्थान, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्या भील, रोज हांजे 6-8 वागे, आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका किसान भाइयों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांट्या भील 90.8 FM, छावा की आवाज, खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टांट्या भील 90.8 FM छावा की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, रेडियो टांट्या भील 90.8 की ऐप के माध्यम से भी आप खेती बाड़ी कार्यक्रम को सुन सकते हैं, साथ ही आप आपके सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर है 9425413603 पर।
5: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्या भील, रोज हांजे 6-8 वागे, आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
4: किसान साथियों, जैसा कि खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम हर रोज एक नए विषय पर आपको जानकारी देते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक लेकर आते हैं, और साथ ही हम हमारे जो किसान हमसे जो हैं आग्रह करते हैं उस पर हम कोशिश करते हैं कि उनके जो समस्याएं हैं उन पर हम ज्यादा से ज्यादा काम करें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने हमारे किसान ने कड़कनाथ के ऊपर हमें कुछ जानकारियों के लिए हमें आग्रह किया था, इसीलिए आज के इस प्रोग्राम में हम कड़कनाथ से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे।
5: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्या भील, रोज हांजे 6-8 वागे, आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
4: एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका आपके अपने कार्यक्रम खेती बाड़ी में। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टांट्या भील 90.8 FM झाबवा की आवाज खेती संबंधी बहुत सी जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है, आज भी हम बात करने वाले हैं खेती संबंधी और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को। तो आज हम आपसे मिलवाते हैं झाबवा ब्लॉक के कलीपुरा गाँव के रीता मेड़ा से, जो कि अपने गांव में अपने एक छोटे से घर में उन्होंने कड़कनाथ पालन की शुरुआत की और आजीविका को चलाने के लिए कड़कनाथ पालन शुरू किया। अभी उनके पास 300 से अधिक कड़कनाथ मुर्गियां हैं और अभी वो मुर्गियों के अंडों को बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमाती है। आपको मिलवाते हैं रीता जी से, उससे पहले आइए सुनते हैं ये सुंदर सा प्यारा सा भीली गीत।
5: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्या भील, रोज हांजे 6-8 वागे, आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे
4: સાંભળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલ નો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM.

0: ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है किसान भाइयों। अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना, आइए सुनते हैं अब रीता जी से, जो कि झावा ब्लॉक के अंतरवेला के पास स्थित कलीपुरा गांव की रहने वाली है। उन्होंने अपनी आजीविका को सशक्त बनाने के लिए कड़कनाथ पालन की शुरुआत की और अभी उनके पास 300 से अधिक कड़कनाथ है। और आइए जानते हैं कैसे वो उन मुर्गियों का देखभाल करती है, उनके लिए क्या खाना पानी देती है और क्या उनके लिए कौन कौन सी सावधानियाँ वो बरतती है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जबानी।
1: नाम क्या
2: है? रीता।
1: अच्छा अच्छा, ये कड़कनाथ आप पालती हैं?
2: हाँ।
1: कैसे पाले जाते हैं?
2: मैं इसको सुबह में पानी देती हूँ।
1: हाँ।
2: और खाना देती हूँ।
1: हाँ।
2: और चावल भी बना के देती हूँ इसको।
1: अच्छा अच्छा, इसको कहाँ से भी इनके वो आए थे बच्चे?
2: बच्चे झाबुआ से आए।
1: झाबुआ से? कितने बच्चे आपने पाले थे शुरुआत?
2: मैंने शुरुआत में तो 50 पाले।
1: अब कितने हो गए उनके?
2: अब तो उनके हो गए, ये तो बहुत सारे हो गए, गिन नहीं पाते ये। अच्छा। बड़े बड़े तो
1: कहाँ पे बेचते हैं इसको?
2: ये इधर टेम्पल लेने आया था।
1: अच्छा, कितने का जाता है?
2: 18,000 का तो ले गए थे वो।
1: अच्छा अच्छा,
2: 18,000।
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी वर्तमान सरकार हमारी सहूलियत के लिए अनेकों योजनाएं हमारे लिए लेकर आती रहती है और इसकी अधिकतर जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र से मिलती है। हाँ जी, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसान इन योजनाओं का लाभ ले सकता है। योजनाओं को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, उससे पहले आइए सुनते हैं इस छोटी सी रिपोर्ट को।
3: खेती से जुड़ी नई नई जानकारियों को किसानों तक पहुंचाने में कृषि विज्ञान केंद्र एक सेतु की भूमिका निभाते हैं। देश भर में करीब 721 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो किसानों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। खेती में उत्पादन व उत्पादकता बढ़े, साथ ही आगे आने वाले कल में खेती के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़े, ये बहुत जरूरी है। अन्यथा भविष्य में जो चुनौतियाँ आएंगी उससे निपटना मुश्किल होगा। इन समस्याओं के समाधान में केवीके अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं।
4: जैसे कि ये कहा जाता है कि पूरे भारत में भी हर एक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, तो हमारे जो जिला है उधम सिंह नगर उत्तराखंड, उसका कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ काशीपुर में स्थित है। जहाँ तक इनके उद्देश्यों की बात है, उसके उद्देश्य ये होते हैं कि जो भी तकनीकी जो शोध संस्थान द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा, ICAR के द्वारा जो विकसित की जाती है, उनको किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। इसके लिए हम कई तरीके अपनाते हैं। हम अपने यहाँ किसानों के प्रक्षेत्र पर भी और कृषि विज्ञान केंद्र पर भी ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि उनको प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है उनका आयोजन करते हैं। यहाँ पर उनको ये बताया जाता है कि कृषि में जो नए नए अभिनव प्रयास हो रहे हैं वो आपके लिए कैसे फायदेमंद हैं। इसके अतिरिक्त हम कृषकों के प्रक्षेत्र पर जाकर प्रथम पंक्ति प्रदर्शन का आयोजन करते हैं। उनको ये बताया जाता है कि जो भी नवीनतम तकनीकी है वो कैसे आपके लिए फायदेमंद है, उन्हें हम वहाँ हम करके दिखाते हैं। हम इसमें कुछ कृषकों का चयन करते हैं और उन्हें करके बताते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक कि कैसे बुआई करनी है और कैसे इसकी कटाई करनी है और कैसी ये तकनीक जो है उनके लिए फायदेमंद है। इसके अलावा हम प्रयास करते हैं कि जो हमारे प्रक्षेत्र पर जो भी हमारे पास लगभग 20 हेक्टेयर का फॉर्म है, इस फॉर्म पे हम लोग उन्नतशील प्रजातियों के जैसे गेहूं के, धान के, सब्जियों के और लेग्यूम्स के, दलहनी फसलों के, तिलहनी फसलों के बीज बनाते हैं और हम उनको उचित रेट पर किसानों को उपलब्ध कराते हैं। और इसके अतिरिक्त जो भी ये उन्नतशील हमारे पास सब्जियों की पौध होती है या उन्नतशील फल पौध होती है हमारी, वो भी हम किसानों को समय के अनुसार और उनकी ऐसे एज पर देयर नीड्स।

0: जिनको हम किसानों को हम देते हैं। इसके लिए हमारे पास कई तरह से किसान भी आते हैं जो डिमांड भी करते हैं कि सर हमको फलानी वैरायटी का ये बीज चाहिए, तो वो हम बीज को हम अपने बनाकर किसानों को देते हैं। इस तरह से हम अपने जो उद्देश्य हैं उसको हम कार्य कर रहे हैं।
1: केवीके ने अपने आयामों में समय के साथ इजाफा किया है। आज किसान केवीके से न सिर्फ खेती के आधुनिक तरीके सीख रहे हैं बल्कि उन्नत बीजों का क्रय भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, केवीके अब किसानों को पौध भी उपलब्ध करा रहा है, क्योंकि केवीके का लक्ष्य है कृषि में समृद्ध दायरे को बढ़ाना।
2: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमरता रेजो टांटिया भीलनो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, आइए शुरू करते हैं कड़कनाथ पालन को लेकर कुछ और विशेषज्ञों की राय। कैसे कड़कनाथ पालन हम कर सकते हैं, कहां से हमें लेना चाहिए, और कड़कनाथ पालन में हमें कितना खर्चा लगता है, और कड़कनाथ पालन के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, कड़कनाथ पालन कैसे कर सकते हैं, उनमें क्या खाना हमें देना चाहिए, क्या दवाई हमें उन्हें देना चाहिए, और कैसे रखना चाहिए कड़कनाथ मुर्गी का ख्याल, जानेंगे इन सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को।
3: ये आवाज है झाबुआ की, और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM।
2: आपनू रेडियो, आपड़ी बातें।
4: खेती के साथ पशुपालन हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक है। कृषि से मिलने वाले फसल अवशेषों का इस्तेमाल पशु आहार के रूप में किया जा सकता है। वहीं पशुओं से मिलने वाले अवशिष्ट का प्रयोग जैविक खाद के रूप में। यही वजह है कि किसान खेती के साथ साथ गाय, भैंस, बकरी या फिर मुर्गी पालन करके दोहरा लाभ कमा रहे हैं। खेती के साथ कड़कनाथ पालन कैसे किया जाए, आइए जानते हैं। काले पंखों से ढका, खूबसूरत काली आंखें और काले पंजों वाला ये मुर्गा कड़कनाथ, शोध में पाया गया है कि इसके सेवन से इंसान का शरीर मजबूत होता है, इसीलिए इसका नाम कड़कनाथ रखा गया है। इसके गुणों के कारण ही इसकी मांग साल भर बाजार में बनी रहती है। क्या है कड़कनाथ की खूबियां, आइए जानते हैं। कड़कनाथ में वसा की मात्रा सिर्फ 2.9% होती है। इसके 100 ग्राम मीट पे कोलेस्ट्रॉल महज 59 मिलीग्राम होता है। प्रोटीन की मात्रा 20-24% होती है। कड़कनाथ में लौह तत्व, कैल्शियम, विटामिन बी और विटामिन सी भी पाया जाता है। इसकी प्रतिरोधक क्षमता सामान्य मुर्गे की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। इसके अंडे और मांस सामान्य मुर्गे की तुलना में ज्यादा दाम पर जाते हैं। कड़कनाथ की खूबियों से प्रभावित होकर दिल्ली के एक युवा किसान राजा सिंह ने इसका पालन शुरू किया। राजा सिंह ने दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक फार्म हाउस बनाया है, जिसका नाम है RB ऑर्गेनिक फार्म। इस फार्म में राजा सिंह मौसमी सब्जियों के साथ कड़कनाथ मुर्गी पालन भी करते हैं, जिसमें कड़कनाथ को जैविक आहार देकर पाला जाता है।
5: इस काम को पूरा ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं। कड़कनाथ पालना हम बच्चे से लेके बड़े तक शुरू पालते हैं। एक बार कड़कनाथ के बच्चे को बड़ा होने में पूरे 5.5 से 6 महीने लगते हैं, तो 5.5 से 6 महीने में सारा गेम होता है आपका मुनाफा कमाने का, कॉस्ट कंट्रोल करने का। हम लोग कॉस्ट कैसे कंट्रोल करते हैं, जब जैसे बच्चा जब बड़ा होता है और जैसे ही पता लगता है कि मुर्गा मुर्गी कौन है, तो हम मुर्गी को अलग कर देते हैं, और मुर्गी को अलग करके हम पूरा हरे चारे पे ले आते हैं, उसको पूरा ग्रीन वेजिटेबल्स देते हैं जो भी हम अपने फार्म पे ऑर्गेनिकली उगाते हैं, जैसे ब्रोकली के पत्ते, मूली के पत्ते, पालक। पालक तो इनके लिए एक तरह से संजीवनी बूटी का काम करते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन होते हैं, विटामिन ई। और दूसरी चीज़, हम मुर्गों को खुला छोड़ देते हैं जिससे वो धूप में घूमते हैं, उनको विटामिन डी भी मिलता है जिससे ये सारे गुण इनके मीट में जाते हैं जिससे इनका मीट और गुणवाड़ी बनता है। प्लस हम लोग जो मुर्गियां होती है, मुर्गियों को भी अगर आपने हमारा शेड देखा होगा तो शेड को बाहर से भी ओपन बनाया हुआ है ताकि मुर्गियां बाहर निकल सके दिन में और धूप सेक सके और बाहर हरी सब्जियां खा सके, खुले में खा सके, और ये सारे गुण इनके अंडे में जाते हैं जिससे अंडा भी हेल्दी होता है।
4: कृषि के साथ साथ कड़कनाथ मुर्गी पालन कर रहे, खेती में हर तरह की सब्जियां लगी है। कड़कनाथ में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। कड़कनाथ की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। करीब 3 साल से कड़कनाथ पालन कर रहे हैं। परिवार का हर सदस्य इस काम को आसानी से कर सकता है। कड़कनाथ को आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां देते हैं। ये सब्जियां जैविक तरीके से उगाई जाती हैं। जैविक आहार देने से इनका विकास अच्छा होता है। इनके आवास का भी रखते हैं खास ख्याल। शेड ऐसा होना चाहिए जिसमें खुला क्षेत्र भी शामिल हो।
5: कड़कनाथ फार्मिंग में एक चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है, जब भी आप शेड बनाओ तो उसमें कोई कंजूसी ना करें, अंदर से उसमें पक्का फर्श डलवाएं और कंक्रीट का और ईंटों का अच्छा मजबूत शेड बनाएं, क्योंकि ये आपका लॉन्ग टर्म चलेगा। कम से कम ऐसा शेड बनाएं जो 10 से 20 साल चले आपका। प्लस शेड के साथ अपने फार्म में ओपन एरिया जरूर रखें जहां आपके बड़े बच्चे बड़े होते रहेंगे, उसके साथ ही साथ आप हरी सब्जियां उगाते रहे ताकि जैसे ही वो बच्चे बड़े हो आप उनको ये हरी सब्जियां 2 महीने के बाद हरी सब्जियां देना शुरू करें जिससे आपकी फीड की कॉस्ट कम आ जाए। साथ ही साथ आप अजोला भी कर सकते हैं। अजोला में प्योर प्रोटीन और विटामिन होते हैं जो मुर्गे बहुत ही चाव से खाते हैं और इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, इनकी सेहत बनती है और इससे आपकी फिर से फीड की कॉस्ट कम आती है। तो जितनी फीड की कम कॉस्ट आएगी उतना ही आपका मुनाफा होगा, उतनी कम आपके ऊपर सरदर्दी रहेगी इनको बेचने की और फीड का खर्चा उठाने की।
4: राजा सिंह मानते हैं कि खेती या पशुपालन का काम शुरू करने से पहले प्रशिक्षण जरूर लेना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान हर छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है जिससे जोखिम कम होता है। करीब 3 साल से कड़कनाथ पालन कर रहे हैं राजा सिंह। अब खुद भी लोगों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं जिससे युवा नौकरी के लिए परेशान ना होकर खुद का व्यवसाय शुरू कर सके।
5: युवाओं से तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं पूरा डेडिकेशन के स्टार्ट करिए। खासकर जब ब्रूडिंग प्रोसेस होता है 21 दिन का कड़कनाथ को पालने का, उसमें पूरा ध्यान देना पड़ता है। 100% बच्चों का देखरेख करनी पड़ती है, वो कैसे इकट्ठा तो नहीं हो रहे कहीं एक जगह पे, क्या हरकतें कर रहे, ऑब्जर्व करनी पड़ती है। तो मेनली यही होता है, उसके बाद पूरा 6 महीने आपको पूरा ध्यान देना पड़ता है अगर करें 100% करें।
4: राजा सिंह ने खेती के साथ कड़कनाथ पालन करके लागत को न्यूनतम कर लिया है। इस तरह सही जानकारी लेकर किया गया काम सफलता की राह पर ले जाता है।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM।
2: आप लो रेडियो आपड़ी बातें। किसान साथियों आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। मुर्गी पालन से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिली गीत को।

0: है उसमें काफी उनके पास अभी काफी मात्रा में मुर्गी मुर्गियां है, और पोइट्री फार्म का गांव के अंदर होने की वजह से लोगों में ज्यादा पता नहीं था इस बारे में, लोगों को थोड़ी सी समस्या होती थी वहां तक पहुंचने में। तो अभी उन्होंने अपने पोइट्री फार्म को रोड के एकदम करीब अपना खुटाया, स्कूल के जस्ट पास में उन्होंने अपनी नया घर उन्होंने बनाया है, और साथ में एक छोटा सा पोइट्री फार्म भी रखा है जहां पर उनकी एक छोटी सी दुकान है और वो वहां पर अंडे और मुर्गियां दोनों वहां पर बेचते हैं। दोस्तों आप अपना अंतरवेलिया से भगोर वाले रास्ते पे अगर आप जा रहे हैं तो आप जरूर इनके अपने कड़कनाथ फार्म पे विजिट कर सकते हैं, इनसे इन कड़कनाथ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को ले भी सकते हैं। और अगर आपको अधिक मात्रा में या कम मात्रा में अगर आपको कड़कनाथ लेना चाहते हैं तो आप अरविंद भाई से संपर्क भी कर सकते हैं, हम इनका नंबर आपको दे देंगे। और आप भी खुद उस रास्ते से निकल रहे हैं तो आप उन कहीं पे पास की किसी भी दुकान से पूछ के अरविंद भाई के यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, कड़कनाथ पालन में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब जानकारियों को जानेंगे। उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिली गीत को। ले लो।

0: आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम। आपड़ू रेडियो आपड़ी बातें। ब्रेक के बाद पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आइए जानते हैं अरविंद भाई से कड़कनाथ पालन में हमें किन किन चीजों को लेकर सचेत होना चाहिए, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, आइए सुनते हैं उन्हीं की जबानी।
1: तो आपको इस ये बिजनेस आप कर रहे हो, आपको क्या ऐसा क्या क्या चीजें हैं जो आपको मतलब ऐसा लगा कि हमको मतलब किसानों को सचेत रहना चाहिए इस चीज को करने से पहले, क्या क्या चीजें जरूरी होती है ये पालने के लिए और क्या क्या किन किन चीजों की आवश्यकता होती है कि हम इसको अच्छे से पाले और अच्छे स्तर पे इसको ले जा सके।
0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम। आपड़ू रेडियो आपड़ी बातें।
2: देखो मेरा ये सुझाव है कि जैसे 100 मुर्गे पाले पहले, अभी 100 मुर्गे पालने से अपने को अनुभव हो जाएगा
1: बिल्कुल
2: कि अपने को फायदा कितना हो रहा, घाटा कितना हो रहा,
1: बिल्कुल
2: कितने बिक रहे हैं
1: बिल्कुल,
2: है ना,
1: बिल्कुल
2: और कितना खा रहे हैं,
1: कितना खा रहे हैं,
2: वो सब अनुमान लग जाएगा।
1: हाँ।
2: तो उसके पहले अपने को ये फॉर्म बनाना पड़ेगा,
1: फार्म बनाना पड़ेगा
2: उसको
1: बिल्कुल,
2: और थोड़ा ऊंचाई में रहना है चाहिए वो।
1: अच्छा, ऊंचाई में होना चाहिए
2: कम से कम 13-14 फीट।
1: बिल्कुल।
2: उससे क्या है कि गर्मी नहीं लगेगी उसको।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और फिर उसके पहले बनने के बाद फिर ये लकड़ी का भूसा रहता ना,
1: छुरी को
2: डाल देने के नीचे
1: बिल्कुल,
2: और इसके बाद लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी
1: बिल्कुल, इनको लाइट की जरूरत रहती है,
2: लाइट बहुत गर्मी उसको चाहिए।
1: अच्छा, गर्मी ज्यादा चाहिए।
2: हाँ। और ठंडक में गर्मी और गर्मी में ठंडक होनी चाहिए, है ना, इस बात का ध्यान रखना
1: है। वातानुकूलित उनके हिसाब से रखने की जरूरत पड़ती है, ठीक है।
2: और क्या है कि इनको मतलब ज्यादा हवा में नहीं छोड़ने का।
1: अच्छा,
2: क्या है कि वायरस आ जाए,
1: वायरस आने के डर,
2: और जो बाहर जो फार्म है वहाँ पे मतलब बाहरी व्यक्ति को भी अंदर नहीं जाने देने का।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
2: क्या है इससे अगर आए तो वो क्या है, ये जो दरवाजा है ना, दरवाजे के पास में चूना लगा के रखना चाहिए।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
2: तो चूने से क्या है कि वो सारे जो कीटाणु रहते हैं ना,
1: अच्छा अच्छा,
2: चप्पल से है,
1: अच्छा सारे से,
2: वो उसको ऊर्जा के कारण वो नीचे गिर जाते हैं।
1: अच्छा।
2: और चूने में गिर जाते हैं, मर जाएंगे,
1: मर जाएंगे। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने अरविंद भाई हमको कि किस तरीके से हमें चूना सामने रख के किस तरीके से इनका बचाव कर।
2: और अपन एक ये भी बात है कि जैसे लाइट,
1: अच्छा लाइट,
2: लाइट को मतलब लगातार जलाना चाहिए उसको।
1: बिल्कुल, लगातार उसको जलाते रहना।
2: हाँ, जैसे गर्मी में वो वाले बल्ब ले आओ।
1: बिल्कुल,
2: वो छोटे वाले।
1: हाँ।
0: किसान भाइयों, अरविंद भाई ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बताया, कैसे हमें उन्हें खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, कौन कौन सी दवाएं उन्हें देनी चाहिए, साथ ही हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे एक नए आदमी को फॉर्म में जाने से पहले हमें चूने का प्रयोग करना चाहिए और किस प्रकार से लाइट का उपयोग होना चाहिए, कैसा वातावरण कड़कनाथ मुर्गियों के लिए अनुकूलित होता है, साथ ही अन्य जानकारियों को भी हमने जाना।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम।
0: आपड़ू रेडियो आपड़ी बातें। किसान साथियों, आप सुन रहे थे कड़कनाथ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को, कैसे हमें सचेत रहना चाहिए, हमें किस समय पर किन किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आदि जानकारियों को आपने जाना। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आइए सुनते हैं एक सुंदर सा प्यारा सा भीली गीत।

0: ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसान साथियों आपका। आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम रेडियो टांट्याबिल 90.8 एफएम के साथ। किसान भाइयों, आप सुन रहे थे अरविंद भाई की कलीपुरा के सफल किसान की दास्तां। आइए सुनते हैं एक और सफल किसान की दास्तां।
1: अच्छा। मुनाफा कितना हुआ?
2: मुर्गी पालन का व्यवसाय मैंने इसलिए अपनाया, जैसे आप देख सकते हैं, आप हमारे ये पास ये जमीन है मेरे दादाजी के लिए हुई, तो दादाजी को मुर्गी पालन का बहुत शौक था। पर जब दादाजी मुर्गियां लेके आते थे उनकी मृत्यु हो जाती थी किसी कारणवश, तो मैंने देखा कि हम लोग पढ़े लिखे क्यों ना इनको बचाया जाए, तो मैंने पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स किया। तब पता लगा हम क्या गलतियां कर रहे हैं और फिर वहां से शुरू किया। तो जब मैंने उसी कोर्स के दौरान मैंने कड़कनाथ ब्रीड के बारे में पढ़ा, तो ये बड़ी नई ब्रीड लगी, बड़ी एक्साइटिंग ब्रीड लगी। सो हम लोग जाके फिर शुरुआत में 5 मुर्गियां 2 मुर्गियां लेके आए और एक छोटे से कमरे पालना शुरू किया, और करते करते वो 40 हो गई, और उनको देख के लोग डिमांड करने लगे, तो डिमांड करते करते इसको एज अ व्यवसाय कर लिया एंड हम लोग मुनाफा कमाने लगे।
3: बड़े पैमाने पर मुर्गी उत्पादों का निर्यात करता है। 2020-21 के दौरान ही 2.5 लाख टन से ऊपर के उत्पाद दूसरे देशों को भेजे गए। इससे 435 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की आमदनी हुई। अगर आप भी खेती के साथ अतिरिक्त आमदनी चाहते हैं, तो मुर्गी पालन आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। मुर्गी पालन न सिर्फ आसान है, बल्कि इसे शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं होती।
4: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांट्या व्हील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।
3: मुर्गी पालन के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ती और ये जल्दी ही आमदनी भी देनी शुरू कर देता है, साथ ही लाभ भी अच्छा है और लगातार आमदनी होती रहती है। इस व्यवसाय के लिए जगह भी बहुत कम चाहिए। अगर प्रशिक्षण लेकर काम शुरू करेंगे तो नुकसान की संभावना कम रहेगी। हमारे देश में खुले आसमान के नीचे भी मुर्गी पालन का रिवाज है, लेकिन इस विधि में अंडा उत्पादन कम और पक्षियों के बीमार पड़ने की आशंका ज्यादा रहती है, इसलिए बेहतर है कि इन्हें आवास में ही पाला जाए। मुर्गी पालन के लिए आपको हैचरी से 1 दिन का चूजा लेना होगा और 20 हफ्तों तक उसे पालना होगा। उसके बाद मुर्गियां अंडे देना शुरू कर देती हैं और करीब 70 हफ्तों तक अंडे देती रहती हैं। आप चाहें तो बिछावन के ऊपर भी चूजों को रख सकते हैं और चाहें तो पिंजरों में भी पाल सकते हैं। संगठित क्षेत्र में बड़े किसान 10,000 तक मुर्गियां पालते हैं, जबकि अगर आप छोटे स्तर पर काम करना चाहते हैं तो 1,000 चूजों से भी शुरू कर सकते हैं। अच्छे मुनाफे के लिए 4 किस्में प्रमुख हैं। इनके नाम हैं बैबकॉक, हाईलाइन, बोवंस और लोमैन। बैबकॉक की 80-85% किस्में भारत में पाई जाती हैं।
5: ने एक मुर्गी से एक हैचिंग पीरियड बोलता है, लेइंग पीरियड बोलता है, उसी लेइंग पीरियड में कम से कम 200-250 अंडा निकाल सकते हैं। अगर 200-250 अंडा एक मुर्गी निकालते हैं तो हमने ये देखा गया है जो 200 मुर्गी से कम सालाना 4 लाख से 5 लाख रुपया उनकी किसान की आमदनी होती है। तो अगर 4 लाख से 5 लाख रुपया साल में आमदनी होती है तो लगभग आप देख लीजिए उनसे कितना महीने में कितना अंडा आ रहा है, और ये जो आमदनी होती है ये रोज का आमदनी है।
3: कौन सी किस्म आपको चुननी है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस उद्देश्य से मुर्गी पालन कर रहे हैं। अंडा उत्पादन के लिए अलग किस्में चुननी होंगी और मांस उत्पादन के लिए अलग। अंडे देने वाली मुर्गी 20 हफ्ते में ही आमदनी देना शुरू कर देती है। 20 हफ्तों तक करीब 200 रुपए प्रति मुर्गी की लागत आएगी। इसके बाद करीब 2.5 रुपए हर रोज का खर्च एक मुर्गी पर करना होगा। आप घर पर दाना तैयार करके लागत 20% तक घटा सकते हैं।
2: देखा जाए तो अभी हम बहुत अच्छे मुनाफे में है। हमारे पास जो अभी हम जैसे हमारा साइकिल कैसे चलती है वो है कि हम बच्चे पालते हैं, बच्चे में से जो मुर्गियां होती है मुर्गी हम रखते हैं अंडे की प्रोडक्शन के लिए और मुर्गा बेच देते हैं। मुर्गा तो जल्दी निकल जाता है, तो हम क्या करते हैं लोगों को हम इसी बहाने इकोनॉमी बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों से मुर्गियां खरीदते हमारी खुद की रहती मुर्गियां खरीदते और हर महीने मुर्गा बेच देते, तो हम

0: हर महीने पूरे हिंदुस्तान से कम 200 से 500 मुर्गे मंगा के बेचते रहते हैं पूरी दिल्ली एनसीआर में। तो ऐसे हमारा मुनाफा भी बढ़ता रहता है, हमारी मुर्गी की प्रोडक्शन भी चलती रहती है और दूसरे किसान भाइयों की भी हम मदद कर देते हैं।
1: सर्दियों में अंडे की खपत ज्यादा होती है और इसकी कीमत भी बढ़ जाती है, इसलिए चूजे ऐसे समय पर खरीदें जिससे सर्दियों के दौरान आपको ज्यादा से ज्यादा अंडे मिल सकें।
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
3: किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी प्रकृति में हमेशा से बदलाव आते रहे हैं। मौसम के उतार चढ़ाव के कारण फसलों में और जीव जंतुओं में भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं कैसे हम भिन्न भिन्न परिस्थितियों में बदलते वातावरण में कैसे हम हमारे पशुओं को, हमारे चूजों को वातानुकूलित रख सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखकर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं।
1: मुर्गी पालन के लिए आपको चूजे हैचरी से लेने होंगे, वहां से सिर्फ एक दिन के चूजे दिए जाते हैं। 6 हफ्तों तक इन्हें अलग आवास में रखेंगे, ये आवास चारों तरफ से बंद हो ताकि बाहर की हवा अंदर न जाने पाए। 6 हफ्ते बाद ग्रोअर स्टेज शुरू हो जाएगी। अब चूजों को दूसरे आवास में ले जाएंगे। याद रहे कि हर मुर्गी को 1 से 1.5 वर्ग फुट की जगह चाहिए, यानी अगर आप 1000 मुर्गियां पाल रहे हैं तो 1000 से 1500 वर्ग फुट के आवास की जरूरत पड़ेगी। सर्दियों में खिड़कियों को बोरों से ढक कर रखना होगा और अंदर का तापमान बढ़ाने के लिए उपाय करने होंगे, जबकि गर्मियों में उन्हें अधिक तापमान से बचाने के लिए पंखे या कूलर का इंतजाम करना होगा। गर्मियों में दाने की खपत काफी कम हो जाती है, उसे बढ़ाने के लिए सुबह 4 बजे या 5 बजे से ही दाना खिलाना शुरू कर दें। उसके बाद 1-2 बजे तक दाना न दें। गर्मियों में पानी ज्यादा पिलाएं। बरसात के मौसम में खिड़की के बाहर प्लास्टिक की शीट लगा दें ताकि बारिश का पानी अंदर न जाने पाए। आवास में लकड़ी के बुरादे या धान की भूसी की बिछावन करनी होगी। ध्यान रहे, बिछावन को गीला होने पर तुरंत बाहर निकाल दें। गीला बिछावन मुर्गियों के साथ साथ इंसानों के लिए भी नुकसानदेह है। अंडों के लिए आवास में बक्से जरूर रखें। हर 10 अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए 1 बक्से की जरूरत होगी। मुर्गी इसी में जाकर अंडा देगी। मुर्गी की 3 स्टेज होती है, चूजे, ग्रोअर स्टेज और परिपक्व मुर्गी। तीनों के लिए अलग अलग तरह के दाने की जरूरत होती है। अंडे देने वाली मुर्गियों के दाने में कम से कम 17% प्रोटीन और 27 से 28% कैलोरी होनी चाहिए, साथ ही 3 से 4% कैल्शियम भी हो, वरना अंडों के छिलके बहुत पतले रह जाएंगे।
4: जो भी किसान भाई मुर्गी को पालेंगे उसको बायोसिक्योरिटी बोलते हैं, हाइजीन मेंटेन करके पाले। और मुर्गी के लिए सारे टीका उपलब्ध है, सारे के सारे मुर्गी को सब टीका लगा सकते हैं और वो सरकारी में भी उपलब्ध है और बाहर से भी खरीद सकते हैं। वो खरीद के सारे टीका लगा लीजिए। मान लीजिए आपकी छोटे उम्र से

0: इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है।
1: मुर्गियों में आमतौर पर रानीखेत, ब्रुसेल्स संक्रामक रोग और मेरेक्स जैसी बीमारियां लग सकती हैं। कभी कभी फाउल पॉक्स भी लग जाती है। आजकल रेबिल इन्फ्लुएंजा की भी शिकायत मिलने लगी है। सभी बीमारियों के लिए टीके उपलब्ध हैं। ये टीके 2-3 बार लगाने होंगे। टीके सही वक्त पर लगवाएंगे तो बीमारी का खतरा नहीं होगा। वैसे हैचरी से मेरेक्स और रानीखेत का टीका लगाकर ही आता है। हाँ, कुछ हैचरी सिर्फ मेरेक्स का ही टीका लगाकर देती हैं। ऐसी स्थिति में रानीखेत का टीका 2-3 दिन बाद आपको अपने फार्म पर लगवाना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि एक अंडे पर 50 पैसे से 1 रुपए तक का फायदा मिलता है। इस हिसाब से 1000 मुर्गियों से हर महीने 20,000 रुपए तक कमाए जा सकते हैं। हाँ, आपको मार्केटिंग अच्छे से करनी होगी। के पालकों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत मुर्गी पालकों को लोन भी दिया जा रहा है। इसके अलावा भी कई और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन चला रही है। इसमें कुक्कुट पालन के लिए भी कई घटक शामिल किए गए हैं। खासकर ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास और नवाचार कुक्कुट उत्पादकता परियोजनाएं चल रही हैं। इन परियोजनाओं के जरिए मुर्गी का आवास, आहार, दवाई और जरूरी यंत्र उपलब्ध कराने में सरकार मदद कर रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार पशुधन स्वास्थ्य और व्याधि नियंत्रण के अंतर्गत राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इसके अंतर्गत अलग अलग बीमारियों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। इस काम के लिए जिला प्रयोगशालाओं को उन्नत बनाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
3: आपनू रेडियो, आपड़ी बातें। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, आज आपने मुर्गी पालन को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। मुर्गी पालन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मुर्गियों में कौन कौन सी बीमारियां आती है, साथ ही हमें मुर्गियों को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कैसे उनका ध्यान रखना चाहिए, साथ ही हमें कौन कौन से टीके लगाने चाहिए, समय समय पर क्या खाना पानी देना चाहिए, महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। किसान साथियों, अगर आप कड़कनाथ मुर्गी लेना चाहते हैं या कड़कनाथ मुर्गियों के अंडे लेना चाहते हैं तो आप कल्लीपुरा के अरविंद जी से संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर है 8770939905। किसान साथियों, आप उन्हें कॉल करके या फिर उनके घर जाकर भी उनसे संपर्क कर सकते हैं।
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
3: आपनू रेडियो, आपड़ी बातें।
4: दोस्तों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। बने रहिए रेडियो टांटिया फील 90.8 FM के साथ।
5: तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी।
6: आइए दोस्तों, एक बिल्कुल ही नए सीजन के साथ मैं समीर और नितिन हाजिर हैं आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा प्रोग्राम अब नोटिस किया जा रहा है, पहचाना जा रहा है। कई प्रोडक्शन हाउसेज हमें अप्रोच कर रहे हैं हमारे टैलेंट्स की गायकी को सुनकर। ये बहुत ही अच्छा मौका है आगे बढ़ने का, ग्रो करने का और प्रोफेशनल सिंगर्स बनने का। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को आप सबके ही कोलैबोरेशन से। आइए दोस्तों, एक और नए कलाकार से आपको आज मिलवाते हैं, एक और नया टैलेंट, एक और नए गायक आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं माधव जी। बाकी माधव जी खुद बताएंगे। माधव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय दीजिए ना।
7: बहुत बहुत नमस्कार समीर जी। सुनने वालों, मेरा आपको प्यार भरा नमस्कार। समीर जी, मैं जैसे कि समीर जी ने कहा, मैं माधव हूँ। मैं मुंबई में रहता हूँ

0: और वैसे तो मैं कॉमर्स ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट हूँ। अपने भारत की एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी ऑफ इंडिया में एज ए मैनेजर पोस्ट में कार्यरत हूँ फिलहाल। गाना मेरा पैशन है, हालांकि मैंने कोई क्लासिकल सिंगिंग का कुछ ये नहीं किया है मैंने अभ्यास, लेकिन बचपन से ही गाता आया हूँ। थोड़ा बहुत पिताजी का थोड़ा वरदान था, वो अच्छा गाते थे, तो शायद उनके जीन्स मेरे में आए होंगे। तो थोड़ा बहुत उन कोशिश करता हूँ अच्छे गाने की, सीखने की अभी भी। समीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे।
1: माधव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम आपसे आज बात कर पा रहे हैं और अब हम आपके गीत भी सुनेंगे। बहुत बढ़िया।
0: श्योर, थैंक यू सो मच।
1: तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को और लीजिए माधव जी की ही आवाज में ये प्यारा सा गीत।

0: बहुत प्यारा स्टार्ट माधव जी। चलिए आपके बचपन में चलते हैं। आप बचपन में क्या बनना चाहते थे?
1: वैसे तो स्कूल में तो खेल कूद में गए, कॉलेज में थोड़ा बहुत ये था सोच कि मैं कुछ लॉयर या एडवोकेट ऐसा बनूं। कोशिश भी वैसी रही, मैंने लॉ ग्रेजुएशन भी किया लेकिन वो काम करते करते किया इसके लिए, तभी तो मैं हो नहीं पाया लॉयर एज अ ग्रेजुएट। और भी करूंगा तो मुझे हमारी जो अभी फिलहाल की नौकरी वो छोड़नी पड़ेगी। तो मेरा तो यही पैशन है कि अगर मैं यहाँ से ये नौकरी से अलविदा कहूँ तो मैं ज़रूर लॉयर बनना चाहूँगा आगे भी। तो ये मेरी दिली ख्वाहिश थी एडवोकेट या लॉयर बनूं, तो देखते हैं कैसा बनता है।
0: बहुत बढ़िया दोस्तों, आपने सुना माधव जी की क्या इच्छा थी, वो आज क्यों हैं। आगे बढ़ते हुए एक इसी तरीके का खूबसूरत सा गीत सुनते हैं।

0: माधव जी, क्या आपके जहन में, क्या आपके सोच में कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई ऐसा प्रश्न है जो शायद आप चाह रहे हों कि मैं आपसे पूछ लूं और आप उसका कुछ उत्तर दें? ऐसा कोई सवाल है आपके जहन में?
1: ऐसे तो नहीं, आप पूछते जाइए। वैसे एक सवाल तो था जहन में कि आप मुझे जरूर पूछेंगे कि आपका पैशन क्या है।
0: ओके
1: और नेचुरली आपने ये अभी मुझे इस मौका इतना अच्छा दिया है, तो मेरा पैशन तो ऑलवेज फर्स्ट, म्यूजिक फर्स्ट, तो गाना ही जीवन है इस तरह से। एक मैं गाने को अभी फिलहाल तो एक स्ट्रेस बस्टर लेता हूँ कि जैसे ही गाने की शुरुआत करता हूँ या गाना गाने शुरू करता हूँ, जो भी कुछ मेरे विचार या ख्यालात है पूरा भूल जाता हूँ, अपनी दुनिया में मस्त रहता हूँ। तो इट्स अ स्ट्रेस बस्टर फॉर मी। और तो गाना ही फिलहाल एक बहुत बड़ा एक म्यूजिक पैशन है, और एक संगीत की शिक्षा के जैसा मैं लेता हूँ उसको। हर बार कुछ अच्छा करने की चाह रखता हूँ।
0: अमेजिंग अमेजिंग, बिल्कुल ठीक कहा। अपना पैशन अपने साथ में रखना भी एक बहुत बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है।
1: जी जी समीर जी,
0: तो चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं और स्ट्रेस को बर्स करते हुए एक प्यारा सा गीत सुनते हैं माधव जी की आवाज में।
1: यस या

0: बचपन में चलते हैं। आपका जब आप स्कूल में थे तो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, प्रिय विषय कौन सा था?
1: भाषा भाषा में भी अंग्रेजी और मेरी मातृभाषा मराठी है, लेकिन ज्यादा मैं अंग्रेजी में मेरी काफी अच्छी रुचि थी। बल्कि मैं कहूँ कि मुझे 100% कई बार अंग्रेजी में मार्क्स भी मिले, तो लगाव तो था ही भाषा में। तो अंग्रेजी और पढ़ने का बहुत शौक था, अलग अलग किताबें। बचपन में ज्यादा रुचि में भाषा में लेता था, साहित्य में।
0: अमेजिंग, बहुत खूबसूरत। तो भाषा की आपने, मैं मानता हूं, बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी। कोई फेवरेट बुक है
1: हाँ,
0: आपकी, भाषा इंग्लिश में या हिंदी में, कोई भी फेवरेट बुक?
1: अंग्रेजी में तो विंग्स ऑफ फायर अपने, और मराठी में बहुत सारी है। हमारे मराठी में बहुत ही महान साहित्यकार पु ल देशपांडे है, बप्पू
0: जी
1: काले जी है, तो उनकी किताबें, आचार्य अत्रे जी है उनकी किताबें, या स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी की किताबें, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद, पढ़ना चाहता हूँ मैं बहुत। और अभी भी कलेक्शन है, कभी भी उठा के फिर से एक बार दो तीन बार पढ़ेगा तो भी चलता ही रहता है वो पढ़ना।
0: ग्रेट। मैं जानबूझ के ये सवाल इसलिए पूछना चाहता हूं कि हम सब लोगों के जहन में ये
1: हाँ जी
0: बात
1: हाँ
0: आए
1: जी
0: कि किताबें कितनी जरूरी होती हैं हमारे लिए। तो
1: सही कहा।
0: चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुनते हैं।

0: माधव जी आप संगीतकार हैं, जाहिर सी बात है क्रिएटिव हैं, नाजुक हैं, भावुक हैं।
1: आपने आपने कुछ ज्यादा ही मेरे बारे में बता दिया। इतना कुछ नाजुक भावुक लेकिन
0: ऑलराइट क्योंकि संगीतकार जो होते हैं, जो गायक होते हैं वो भावुक होते हैं, इसलिए
1: सही कहा आपने। आप सही यानी बराबर नस पकड़ रहे हो मेरी। इसके लिए हाँ, 5 साल में अभी ऐसा है ना कि आगे का जो विश्व आने वाला है 5 साल में, तो वो अभी हम बहुत बार सुनते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, तो हमें ऐसे ही अपडेट होना रहेगा। संगीत में भी काफी सारे बदलाव आ रहे हैं, पुराना संगीत और अभी का संगीत कितना बहुत अंतर है उसमें। खास करके लब्स या बोल रहते हैं संगीत अपने अभी के गाने में और पुराने गानों में, तो आप पुराने गानों में जो भाषा थी, जो बोल लिखे जाते थे, गाना उसके लिए बनता था, ना कि अभी सिर्फ संगीत के लिए, म्यूजिक के लिए गाना हिट हो जाता है। तो अगले 5 साल में संगीत के विषय में कहूंगा तो हमें अपडेट रहना चाहिए संगीत में भी, और नए नए जो कुछ भी आते हैं संगीत प्रकार है या कला के विषय में भी कोई नया आता है, तो बिल्कुल 5 सालों में हमें विश्व में या हमें खुद बढ़ना है आगे, तो वी शुड बी अपडेटेड एंड टू द पेस विथ ऑल ऑफ दिस।
0: अमेजिंग, बिल्कुल ठीक। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।
2: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

0: माधव जी, अगर आप अपने बारे में एक बुक लिखें, किताब लिखें, तो उसका शीर्षक क्या रखेंगे आप?
1: किताब
0: ऑटोबायोग्राफी।
1: चलिए, गाता रहे मेरा दिल।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: नहीं, मुझे सही मानो में ना बॉलीवुड के गानों में बहुत रुचि रहती है, खास करके 60s 70s के गाने में। तो मैं सिर्फ गाने नहीं, गाने के पीछे की जो स्टोरियां, कहानियां, कैसे बन रहे गाने, उनके संगीतकार क्या है, उनके गीतकार कौन है। अभी होता क्या है, हम पर्दे पे सिर्फ वो एक्टर एक्ट्रेस को देखते हैं, उनको ही हम जानते हैं, लेकिन गाने के पीछे जो केमिस्ट्री बनती है, मुझे ज्यादा उसमें रुचि रहती है। तो वो बुक्स भी बहुत सारे मैं पढ़ता हूँ, तो मैं जरूर अगर मैं मौका मिले तो वही लिखना चाहूंगा, गानों के विषय में, वो भी बॉलीवुड गाने में। और यही गाता रहे मेरा दिल, तो वो अच्छा शीर्षक रहेगा उसका।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया
1: सवाल था, थैंक यू।
0: तो आज शायद हमने माधव जी के जहन में, उनके पर्सनालिटी में, उनकी शख्सियत में एक नया आइडिया शायद डाल दिया। अब वो हो सकता है गहराई से सोचने लग जाए कि एक किताब लिख ही डाली जाए अब।
1: समीर जी,
0: बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एक प्यारा सा गीत।

0: माधव भाई, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है और वो रंग आपके बारे में क्या कहता है?
1: समीर जी, पसंदीदा रंग सफेद। सफेद यानी एकदम फ्रेश वाइट। सफेद रंग इसलिए पसंद है कि एकदम वो शांत लगता है, उसे देख के एकदम अच्छा लगता है। और ट्रांसपेरेंसी जो मैं भी पसंद करता हूँ, सफेद कलर एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है। अपना भी हम मैं भी ऐसे ही खुले विचार का हूँ, ट्रांसपेरेंट हूँ, कोई भी अंदर बाहर कुछ नहीं रहता है। इस हिसाब से मुझे वो सफेद रंग पसंद है। और दूसरा, सफेद रंग की खासियत ऐसी है कि वो किस कौन से भी रंग में घुल जाता है। सफेद रंग तो वैसे भी मैं भी यानी वो ऐसे सभी में घुल मिल जाने की मैं भी ऐसे ही एक भावना इच्छा रखता हूँ। तो सफेद रंग काफी नजदीक है मेरे लिए।
0: बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक, उसका डिस्क्रिप्शन भी बिल्कुल उचित है माधव भाई। तो चलिए
1: यस, थैंक यू।
0: एक प्यारा सा गीत सुनते हैं माधव भाई की ही आवाज में।

0: माधव भाई, अगर
1: जी
0: आपको मौका मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि कोई हिस्टोरिकल फिगर, किसी हिस्टोरिकल फिगर के साथ आपको बैठ के कुछ बातचीत करने का मौका मिल जाए, चाय कॉफी पीने का मौका मिल जाए, तो आप किसको चुनेंगे?
1: ओ हिस्टोरिकल। अच्छा,
0: जी,
1: अभी के नहीं, फिलहाल के नहीं।
0: हिस्टोरिकल।
1: ओके, हिस्टोरिकल नहीं तो अभी के आप बोलते तो मैं सीधा मोदी जी बोलता
0: चलिए,
1: था।
0: वो भी पता
1: अभी
0: चल गया अपने आप को।
1: नहीं नहीं हिस्टोरिकल आप तो यस स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी, बहुत प्रेरित हूँ उनके विचारों से।
0: जी
1: महान योद्धा और महान स्वतंत्रता सेनानी, तो उनके साथ यानी वो तो कुछ भी नहीं मैं उनके सामने,
0: जी
1: लेकिन उनके साथ कॉफी नहीं, सिर्फ उनके चरणों में बैठ के उनको ही देखना और उनकी उनको सुनना ही पसंद करूंगा मैं तो।
0: क्या बात है,
1: यस
0: बहुत खूब,
1: यस
0: बहुत
1: यस
0: खूब।
1: थैंक यू।
0: मैंने जानबूझ के माधव भाई जोर डाला कि हिस्टोरिकल फिगर के बारे में, क्योंकि हिस्ट्री से कई बार हम लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन दरअसल उससे हमें बहुत कुछ सीखना होता है कि उन्होंने कुछ गलतियां की होंगी,
1: सही सही
0: कुछ अच्छा किया होगा, तो उससे हम आगे बढ़कर सीख लें और उसको हम अपने जीवन में उतारें, तो शायद हम आगे की जिंदगी को, आगे की दुनिया को अच्छा कर पाएंगे।
1: सही बात है, मेरी सही कहा आपने।
0: बहुत सुंदर। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: माधव भाई, अब हम हमारे प्रोग्राम की उस जगह आ गए हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए कुछ मैसेज दीजिए, कुछ संदेश दीजिए उनको।
1: मैं क्या इतना संदेश देने, मैं इतना कोई ये नहीं हूँ। हम सभी की तरह दोस्तों, सुनने वालों, आप जैसा ही एक गायक बनने की कोशिश में गा रहा हूँ। हाँ, एक जरूर कहना कहूँगा कि आप तानसेन बनने हो, यानी बन चुके हो या कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसके पहले कानसेन बनो, यानी आप अच्छी तरह गाने सुनो। जितना आप अच्छा गाना सुनोगे उतना अच्छा आप उसको डिलीवर कर सकोगे या गा सकोगे। तो हमेशा अच्छी तरह गाने सुनो, अच्छा संगीत सुनो, पढ़ना, हाँ, और दूसरा संगीत के साथ साथ पढ़ने का भी रखो। आजकल बहुत ही कम हो गया है पढ़ना हमारे जीवन में। हम सुनना जितना ज्यादा चाहते उतना पढ़ने की कोशिश बहुत कम करते हैं। तो साथ साथ अच्छा साहित्य पढ़ो भी। और समीर जी, आपके बारे में कहना चाहूंगा कि आपकी आवाज उसमें एक डेप्थ और मिठास, क्या बात है। तो बहुत मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिर्फ आवाज में गहराई ही नहीं है, एक मिठास भरी आवाज है आपकी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आया सुन के। मैंने अभी अभी कहा भी था ना कि एप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को चाहिए होती है।
1: नहीं, मैं झूठ मूठ की तारीफ नहीं कर रहा हूं। आप यानी आपकी आवाज में एक गहराई है, एक बहुत अच्छा ठहराव और गहराई पूर्ण आवाज है, उसमें मिठास भी है। कोई कोई आवाज सिर्फ गहराई में यानी ऐसा ही नहीं, उसमें एक अपनापन है, ऐसा भी है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल इस चीज का ख्याल रखूंगा कि जो भी गिफ्ट मेरे को ईश्वर ने दी है, मेरे माता पिता ने दी है, उसका सही इस्तेमाल ही हो, मेरा वादा है आपसे।
1: यस सर, थैंक यू श्रोताओं, धन्यवाद। समीर जी बहुत बहुत धन्यवाद,
0: थैंक यू सो मच।
2: तो दोस्तों, ना तो सुनना भूलिएगा और ना ही पार्टिसिपेट करना, क्योंकि अब हमारा प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में तब्दील होने वाला है, जहां से कितने ही टैलेंट्स प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाने वाले हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। बने रहिए हमारे साथ, मैं समीर और मेरे दोस्त नितिन के साथ।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें। आइए दोस्तों, एक और बहुत ही खूबसूरत सा एपिसोड आज के कलाकार का लेकर हम हाजिर हैं। आज जो टैलेंट हमारे साथ हैं, जो प्रतिभा हमारे साथ हैं, जो सिंगर हमारे साथ हैं, वो हैं शिव शंकर सर। बाकी हम शिव शंकर सर से ही पूछेंगे कि वो कहाँ हैं, क्या करते हैं। तो शिव शंकर सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हमारे सुनने वालों से बात कीजिए, उनको अपने बारे में ये बताइए कि आप कहाँ हैं और क्या करते हैं अभी।
1: थैंक यू जी। हम आई एम वेरी प्राउड टू बी इन द इंटरव्यू विद एसएन रेडियो। हम बेस हैं चेन्नई में, हमारा मातृभाषा है तमिल, लेकिन हम हिंदी सॉन्ग्स पसंद करते हैं। हम यहाँ अभी अपना बिजनेस है यहाँ, और वो जो फिल्टर्स वगैरह बनाते हैं और इंडिया इंडस्ट्रीज को सप्लाई करते हैं हम। हमारा अपना एक ग्रुप है यहाँ, हम लोग पुराने गाने, वो गोल्डन पीरियड का गाने बहुत गाते हैं। हमको हमारा फेवरेट गायक है मोहम्मद रफी, ऑफकोर्स हम किशोर का भी गाना गाते हैं। हम जो आपको भेजे हैं गाना, उसमें सब किशोर और रफी साहब का, दोनों सबका गाना है। हमने ये एक गाना गाए हैं, वो है आदि बर्मन का फर्स्ट फिल्म, वो है तीसरी मंजिल। वो शमी कपूर और आशा परेख का था, वो गाना था तुमने मुझे देखा। सो ये बहुत बढ़िया गाना है, हमको भी बहुत पसंद है।
0: राइट सर। तो दोस्तों, आपने जाना कि शिव शंकर सर कहाँ हैं, वो क्या करते हैं। तो अब सर मुझे बताइए कि हम लोग कौन सा सॉन्ग हमारे सुनने वालों को सुनाएं, जो अभी आप बता रहे थे वही वाला सॉन्ग क्या जो आपने गाया, जो आपने गाया हो
1: तुमने मुझे देखा।
0: ये कौन सी फिल्म का सॉन्ग है सर?
1: तीसरी मंजिल, और आर डी बर्मन का फर्स्ट डेब्यू म्यूजिक डायरेक्शन है वो।
0: ओके।
1: और आशा परेख और शमी कपूर का
0: फिल्म आया,
1: हीरो हीरोइन से।
0: करेक्ट। सो और दूसरा कौन सा सॉन्ग सर आपका रिकॉर्ड किया हुआ हम सुनवाएंगे अपने दोस्तों को?
1: और दूसरा है एक किशोर का बहुत पॉपुलर गाना है, ए दिल न होता बेचारा। देखिए, ये जुअल थीफ का गाया हुआ, किशोर का गाया हुआ एक बहुत बढ़िया गीत है। इसमें एक छोटा सा स्टोरी है, इसका ऑफकोर्स म्यूजिक डायरेक्टर एस डी बर्मन थे। इसमें एक देवानंद और तनुजा थी, और इसमें एक सीन था, ये जो ए दिल न होता बेचारा का, वो एस डी बर्मन को वो ट्यून ठीक से नहीं मिल रहा था, और बहुत झंझट में देखे कैसा ट्यून चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा मैंने वो जो टीजिंग ऐसा टाइप ऑफ सॉन्ग है। तो आर डी बर्मन और एस डी बर्मन एक दिन वो एक पिक्चर देखने गए थे, अंग्रेजी फिल्म ए ब्रिज ऑन द रिवर क्वाय। वो उसमें एक मार्च पास्ट का एक विजिल सॉन्ग था, विजिल नहीं करते हैं लेकिन हम ऐसे गा के बताते हैं, ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला। तो ये पिक्चर देख के दोनों बाप और लड़का दोनों वापस आ रहे थे, तो उस समय आर डी बर्मन ने ये सीटी बजा के यही ट्यून बजाते थे, और जीवर में बोला लड़का हमको ट्यून मिल गया, इसी से ए दिल न होता बेचारा वो गाना बनाए थे।
0: वाओ, ओके।
1: तो ये गाना भी गाए हैं, ये बहुत बहुत सुंदर सीन है वो, टीजिंग, इट इज तनुजा तो उसमें।
0: तो दूसरा सॉन्ग जो हम सुनवाएंगे वो है ये दिल ना होता बेचारा।
1: यस,
0: राइट सर?
1: राइट।
0: ओके। आइए दोस्तों लीजिए सुनते हैं ये दो प्यारे प्यारे गीत जो शिव सर ने हमारे लिए रिकॉर्ड किए। आइए लुत्फ उठाते हैं इन गीतों का।

0: बहुत खूब, अमेजिंगली ब्यूटिफुल। सर, आपने अभी बातचीत में मुझे ये बताया कि आपका जो संगीत का सफर शुरू हुआ जब आपने म्यूजिक को प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो ये कौन से साल की बात होगी? व्हेन एग्जैक्टली डिड यू स्टार्ट?
1: आई स्टार्टेड इन 13 साल पहले, तो कितना होता है वो
0: 13 साल मतलब 2012 हो गया ना अप्रोक्सीमेटली सर?
1: 60 साल से हम चालू किए थे। हम बताए थे आपको कि हमारा 60th बर्थडे में ही हमारा पहला माइक लेके गाना चालू हुआ, और उस समय हमारा पहला गाना था सफर का, जीवन से भरी तेरी आंखें।
0: ओके,
1: हमारा बीबीपी बगल में थी, लेकिन उसको वो हिंदी नहीं जानती है, तो इसलिए उसको कुछ पता नहीं लगा क्या हो रहा है। लेकिन ये गाना हमने इसमें नहीं डाला है, जो 10 सॉन्ग्स में वो नहीं है, हम ऐसे ही बता रहे हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिस करते करते हम लोग तो वैसे ही चल रहा है अभी तक।
0: ब्यूटीफुल। तो अगले कौन से दो गाने हम अपने दोस्तों को सुनवाएंगे शिव सर, हमें बताइए ना।
1: अच्छा देखिए, हम लोग पूरा वो हम बताए थे ना गोल्डन पीरियड का गाना, लेकिन हमको एक गाना बहुत पसंद था शाहरुख खान की, हमारा जो अपना रूल को ब्रेक करके हम ये गाना भी डाला है,
0: राइट,
1: वो खल हो ना हो। वो गाना तो सोनू निगम ने गाया है, हमको बहुत पसंद था, हम कोशिश करके ये गाना भी डालेंगे।
0: वाओ,
1: आप इसके बाद वैरायटी के लिए ये तीसरा गाना आप डाल सकते हैं।
0: और चौथा गाना कौन सा होगा सर?
1: चौथा गाना होगा, हमको बहुत पसंद है ये गाना, ये मदन मोहन का कंपोजिशन है, चिराग फिल्म से, सुनील दत्त और आशा परेख, तेरी आंखों के सिवा, रफी साहब ने गाया है, बहुत बढ़िया गीत है वो हमको बहुत पसंद है, हम तो बहुत बार गाए हैं परफॉर्मेंस में ये, तो ये गाना हम डाले हैं, छोटा गाना,
0: ब्यूटीफुल,
1: बजा सकते हैं। या
0: आइए दोस्तों, शिव सर की ही पसंद, शिव सर की ही गायकी, सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत दो गीत और फिर शिव सर के पास वापस आते हैं।

0: बहुत सुंदर, अमेजिंगली ब्यूटिफुल। शिव सर, अभी पीछे आपने बताया कि आपको मोहम्मद रफी साहब और किशोर कुमार साहब दोनों ही पसंद, लेकिन उनकी आवाज के टेक्सचर में जो फर्क है वो भी आप बहुत अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। आपसे पूछना चाहूंगा सर कि दोनों में से किसके गीत आप ज्यादा गाना पसंद करते हैं, और उन दोनों में से जिसके भी गीत आप ज्यादा गाना पसंद करते हैं, कौन सा गीत है दोनों में से जो आपको सबसे सबसे अच्छा लगता है?
1: दोनों का, लेकिन रफी साहब का थोड़ा ज्यादा और किशोर जी का कम। पहले तो हम किशोर का ही, क्योंकि हमारा वॉइस थोड़ा मैच होता था किशोर का, और हम बहुत माने प्रैक्टिस करके हमारा वॉइस सॉफ्ट किए थे। उसके बाद रफी साहब का गाना भी गाना चालू किया, लेकिन रफी साहब का वर्सिटैलिटी बहुत ज्यादा है। किशोर दा ने भी बहुत बढ़िया गीत गाए हैं। बहुत हमारा एक और बहुत बढ़िया गीत हमने गाया, बहुत पसंद है हमको किशोर का गाना, वो आप अगले बचा सकते हैं।
0: कौन सा
1: वो
0: सर?
1: है अमर प्रेम से चिंगारी कोई भड़के।
0: ओ वाह, बहुत ही खूबसूरत गीत है,
1: बहुत ही खूबसूरत, बहुत बढ़िया फिल्म था। और आप लोग को सब पता होगा राजेश खन्ना इज the single biggest superstar of Bollywood.
0: Correct.
1: उसने continuous 14 या 15 hits दिए थे। तो वो अमर प्रेम भी बहुत बढ़िया फिल्म था वो, और ये सीन भी बहुत बढ़िया था, वो हावड़ा ब्रिज के नीचे था ये शूटिंग।
0: ओके, हाँ, नाव में है ये, नाव में बैठ के शूटिंग हुआ है इसका।
1: नाव में, यस, करेक्ट।
0: और दूसरा कौन सा सॉन्ग सर हम सुनवाएंगे?
1: उसके बाद रफी साहब का एक गीत बहुत बढ़िया, हमको बहुत पसंद है। देखिए, ये तो फिल्म है कश्मीर की कली से,
0: ओके,
1: ओपी नैयर का म्यूजिक में, लेकिन ये तो बाकी सब गानों से ये उतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन इसके इसमें एक्सप्रेशन और रफी साहब ने जो जैसे गाए हैं वो एकदम बढ़िया। ये तो बार में था, तो शमी कपूर वाज ड्रंक,
0: ये दुनिया उसी की, ये मोहब्बत वाला। ऑलराइट, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है सर, क्या बात कर दिया आपने, मजा आ गया। जी बताइए बताइए।
1: अच्छा, इसमें एक और चीज है, एक बहुत बढ़िया सैक्सोफोन प्लेयर है मनोहरी सिंह। मनोहरी सिंह ये वो आदि बर्मन और सबके साथ वो काम करते थे, लेकिन ये गाना में उनका सैक्सोफोन बहुत बहुत बढ़िया था। ये दुनिया उसी की, ब्यूटीफुल सॉन्ग, हम बहुत बहुत पसंद किए थे। और शमी कपूर ने अच्छा भी एक्टिंग किया था वो सीन में।
0: ऑलराइट,
1: ओपिनियर का
0: ब्यूटीफुल। आपको सच बताऊं सर, पर्सनली मेरे को ये पूरा सॉन्ग और इसकी पिक्चराइजेशन पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। मैं कई बार जो फिल्म के डायरेक्टर थे उनकी सोच के बारे में लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि सोचिए ना, देर वर ओनली थ्री पीपल इन दैट बार। शमी कपूर थे, एक बार टेंडर थे और एक सैक्सोफोन बजाने वाले थे, देर वर ओनली थ्री।
1: और एक आर्मी कर्नल,
0: हाँ, एक आर्मी कर्नल था जो बगल में बैठा था। करेक्ट। देर वर ओनली फोर, एंड ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा गाने में सिर्फ सैक्सोफोन ही बजाए और कुछ नहीं। एब्सोल्युटली, इट इज सो ब्यूटीफुल। आइए दोस्तों, फिर दोनों ही बहुत ही खूबसूरत से गीत हम लोग सुनते हैं शिव सर की ही आवाज में, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत खूब।

0: क्या बात है शिव सर, अमेजिंग अमेजिंग गायकी, और आपके तो चॉइस ऑफ सॉन्ग्स आर एक्सट्रीमली गुड, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया।
1: थैंक यू जी, थैंक यू।
0: चलिए
1: हम लोग
0: जी बोली बोली
1: सर, बोली बताइए।
0: इट्स ओके। होता क्या है सर कि आपको समझने के चक्कर में मैं और जितना भी आपके बारे में जान लूं, जैसे कि आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनालिटी पता चल जाए अपने आप को और हमारे सुनने वालों को भी मालूम पड़ जाए, उसकी कोशिश में रहता हूं। तो एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आप तो इतने सालों के अनुभवी इंसान हैं, तो हमको कुछ सीखने को मिल जाएगा आपसे। अगर मैं आपके बारे में किसी को बताऊं, तो आप क्या चाहेंगे कि आपका इंट्रोडक्शन मैं उनको कैसे दूं?
1: एक हैप्पी गो लकी हार्ड वर्किंग इंसान है, एकदम पॉजिटिव थिंकिंग है, नेगेटिविटी हमारा लाइफ में नहीं है। मैंने लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होता ही है, लेकिन हम ऑलवेज पॉजिटिव थे।
0: Wow.
1: और हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ऑलवेज बी पॉजिटिव, मैंने काम करते चलो, कोशिश करते चलो, म्यूजिक या करियर जो भी हो, और जो करते हैं उसको एंजॉय करो, वही बता सकते हैं।
0: वाओ, दैट्स सो ब्यूटीफुल। तो जाहिर से बात है, बहुत ही खूबसूरत सा एक इंट्रोडक्शन शिव सर का मैं किसी को भी देना चाहूंगा कि टोटल पॉजिटिव इंसान, टोटल पॉजिटिव। सो आपको उनसे बात नहीं भी करनी है ना, तो मत करिए, बस उनके अगल बगल रहिए। उनके अगल बगल रहने से ही इतनी पॉजिटिविटी रेडिएट करके हमारे पास आ जाएगी कि हमारी जिंदगी भी सुधर जाएगी दोस्तों। चलिए शिव सर, प्लीज मुझे बताइए ना, कौन सा नया गीत, कौन सा गीत, हम दोनों दो गीत हम सुनवाएंगे हमारे दोस्तों को।
1: थोड़ा एक मिनट।
0: अरे कोई टेंशन नहीं सर, मैं भी अपनी डायरी सामने रख कर ही बैठता हूँ, आप भी अपनी डायरी, सब लोगों को, मोर ओवर मैं तो कहूंगा सब लोगों को अपनी अपनी डायरीज अपने सामने रखनी ही चाहिए। कीप अ पेन रेडी, कीप ऑन राइटिंग।
1: उसके बाद अच्छा, एक किशोर का मेडली भी हम भेजा है, सुनाई पाएंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये किशोर का टॉप मैंने
0: यूडलिंग का है,
1: और मैंने मेडली आप जानते हैं ना, छोटा छोटा पोर्शन, हर एक सॉन्ग का छोटा छोटा पोर्शन है।
0: अच्छा,
1: और मेडली तो दो गाने खट्टी पतंग से और दो गाने मेरे जीवन साथी से, दोनों आर डी बर्मन का बनाया गया, टॉप पॉपुलर सॉन्ग्स। तो हम लोग ये भी उसमें डाले हैं।
0: तो क्या नाम क्या है
1: जी? एक है खट्टी पतंग का ऐशा मस्तानी, और मेरे जीवन साथी का क्या गाना है वो टक।
0: तो ये शाम मस्तानी के साथ ही दूसरा वाला सॉन्ग जुड़ा हुआ है, आप ऐसा कह रहे हैं?
1: हाँ,
0: ऑलराइट।
1: मैंने दो गाना पार्टी पतंग से और दो गाना मेरे जीवन साथी से।
0: ओके,
1: वो भी है, वो सुना ही है, वो भी सुना सकते हैं, वो तो अच्छा गाना है।
0: नहीं मेरी बात,
1: एक मिनट आप वेट कीजिए।
0: श्योर आराम से सर, कोई प्रॉब्लम नहीं।
1: हाँ, वो मेरे दिल के चैन और वो मेरे जीवन साथी से
0: जी,
1: और दीवाना लेके आया है वो भी है।
0: ओके सर,
1: तो ये है चार गाना, तो एक सुनाइए।
0: एक तो है सर, आपने बताया मुझे ये शाम मस्तानी, और एक है मेरे जीवन साथी, दूसरा है वो मेरे दिल के चैन, एंड दीवाना लेके आया हूं, ठीक है ना सर?
1: यस,
0: ये मतलब जॉइंट है, राइट सर?
1: एक से एक, मैंने कोई एक एक मैंने छोटा पोर्शन आता है, उसके बाद ट्यून बैकग्राउंड म्यूजिक बदल जाती है, उसके बाद वो दूसरा गाना चालू होता है, और उसके बाद तीसरा, चौथा, ऐसा।
0: ठीक है सर, ठीक है सर,
1: छोटा पोर्शन हर एक ये इसका मेडली जो बताते हैं,
0: राइट।
1: तो ऐसा है कि वो किशोर का गाना पूरा चार गाना गाने के बदले में वो छोटा छोटा गाना तो सब आ जाता है उसमें, इसलिए
0: ऑलराइट, नाउ दैट इज वेरी इंटेलिजेंट एंड इंटरेस्टिंग। तो लीजिए दोस्तों, एक और पैरागॉन और एक और रोल मॉडल आपके सामने क्रिएट हो रहा है दैट यू कैन स्टार्ट सिंगिंग इन दिस वे ओनली ऑल्सो आई मीन टू से, या आप अपना अंदाज खुद भी क्रिएट कर सकते हैं जैसे शिव सर ने किया। तो आइए सुनते हैं ये प्यारे प्यारे गीत।

0: बहुत खूब, अमेजिंगली अमेजिंगली ब्यूटीफुल। शेफ सर आपके बारे में जाना बहुत मजा आया, आपके गीत सुने बहुत मजे आए। बस चलते चलते आपसे पूछना चाहूंगा, आपको थोड़ा और पर्सनल समझने के लिए, अपने किन्हीं दो बहुत अच्छे फ्रेंड्स के बारे में प्लीज हमें बताइए, जिन्होंने आपको सिंगिंग में मोटिवेट किया हो, हमेशा आपको अप्रिशिएट किया हो कि नहीं नहीं, और गलतियां भी बताई हो। सो दो ऐसे फ्रेंड्स के बारे में हमें बताइए।
1: देखिए, पहला फ्रेंड मेरी बीबी।
0: वाओ, ओके।
1: शी वाज माय क्रिटिक। वो हमारे गाने के बारे में, वो तो हिंदी नहीं जानती है, लेकिन हमारा गाना सुन के उसको भी हिंदी गाना पसंद होना चालू हुआ।
0: ऑलराइट, ऑलराइट।
1: अच्छा, वो मैंने जो क्रिटिक, ये गाना ठीक नहीं था, थोड़ा प्रैक्टिस करो, वॉइस ठीक नहीं था, ये सब वो ही बताती थी।
0: ओके।
1: वो हमको बहुत, मैंने वो गाइडिंग फैक्टर था। और हमारे जो एक हमारे रिलेटिव थे शर्मा जी, उसने हम

0: को पहले ये एंट्री दिया मैंने गाने के लिए, उन्हीं के साथ गाते थे। और उसके बाद हम अपना ग्रुप अभी है, लेकिन वो लोग सब मैंने सब ऑल रिटायर्ड पीपल मोस्टली, हम तो सिर्फ काम कर रहे हैं अभी। वो लोग सब अपने आप, वो तो बताते हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स है, कैसे अच्छा गाना है, वो सब अच्छा गाते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं, ठीक नहीं है तो क्रिटिसाइज करते हैं कैसा इंप्रूवमेंट करने का। तो ऐसे हम लोग दोस्त, हम लोग जो ग्रुप है 5-6 जन लेडीज एंड माने मेन गाते हैं, ये सब हम लोग दोस्त भी हैं, और इसलिए अपना माने गाइडिंग वगैरह सब वही करते हैं।
1: वाओ,
0: ऐसे
1: ब्यूटीफुल। तो चलिए सर, मुझे दो गाने और बताइए जो मैं आपके इन दो